उस्ताद अहमद रज़ा का विचित्र वीणा वादन आपने प्रस्तुत किया है। राग अहीरी तोड़ी आपके साथ तबले पर संगत किया है ग्लैडविन चार्ल्स ने। तो लीजिए सुनिए उस्ताद अहमद रज़ा का विचित्र वीणा पर बजाया राग अहीरी तोड़ी।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अहमद रजा का विचित्र वीणा पर बजाया राग अहिरी तोड़ी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Tirth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure projects lead to cost escalation and deprive citizens and industries of timely benefits. He directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi underlined the need for clear accountability

हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको कुछ बेहतरीन भजन सुनाए। आइए अब सुनते हैं एक और भजन।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार।

एक बार बाल गंगाधर तिलक जी अपने कुछ मित्रों के साथ बात कर रहे थे। उन दिनों उन्होंने वकालत पास की थी। वकालत पास करने पर उनके सभी मित्र उनसे पूछ रहे थे कि वे अब आगे चलकर क्या करेंगे। एक मित्र बोला, तिलक भाई, वकालत तो तुमने पास कर ली है, किंतु आगे के लिए भी कुछ सोचा है क्या? अब सरकारी नौकरी करोगे या किसी कोर्ट कचहरी में वकालत? मित्र की बात सुनकर तिलक बोले, मित्र अब तुमने पूछ ही लिया है तो सुन लो, मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं जो मुझे सरकार

का गुलाम बनाकर रखे। मैं ऐसी वकालत नहीं करना चाहता जहां दिन में कई बार झूठ बोलना पड़े। बात आई गई हो गई। सभी व्यक्ति अपने अपने कामों में लग गए। समय बीतता चला गया। एक दिन उनकी मित्र मंडली को पता चला कि बाल गंगाधर जी ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है और तनख्वाह थी मात्र 30 रुपए महीना। यह सुनकर उस मित्र को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ जिसने कुछ समय पहले उनका मन जानना चाहता कि वे वकालत पास करने के बाद क्या करेंगे। मित्र से ना रहा गया, वह अपना काम धाम छोड़कर तिलक के पास जा पहुंचा और उनसे बोला, अरे तिलक, यह क्या किया तुमने? तिलक बोले, क्यों क्या किया मैंने? मित्र बोले, भला वकालत की डिग्री लेकर भी कोई अध्यापक बनता है? अरे क्या आपको शिक्षकों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं मालूम? आज अध्यापक वर्ग समाज का सबसे गरीब व्यक्ति है। दोस्त, जब तुम अंतिम सांस लोगे तब तुम्हारे दाह संस्कार के लिए घर में कुछ भी नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ भाई, अब भी वक्त है, संभल जाओ। तुम में बहुत योग्यता है, सरकारी अधिकारी बनो, नामी वकील बनो। अरे अगर इन सब में भी मन नहीं है तो व्यापार ही कर लो। मित्र की बात सुनकर तिलक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मित्र, मैंने जो पेशा चुना है ना, यह बहुत पवित्र है, ईमानदारी वाला है। रही अंतिम समय की बात, मेरे दाह संस्कार का प्रबंध नगर पालिका कर देगी और फिर तुम जैसे मित्र कर देंगे, भला मैं इसकी चिंता क्यों करूं? तिलक की बात सुनकर मित्र हैरान रह गया। उसने आज तक संतुष्टि के ऐसे भाव किसी व्यक्ति पर नहीं देखे थे। वह मन ही मन तिलक के प्रति श्रद्धा से अभिभूत हो गया।

चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। हम आपको बता दें, आज सुबह 7:10 पर संगीती का कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे संचेता रॉय के गाए द्विजेंद्र गीत। इसके अलावा दिन में 1:10 पर समय रहेगा आपके अपने कार्यक्रम, जिसमें आप सुन सकेंगे 1:40 पर, 1:10 पर आप सुन सकेंगे एक ही फिल्म से कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे फिल्म खिलौना के गीत। सुबह 10:10 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद प्रसारित किया जाएगा। इसमें हम शामिल करेंगे आपके ईमेल पर आधारित आपके पसंद के गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीत में प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे बालकांड भाग 97।

श्री राम के हाथों जब पल भर में शिव जी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हुआया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे, किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिख पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से

0: भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure projects lead to cost escalation and deprive citizens and industries of timely benefits. He directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi underlined the need for clear accountability, faster response mechanisms and stronger coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on 25th June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. On this day in 1975, the emergency was declared amid growing political unrest and judicial developments that had undermined the legitimacy of the government led by then Prime Minister Indira Gandhi. Following the proclamation, several constitutional safeguards were suspended.

अभी आप सुन रहे थे द्विजेंद्र गीत, कलाकार थी संचेता रॉय। इसके साथ ही संगीतिका कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 7:30 हुए हैं। ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गीतों भरी। गुड मॉर्निंग में मैं हूं आज एक खूबसूरत ताजी और सुहानी सुबह के साथ आपका दोस्त नवीन सक्सेना। सुबह की पहली चाय की चुस्की के साथ जब खिड़की से ठंडी हवा आती है तो दिल बस एक ही चीज मांगता है, मोहब्बत और सुकून। और जब मोहब्बत की बात होती है तो हमारे पुराने गीतों से बेहतर भला और क्या हो सकता है। आज का सफर ये सफर पूरा होगा प्यार, तकरार और यादों के नाम। तो सुबह की इस मखमली धूप में खोलते हैं सुरों का जादू। आज का पहला गीत सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब की फिल्म का नाम है कटी पतंग। और इस गाने को सुनते ही सुबह की सुस्ती जो है वो आपकी गायब हो जाएगी। आनंद बख्शी साहब के लिखे इस नगमे को आरडी बर्मन ने अपने संगीत से सजाया है और आवाज दी है किशोर कुमार ने। और किसी ने क्या खूब कहा है, खूब ये कहा है कि इश्क की दुकानें खोलो, फूलों का व्यापार करो, इश्क अगर खता है तो ये खता कई बार करो।

वाकई प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। और सच में किशोरदा की आवाज अगर सुबह सुबह हो तो वैसे ही प्यार में सिर्फ और सिर्फ दीवान की होती है। हालांकि थोड़ी उलझन और थोड़ी नादानी भी होती है। और अब छोटी मोटी बातों को दिल से निकालते हुए बेहतरीन गीत मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। और वो एक ऐसा क्लासिक गीत है जिसे सुनकर आपकी थोड़ी सी

प्यार में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही रूहानी आवाज़ है, हसरत जयपुरी साहब के सीधे दिल में उतरती है। शंकर जयकिशन का लाजवाब संगीत है, सुनते हैं ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में और साथ में बहुत सुंदर। आइए सुनते हैं कामचोर फिल्म का ये गीत।

आज की सुबह में एक और खूबसूरत गीत मैं आपकी नजर पेश कर रहा हूं। 1972 के उस दौर में चल सकते हैं जहां राजेश खन्ना और तनुजा की जोड़ी को देखकर दिल धड़क उठता था। फिल्म थी मेरे जीवन साथी। खूबसूरत नगमे को अपने जादुई शब्दों में पिरोया है जिसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। वो उसके गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी। उनके लिखे एक एक लफ्ज जो है वो सीधे दिल में उतरते हैं और इस रोमानी एहसास को अपनी धुन में पिरोया है संगीतकार आरडी बर्मन ने, हम सबके फेवरेट पंचमदा, जिनकी धुनें आज भी धड़कनों को तेज कर देती हैं। लेकिन इस सफर को मुकम्मल किया है सदी के दो सबसे रोमानी गायक कलाकारों ने। अपनी मखमली आवाज से रोमांस का जादू बिखेरने वाले किशोर कुमार और सुरों की मलिका लता मंगेशकर।

आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग अपने दोस्त नवीन सक्सेना के साथ। बहुत ही खूबसूरत गीतों के गुलदस्ते के साथ आज हमने शुरुआत की थी आपकी इस खूबसूरत सुबह की। कोशिश की थी वो तमाम गीत आपको सुनवाएं जो आपके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ले आए, जो दिन भर ताजगी महसूस कराए और जो भी आपसे मिले तो ये आपसे पूछे, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने की वजह क्या है। तो सीधे ही छूटते हुए बोलेगा, मुस्कुराने की वजह है कि आज मैंने अपने मनपसंद गीत सुने हैं, वो गीत जो शायद कहीं खो गए थे। बहरहाल एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत चलते चलते मैं अब आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, किशोर कुमार की आवाज़ में और साथियों की आवाज़ है साथ में, फिल्म राजपूत का ये गीत है। उम्मीद है इस गीत के साथ आप अपनी तमाम यादों को आज संजोएंगे और मेरे संग संग इसे भी गुनगुनाएंगे। बहरहाल अपने दोस्त नवीन को अब दे दें इजाजत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज शाम मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया।

0: देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभिडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि

0: ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान,

0: मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffered during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress under the TB Mukt Bharat Abhiyan. More from our correspondent.
3: During the meeting, Prime Minister Narendra Modi reviewed 4 major infrastructure aimed at enhancing connectivity, industrial development and public welfare. He directed ministries and state governments to resolve pending issues on a mission mode and ensure timely completion. He also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for better planning and monitoring of projects. Mr. Modi also reviewed the progress of TB Mukt Bharat Abhiyan and suggested leveraging artificial intelligence and involving NCC cadets and My Bharat volunteers. measures in awareness and community mobilization efforts. Reviewing grievances related to cybercrime and digital arrest frauds, the Prime Minister called for stronger coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms. With Rohan and Saklin, Ishani Yadav, Akashvani.

आज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डे से मुल्क की पहली हब एंड स्पोक बैन अल-अक़वामी फ़जाई खिदमात का आगाज़ करेंगे। वो कल काशी पहुंचे थे और उन्होंने हवाई अड्डे पर बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी मुआयना किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत अपनी ब्रिक्स सदारत 2026 के तहत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स वज़राए तवानाई की मीटिंग की मेज़बानी करेगा। दो रोज़ा मीटिंग में तीन अहम तरजीहात पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी, जिनमें तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदारी, तवानाई तक रसाई और मुशावरत, नीज़ टेक्नोलॉजी और इख्तिरा शामिल हैं। ब्रिक्स के तमाम रुकन ममालिक के तवानाई के वुज़रा और सीनियर अफसरान अहम शोबों में तावुन को मजबूत करने के लिए इस दो रोज़ा मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस साल भारत की ब्रिक्स सदारत का मौजू लचकदारी, इख्तिरा, तावुन और पायदारी का क़याम है। देही तरक्की का महकमा आज नई दिल्ली में एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद करेगा, जो देही तरक्की में मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर मरकूज होगी। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि मस्कूरा एक रोज़ा तकरीब भारत के देही इलाकों की तरक्याती ज़रूरियात को जदीद तरीन तकनीकी इख्तिरात से मरबूत करने का एक मुश्तरक प्लेटफॉर्म होगी। नीति आयोग, द इंडिया एआई मिशन, सरकर्दा सनती मुशावरती इदारे और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जैसे कलीदी शराकत दार देही तरक्की को फ़रोग देने में मसनूई जहानत के इम्कान पर तबादला ख्याल करेंगे। अमरीका के एक विफाखी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को इंतखाबात से मुतालिक उनके पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़्यादातर हिस्सों को नाफिज करने से मुस्तकिल तौर पर रोक दिया है, जिसमें वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियत के दस्तावेजी सबूत की शर्त की तजवीज़ भी शामिल है। बोस्टन में अमरीकी जिलाई अदालत की जज डेनिस कैस्पर का ये फैसला दरअसल उनके एक साल पहले जारी करदा अबूरी हुक्म इम्तनाई को मुस्तकिल पाबंदी में तब्दील करता है, जिसमें उन्होंने इंतखाबात में इस्लाहात के लिए जनाब ट्रंप की कई कोशिशों को आरजी तौर पर रोक दिया था। जज कैस्पर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आईन इंतखाबात को मजबूत करने का इख्तियार रियासतों और कांग्रेस को देता है, न कि सदर को, और उन्होंने मजीद कहा कि जनाब ट्रंप की शराइत इख्तियारात की तकसीम की खिलाफ वर्जी करती हैं। वेनेजुएला में याराकाई रियासत के युमारे कस्बे में आज सुबह 7.5 शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया। अमरीकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक इससे पहले वेनेजुएला में सैन फेलिप में 7.2 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जलजले से वेनेजुएला के कराकस में कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के एक बड़े हिस्से में जलजले की शिद्दत काफ़ी महसूस की गई, जिससे जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला में शहरियों के तहफ्फुज के निज़ाम को अलर्ट कर दिया गया है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज बरतानिया की राजधानी लंदन के तीन रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो रही हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि ये दौरा भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती समझौते CETA और अगले महीने की 15 तारीख को कंपेनियन डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC के निफाज से कबल हो रहा है। अपने दौरे के दौरान जनाब गोयल बरतानिया के कारोबार और तजारत के वजीर पीटर काइली के साथ आला सतही बाहमी मीटिंग करेंगे। मुजाकरात के दौरान तजारती मुआहदे के निफाज के लिए तैयारियों पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के वजीर आजम निकोल पेशिनयान और उनकी पार्टी को आर्मेनिया में हाल ही में मुनक़िदा पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी को कल सुबह अपने आर्मेनियाई हममनसब की तरफ से एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई। जनाब मोदी ने मगरबी एशिया में हालिया वाक़ियात के बाद ईरान में फंसे हुए भारतीय शहरियों के इनखिला में सहूलत फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि उन्होंने अहम शोबों में भारत और आर्मेनिया के दरमियान गर्मजोशी और कसीर जहती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरक अज़्म का इदा किया। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटका, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। ख्वातीन के ICC T20 आलमी कप में आज ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे मैनचेस्टर

0: मैनचेस्टर में एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफल्ड में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम फिलहाल ग्रुप ए में दूसरे मकाम पर है, जिसने 3 मैचों में से 2 मैच जीते हैं और बांग्लादेश भी 2 मैच जीत चुका है, लेकिन वो कम नेट रन रेट की वजह से 4थे मकाम पर है। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराने के बाद T20 आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज किया था। इसके बाद उसने नैदरलैंड्स को 95 रन से हराया था, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हार हुई थी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने जनूबी कोरिया के दौरे पर गए वजीर खारजा एस जयशंकर के बयान को शह सुर्खियों में जगह देते हुए लिखा है, यकसा नज़रिया, बाहमी एतमाद वाले मुल्कों को मिलकर काम करने की ज़रूरत। अखबार की एक और सुर्खी है, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा, भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान को आईना दिखाया। अखबार इंकलाब की एक अहम सुर्खी है, अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर की, अमरीकी सदर को सियासी झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने बेमानी इकदाम करार दिया। इसके अलावा कोलकाता में जेर तामीर गोदाम की छत गिरने से 5 मजदूरों की हलाकत की खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबारात की दीगर अहम बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह हैं, इसराइल को अमरीकी फौजी इमदाद पर इंतज़ार कम करना होगा, नेतन्याहू का बयान।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और AI पर मबनी TB के खात्मे और साइबर धोखाधही के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थीं। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाखी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जौनपुरी में ख्याल। कलाकार हैं ऋत्विम सान्याल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग जौनपुरी में ख्याल। कलाकार थे ऋत्विम सान्याल। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगाब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज दिन में 1:10 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे फिल्म खिलौना के कुछ चुनिंदा गीत, और दिन में 10:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आपकी पसंद, जिसमें ईमेल पर आधारित आपके फरमाइशी फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: उद्योग पत्रिका।
2: नमस्कार, उद्योग पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। सभी श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, आज चिकित्सा सेवाओं का दायरा केवल दवाओं के निर्माण और वितरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संसाधनों का कुशल प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल तकनीक और रोगी केंद्रित सेवाएं भी शामिल हैं। इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर संगीता जी मगन जी को। संगीता जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: आप एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, प्रशिक्षक, लेखिका और सलाहकार हैं, और आपको फार्मेसी, प्रबंधन शिक्षा, नेतृत्व विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में 3 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव आपके पास है। आज आप हमारे साथ फार्मेसी और प्रबंधन विज्ञान के विकसित होते संबंधों, स्वास्थ्य सेवा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार साझा करेंगे, हम आपसे जानकारियां लेंगे। संगीता जी, जब भी कभी हम बाजार जाते हैं कोई दवाई लेने के लिए, दवा लेने के लिए, तो अक्सर हम फार्मासिस्ट, केमिस्ट और ड्रगिस्ट, इन 2-3 शब्दों से रूबरू होते हैं, तो क्या इनमें कोई समानता है या कोई अंतर है?
3: पहले तो थैंक यू सो मच, मेरे लिए ही ऑनर है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ आप लोगों के बीच में। बात करते हैं फार्मासिस्ट की, केमिस्ट की और ड्रगिस्ट की। तो बेसिकली आज हम इन तीनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, इनमें कुछ खास डिफरेंस है भी और कहीं जगहों पे एक सा ही लगता है। तो हर केमिस्ट शॉप पे जहाँ केमिस्ट्री से रिलेटेड सामान, दवाइयाँ, जिसको ड्रगिस्ट बोलेंगे, ये चीजें मिलती है। फार्मासिस्ट बेसिकली वो है जो एक क्वालिफाइड है, जिन्होंने ड्रग्स के बारे में, दवाइयों के बारे में पूरी एक सर्टिफाइड स्टडी करी है, तो उनको हम एक क्वालिफाइड पर्सन समझते हैं जो ये ड्रग्स को या दवाइयों को डिस्पेंस करने के योग्य हैं। तो जब हम केमिस्ट कहते हैं तो वो केमिकल से ज्यादा रिलेटेड स्टडी है। ड्रगिस्ट कहते हैं उनको जहाँ पे मेडिसिन सोल्ड किए जाते हैं। सो इन सब की स्टडी करके, जो पूरी अच्छे से उनकी पढ़ाई करके, क्वालिफिकेशन लेकर वहाँ बैठकर जिसको बेचने का हक है दवाइयों को, उसको फार्मासिस्ट कहते हैं।
2: जी, बहुत अच्छी जानकारी। और ये जो दवा उद्योग है, जो कंपनीज है, इनमें और प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट साइंस के बीच में क्या संबंध है?
3: देखिए, दवाइयों का काम है हील करना, ट्रीटमेंट करना।
2: जी।
3: जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आज एक फार्मेसी जो है या फार्मासिस्ट जो है, कुछ साल पहले, जैसे मैं कहूंगी कि जब मैंने एक फार्मेसी पढ़ा था, मैं 1986 की बात कर रही हूँ, तो जब हमने पढ़ा था तो फार्मासिस्ट का काम था दवाइयां देना। तो अब जो है, मैनेजमेंट के बिना एक फार्मासिस्ट सिर्फ फार्मासिस्ट ही बनकर रह जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी आने वाले बच्चे हैं जो फार्मेसी पढ़ रहे हैं, वो एक स्टेप ऊपर बढ़े, क्योंकि इसमें अब इतना इवोल्यूशन हो चुका है, इतने सारे नए रोल्स आ चुके हैं, ताकि उनको सिर्फ और सिर्फ दवाइयां देने

0: करने का काम नहीं करना है। तो उन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैनेजमेंट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: तो मैनेजमेंट जो स्किल है वो क्यों जरूरी है?
0: मैनेजमेंट स्किल का मतलब है आप लोगों से क्या बात करते हैं, कैसे अपने प्रोफेशन को चलाते हैं और कैसे अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम एक सोचें कि एक केमिस्ट या फार्मेसी शॉप है एक हॉस्पिटल के अंदर, तो उसका रोल सिर्फ दवाई देना तो नहीं है, उसका रोल है कि वो अपने वेंडर्स के साथ कैसे बात करेगा, सप्लाई चेन कैसे मैनेजमेंट करेगा, अपनी टीम को कैसे लीड करेगा। तो मैनेजमेंट उन सब चीजों को सिखाता है, अकाउंटेंसी भी सिखाता है उनको, उनको लीडरशिप भी सिखाता है, उनको टीम स्किल्स भी सिखाता है, उनको ये भी सिखाता है कि मेरी दवाइयों की स्टोरेज कैसे होनी चाहिए, मेरी दवाइयां किस तरह से रखी जानी चाहिए ताकि इजी एक्सेस हो और हर समय अवेलेबल हो, शॉर्टेज ना हो। तो ये सब चीजें जो है मैनेजमेंट के थ्रू ही हम सीख सकते हैं।
1: यानी कि मैनेजमेंट की भूमिका एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत बड़ी भूमिका होती है, और इसके बिना हम कह सकते हैं कि अगर किसी अस्पताल में, किसी क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल में अगर फार्मासिस्ट है, अगर उसको मैनेजमेंट नहीं पता है या फिर नहीं कर सकता है, कम स्किल्ड का है, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है,
0: बहुत सी परेशानी हो सकती है। बिकॉज हमारे को ये सोचना है कि ये क्रिटिकल दवाइयां हैं, इसकी मेरे को कितनी जरूरत पड़ती है और इसका मेरे पास में कितना स्टोरेज होना चाहिए।
1: और खासकर इसमें तो जो डॉक्टर्स जो दवाइयां लिखते हैं उनको जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाता है वो फार्मासिस्ट है।
0: फार्मासिस्ट ही है। देखिए, डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ये दोनों पार्टनर्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम में।
1: जी।
0: आज जो सिस्टम है वो सिर्फ हेल्थ सिस्टम नहीं है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, ये हेल्थ केयर सर्विसेज है। तो हम कहते हैं कि हर रोल जो प्ले हो रहा है एक हॉस्पिटल के अंदर वो किसी का ज्यादा और कम नहीं है। सबसे ज्यादा जो इन टच में आते हैं वो या तो नर्सेज आती हैं जो इन पेशेंट्स हैं, और जो आउट पेशेंट्स हैं उनके लिए फार्मासिस्ट आता है।
1: आपने नर्स की बात की, तो नर्स को भी एक फार्मेसी का ज्ञान होना जरूरी है?
0: बिल्कुल जरूरी है, लेकिन होता नहीं है। उनको दवाइयां देना आता है लेकिन उनको दवाइयों का डोसेज का स्टडी और जो ड्रग इंटरेक्शंस का स्टडी है वो नहीं होता है। तो सब अपनी अपनी एक्सपर्टीज को लेकर आते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये सब पार्टनर्स हैं। ये टीम ऐसी है कि एक की गलती से भी डिस्पेंसिंग एरर हो गया, उनको देने का एरर हो गया, तो डॉक्टर की पूरा काम जो है वो निल हो गया,
1: फेल हो जाता है।
0: फेल हो जाता है। तो ये सब पार्टनर्स हैं।
1: जी।
0: तो तभी वो सिस्टम जो है अच्छा स्ट्रॉन्ग बन सकता है।
1: हम ये कह सकते हैं कि सभी एक दूसरे के प्रति जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जो अस्पतालों में या जो केमिस्ट के पास या फार्मेसियों में जो एक इन्वेंट्री होती है, जो भंडारण होते हैं, स्टोर होता है, और जो एक सप्लाई चेन जो होता है, जो प्रबंधन किया जाता है, उसमें रोगियों के यानी कि पेशेंट के देखभाल पर किस प्रकार का असर करता है, किस प्रकार प्रभावी होता है?
0: देखिए, बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो हमारी प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, प्रॉपर उनको किसी को फ्रिज में रखना है, किसी को रेफ्रिजरेटर में रखना है, किसी को सिर्फ एक कूल डार्क प्लेस पे रखना है, तो वो अलग अलग चीजें हैं। ये फार्मासिस्ट का ही काम है। कितनी दवाइयां मेरे हॉस्पिटल में यूज होंगी उसकी प्लानिंग भी एक फार्मासिस्ट
1: इन्वेंट्री
0: जो है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो सब फार्मासिस्ट ही कर सकता है।
1: बिकॉज
0: डॉक्टर तो ये नहीं बता सकते हैं कि इतने पेशेंट्स हैं इतनी दवाई रखो, फार्मासिस्ट ये बता सकता है कि इस दवाई के मेरे पास में ये चार तरह के मेडिसिन अवेलेबल हैं, और वो ही डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि ये चार हमारे पास में अवेलेबल ऑप्शंस हैं, तो इसमें से हम लिख सकते हैं। तो ये सभी का रोल रहता है उस इन्वेंट्री को मैनेज करने के
1: जी,
0: लिए।
1: जी जी। तो अस्पताल मेडिकल टीम और दवा उत्पादक, और कहना चाहिए कि फार्मासिस्ट केमिस्ट में एक बेहतर तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
0: बिल्कुल। देखिए, एक हॉस्पिटल में जब आप एंटर करते हैं, आज एक रोगी सिर्फ नहीं जाता है, उसके साथ उसकी फैमिली भी जाती है।
1: जी।
0: ठीक है, एक रोगी एंटर करता है एक हॉस्पिटल के अंदर, तो सबसे पहले कौन मिलता है उसको? एक गार्ड। अगर वो गुस्से से, बदतमीजी से, डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में बोलता है तो वहीं पे इंप्रेशन हॉस्पिटल का खराब हो जाता है।
1: जी।
0: उसके बाद आते हैं लिफ्ट पे, उसके बाद आते हैं ओपीडी में, रिसेप्शनिस्ट है, ये सभी जो है वो भी एक पार्ट है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि पेरिफरी के ऊपर बैठे हैं, बाहर की साइड पे। उसके बाद जब अंदर की टीम की हम बात करते हैं, तो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, और इन्हीं का रोल है मेजरली उस पेशेंट को सैटिस्फाई करने का। देखिए, हमने आज साइंस इतनी एडवांस कर चुकी है, लेकिन हम अमर तो नहीं है।
1: जी।
0: हम सब का कुछ ना कुछ एंड है, लेकिन दवाइयों से हम ट्रीटमेंट करते हैं, फिर भी करते हैं।
1: जी।
0: और जो उम्मीद हमें चाहिए, जो कंपैशन, जो एम्पैथी हमें चाहिए, वो पूरी टीम मिलकर ही दे सकती है।
1: बिल्कुल। जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लिखते हैं, डॉक्टर ने दवाई लिखी और छोड़ दिया, उनसे कोई बात नहीं होती है। लेकिन उसी बात को अच्छी तरह से फार्मासिस्ट समझाता है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ही समझाता है।
0: बिल्कुल।
1: वही संतुष्ट कर सकता है कि डॉक्टर ने क्या कहा और आपको दवाई किस प्रकार से लेनी
0: है। देखिए, वो ट्रस्ट बिल्ड करने का काम जो है वो एक फार्मासिस्ट का है। हॉस्पिटल के बाहर ही मैंने बहुत बार, जैसे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाते हैं, हम फार्मेसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम उसी हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड्स देखते हैं।

0: जो केमिस्ट के लगे हैं 70% ऑफ ऑन मेडिसिन
1: जी।
0: तो हम असली दवाइयां इस हॉस्पिटल की फार्मेसी से क्यों लें, हमें जो 70% ऑफ पे बाहर मिल रही हैं। तो केमिस्ट और जो फार्मासिस्ट वहां क्वालिफाइड बैठा है उसको अपना ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है कि हमसे दवाई क्यों लें।
1: यानी कि ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा,
0: ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है
1: किस प्रकार से ट्रस्ट बिल्ड करना,
0: ट्रस्ट बिल्ड करना है।
1: मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि जो सिंपैथी, एम्पैथी और ट्रस्ट, इन सब की बात करें, आज जमाना है नई तकनीक का, AI का और टेलीमेडिसिन युग का है। कुछ ही चंद घंटों में आपको दवाइयां हाजिर हो जाती हैं, आपके पास आ जाती हैं दवाइयां, आपको उसका समाधान मिल जाता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो बदलाव हो रहा है रोगी पर किस प्रकार का असर हो रहा है, या कह सकते हैं कि जो मानवीय जो संवेदनाएं हैं, आत्मीयता है, वो कम हो रही है, ऐसा आपको नहीं लगता है? और इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं?
0: देखिए, मुझे क्या लगता है, आज का जो पेशेंट है ना वो बहुत इन्फॉर्म्ड है। आज चैट के ऊपर डाल दीजिए अपने थोड़े से सिम्टम्स, वो आपको आपकी बीमारी बता देगा
1: जी।
0: तो क्या डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है हमें?
1: बिल्कुल
0: गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से AI कितना भी डेवलप कर ले, जब तक एक ह्यूमन कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो काम जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा। हमने दवाई ली, हमारा ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन हीलिंग प्रोसेस के लिए हमें ह्यूमन कनेक्टिविटी की जरूरत है। और वही जो हीलिंग है आती है बिकॉज लोगों में एम्पथी है, कंपैशन है, बात करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, वो आपको AI नहीं दे सकता।
1: बिल्कुल, दवाइयां केमिस्ट तक पहुंचती हैं, जो दुकानों तक पहुंचती हैं, उनकी जानकारी एक MR देता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी भूमिका बड़ी भूमिका होती है। आप इसे किस प्रकार देखती हैं?
0: देखिए, जो मेडिकल रेप्स हैं यूजुअली वो भी फार्मासिस्ट ही होते हैं। अच्छी जो कंपनीज हैं वो हमेशा फार्मेसी ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को ही उठाती हैं मेडिकल रेप्स के लिए।
1: अच्छा,
0: बिकॉज उनको एक्सपर्टीज पता है, डॉक्टर उसमें कुछ भी पूछे उनकी नॉलेज बिल्कुल अप टू डेट है और उन्हें पूरा के पूरा उस ड्रग के बारे में सब कुछ पता है, तो वो ऑलरेडी उनके पास में एक्सपर्टीज है, तो वो एक फार्मासिस्ट ही होते हैं यूजुअली। अच्छी कंपनीज जो है वो फार्मेसी ग्रेजुएट्स को या M.Pharm पोस्ट ग्रेजुएट्स को ही उठाते हैं। इसीलिए आज हम मैनेजमेंट के साथ में जोड़ रहे हैं इसको कि अगर हमने फार्मेसी मैनेजमेंट सीख लिया है, एक अलग से कोर्स MBA करा है, तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज और हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ दवाइयां डिस्पेंस नहीं करनी है, हमारे पास में और बड़े रोल्स आ जाते हैं जो एक हॉस्पिटल में निभाए जाते हैं।
1: संगीता जी, अभी हमें जो सुन रहे हैं मुझे लगता है कि बहुत लोगों को फायदा होगा और कई लोग सोच भी रहेंगे कि इस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे, जो श्रोता हैं सोच रहे होंगे, आप उनको क्या सलाह देंगे कि फार्मेसी के क्षेत्र में जाने के लिए किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए और आगे इसका क्या भविष्य है?
0: तो भविष्य हमारे पास में बहुत सारे ऐसे रोल्स आ चुके हैं एक हॉस्पिटल के अंदर ही। पहले सिर्फ फार्मासिस्ट जो था अपनी फार्मेसी शॉप तक लिमिटेड था, अब वो क्लिनिकल डिसीशंस के अंदर भी आ चुके हैं। तो क्लिनिकल ये जो फार्मेसी है वो एक पूरा का पूरा, वो भी डॉक्टर्स के जैसे पूरे राउंड्स लेते। तो इसलिए जो रोल्स हमारे पास में और उभर कर आ रहे हैं आजकल के बच्चों के लिए जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो और बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ उनको दे सकते हैं। तो वो इंडस्ट्री फार्मेसी में भी जा सकते हैं, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। उनके पास में ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं जो नए निकल कर आ रहे हैं फार्मेसी की स्टडी से, क्योंकि हर सिचुएशन जो है एक्सपैंड हो रही है। जैसे मैंने कहा हेल्थ केयर सिस्टम, तो इस केयर सिस्टम के अंदर बहुत से नए अपॉर्चुनिटीज हम फार्मासिस्ट के लिए निकल कर आ रहे हैं।
1: तो हम ये कह सकते हैं कि जो फार्मेसी का कोर्स है उसके साथ साथ में जो मैनेजमेंट है वो भी साथ साथ चलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और दोनों का साथ साथ होना जरूरी है।
0: बिल्कुल, देखिए जो स्टूडेंट्स आज MBA करने के लिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि MBA का मतलब बिजनेस को मैनेज करना है। वो बिजनेस फार्मेसी का हो सकता है, वो बिजनेस हॉस्पिटल का हो सकता है, वो बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो सकता है। तो इसलिए MBA करने का मतलब है या मैनेजमेंट स्टडी करने का मतलब है कि हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा रहे हैं।
1: जी संगीता जी, अब चलते चलते क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है और वक्त का ख्याल रखना पड़ता है, तो ये कई बार हम सुनते हैं फार्माकोलॉजी, ये क्या है?
0: फार्माकोलॉजी का मतलब है दवाइयों की और डिजीजेस की स्टडी। किस डिजीज के लिए कौन सी दवाई जरूरी है, किस डोज में जरूरी है, इन सब चीजों की स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं।
1: तो क्या ये फार्मासिस्ट से बिल्कुल ही अलग है?
0: नहीं, ये फार्मेसी के अंदर का ही एक कोर्स है।
1: अच्छा,
0: फार्मेसी का मतलब सिर्फ एक फार्मेसी नहीं होता है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है जो आयुर्वेद से रिलेटेड है। तो बहुत सी स्टडी कर एक फार्मासिस्ट बनता है। सो ये हम ना सोचें कि वो स्टडी नहीं करके आए, उनकी बहुत सी एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं वो। इनफैक्ट लॉ भी पढ़ते हैं फार्मेसी से रिलेटेड, अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़कर वो आते हैं। तो फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट एक और एंटायर ब्रांच

0: अंश निकल कर आ रहा है जिसके अंदर डिजीजेस की और एक्सटेंसिव स्टडी होगी और उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या डोसेज, क्या ड्रग इंटरैक्शंस, किस तरह से दवाई देनी है, कब देनी है, और वो हर केमिस्ट्री उससे जो रिलेटेड है उसकी स्टडी से वो पढ़ते हैं।
1: यानी कि हम ये कह सकते हैं चलते चलते कि जो फार्मेसी है, फार्मेसी का कोर्स है, फार्माकोलॉजी है, कंप्लीटली वो मैनेजमेंट स्किल पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों साथ साथ रहे तो फार्मेसी फार्माकोलॉजी ये और भी ज्यादा आत्मीयता, संवेदनशीलता और पेशेंट के साथ में जो रिलेशन है वो ज्यादा मजबूत हो सकता है और अच्छा हो सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जब हम फार्मेसी पढ़ते हैं तो हम सिर्फ फार्मेसी की पढ़ाई करके आए हैं, जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो हम बाकी सब चीजें भी अंडरस्टैंड करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम उसमें बहुत से आजकल ऐसे मॉड्यूल्स भी डाले जाते हैं जिसको हम पीपल्स स्किल्स कहते हैं, लोगों से कैसा बिहेवियर हमारा होना चाहिए, उन सब चीजों की स्टडी भी करते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है।
1: तो श्रोता मित्रों, फार्मेसी और प्रबंधन विज्ञान का समन्वय स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और सुलभ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भविष्य में भी ये साझेदारी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख आधारशिला बनी रहेगी और इसमें और भी इनोवेशन होते रहेंगे और भी डेवलपमेंट होते रहेंगे। संगीता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने वक्त निकाला और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपने साझा की इस विषय पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक यही संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 9:30 होने को है और ये वक्त होता है अपने श्रोताओं को पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुनवाने का।

दे चांदी दे माइया बूंदे मैं तेरे घर तां वसना। चंद्रकांता कपूर दी आवाज विच हुणे तुसी ए लोक गीत सुन रहे सी। ते आओ जांदे जांदे सुनदे हां अजीत कौर दी आवाज विच ए लोक गीत।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 10 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के लिए डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयं सेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: आज संविधान हत्या दिवस है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। देश भर में आज इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। यह अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और ऊर्जा का उपयोग तथा समानता और प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। वेनेजुएला में आज 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी कराकास और आसपास के क्षेत्रों में कई इमारतें ढह गई हैं और बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विद्यार्थियों की कक्षाएं और गैर जरूरी गतिविधियां अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को भी सक्रिय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार

और वहां के लोगों, विशेषकर अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। खेलों में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ग्रुप ए के इस मैच में थापेलो मासेको ने दक्षिण अफ्रीका के लिए एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज सुबह मैक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर अपने विश्व कप समूह चरण के 3 मैच जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: to win all three of its World Cup group stage matches for the first time in Mexico City this morning. Meanwhile, Morocco stormed into the knockout rounds, beating Haiti 4-2 in an entertaining Group C clash in Atlanta this morning. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over parts of coastal Karnataka, Jharkhand, Konkan and Goa, Maharashtra, Telangana, Orissa, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. The Met Department has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Chandigarh, Haryana, Jammu Kashmir, Ladakh, Punjab, Uttarakhand and parts of northeastern region during the next 2 to 3 days. IMD has also forecast heat wave conditions at isolated places over Bihar, East Madhya Pradesh and East Uttar Pradesh today. And International Atomic Energy Agency or IAEA has said that it will carry out inspections in Iran under the country's preliminary peace agreement with the US. Talking to reporters in Japan, Director General of IAEA Rafael Grossi said that they will be working on the modalities, that is dates, procedures and places very soon. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 10:10 और पूरे 17 सेकेंड्स हो चुके हैं. अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद, लेकिन उससे पहले सुनिए ये संदेश.
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ. वाह, दिन बन गया.
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है.
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
1: जी हाँ दोस्तों, जानकार बनिए और सतर्क रहिए ताकि आपका पैसा आपके पास सुरक्षित रहे. ठीक वैसे ही जैसे आप हमेशा अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हैं और अपने पैसों का भी ध्यान इसी तरीके से रखिए और हर फाइनेंशियल क्राइसिस से बचें. RBI की गाइडलाइंस को आप फॉलो करें और अपने आप को फाइनेंशियली सुरक्षित रखें. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर. और यहाँ पर कार्यक्रम लेकर आ चुकी हूँ मैं आपकी पसंद, आज आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना. स्वागत करती है आप सभी श्रोताओं का एक बेहद खूबसूरत से गीत के साथ और उसके बाद चलेगा बातों का सिलसिला, संदेशों का सिलसिला. जी हाँ, आप हमें अपने संदेश भेज सकते हैं ईमेल आईडी पर जो कि है ipradiodelhi@gmail.com. और इस खूबसूरत से ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं अपने संदेश हम तक. और उससे पहले जो है ना गीत यहाँ पे मैं प्ले कर रही हूँ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो टॉपिक है ना आज मैं लेकर आई हूँ उस पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ लेंगे आपके संदेश, आपके पसंद के गीत.

जी हाँ, ये खूबसूरत सा गीत जो आप पीछे सुन रहे हैं ना, वाकई एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग है, और सब उन सभी लोगों के लिए, उन सभी यंगस्टर्स के लिए जो कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। तो ये तो नहीं दोस्त बात बनने की, कुछ करने की। जब हम कुछ कर लेते हैं, कुछ पा लेते हैं, कुछ बन जाते हैं, उसके बाद जो सबसे पहले हमारे हाथों में आता है पैसा, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जब आप अपनी फर्स्ट सैलरी ड्रॉन करते हैं, आपको फर्स्ट सैलरी आपकी मिलती है, तो उस वक्त आप क्या सोचते हैं? या आज का हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि जब आपने अपनी पहली सैलरी पाई होगी, जब आपको आपकी पहली सैलरी मिली होगी ना, तो तनख्वाह जो मिली होगी, उस वक्त आपने उस सैलरी को क्या किया होगा? कहते हैं कि जिंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमेशा दिल के किसी कोने में मुस्कुराते रहते हैं। उन खास पलों में से एक होता है पहली सैलरी का दिन। जी हाँ, पहली सैलरी का दिन, वो दिन जब अपने कमाई, काम की पहली कमाई हाथ में आती है, आपके हाथ में आती है, तो नोटों की कीमत नहीं बल्कि उससे जुड़ी मेहनत, सपने और खुशियाँ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जी हाँ, आज हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जब आपको आपकी पहली सैलरी मिली थी, तो आपने उस पैसे का क्या किया था? सबसे पहले क्या खरीदा था? किसी खास को कोई तोहफा दिया था, या फिर उसे बचा कर रख लिया था कि भाई इसे किसी खास मौके पर खर्च किया जाएगा? तो बस इसी बारे में आज हमारा जो है ना छोटा सा क्वेश्चन यही है कि फर्स्ट सैलरी आपको जब मिली, आपने उस पैसे का क्या किया? संभाल के रखा, खर्च किया, फ्रेंड्स के ऊपर उड़ाया, कोई चीज़ खरीदी, कीमती चीज़ खरीदी जिसे आप बरसों से पाना चाहते हो? बस यही बात आज हमारे साथ आप शेयर करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ रेलिवेंट क्वेश्चन के साथ अपने संदेश हमें भेजिएगा, ताकि हमें इस कार्यक्रम को करने और आपको सुनने में ना उस कार्यक्रम को और भी मज़ा आए।

देखिए हमारे लिसनर्स कितने अच्छे हैं ना, हमारा बस क्वेश्चन फेंकने की देर होती है और जो हमारे लिसनर्स है ना फटाक से उसे कैच करते हैं और छटाक से ना आंसर्स कर देते हैं। हमारे संदेश मिल चुका है सुधाकर जाधव जी का, ये लिख रहे हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। साथ में इनके प्रशांत राजे, संचित वायल, प्रथमेश प्रणाली, सर्वद सानवी, हर्षिता देशमुख, ये कहते हैं कि मेरी पहली सैलरी ना जब मेरे को मिली थी तो वो मैंने अपनी मम्मी को दी थी। ये तो मैं भी करती हूँ, जब भी मेरे को सैलरी मिलती है ना मैं अपनी मम्मी को दे देती थी, मतलब अब तो नहीं देते, अब तो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में सैलरी मिली थी ना तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को ही दी थी। तो सेम आपने भी किया दोस्त, और बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग सा जो अगर किसी ने किया हो तो वो भी हमें शेयर कीजिए जल्दी जल्दी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जी आप सुन रहे हैं आपकी पसंद और साथ ही आपके हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। अगला संदेश हमें मिला है शीशपाल वर्धन जी का। ये कहते हैं आरजी जी मैंने अपने पिता के हाथ में कभी भी सैलरी नहीं रखी। गजब की बात है, वाकई में गजब की बात है। अगर आपने अपने पिता के हाथों में अपनी कमाई हुई जो पैसा है वो नहीं रखा, एनीवेज बहुत अच्छी बात है।

जल्दी से अगला संदेश ले लेते हैं। ये भेजा हमें हरजिंदर सिंह भाटिया जी ने। ये कहाँ से लिख रहे हैं? स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमें लिख रहे हैं, साथ में एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग अर्चना जी, सत श्री अकाल, ऑलवेज बी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, हाउ आर यू सर, प्योर पूरे परिवार के साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं, बड़ा लुत्फ आ रहा है, हमें भी शामिल करें। बिल्कुल, आपको शामिल कर लिया हमने। और साथ में ये लिखते हैं कि मैंने अपनी पहली सैलरी अपने फादर के हाथ में दी, मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे फादर को हुई। बिल्कुल, जब देखिए ना, अगर जब हमारे पेरेंट्स हमें पालते पोसते, हमें इस लायक बनाते हैं कि हम एक वक्त पर उनका ख्याल रख सकें, और ख्याल रखने के लिए क्या ज़रूरत होती है? पैसे की ज़रूरत होती है, एक प्यार की ज़रूरत होती है। जब वो पैसा आपके हाथ में आता है, आपकी पहली सैलरी का पैसा आपके हाथ में आता है, तो वो आप अगर अपने पेरेंट्स को देते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात पेरेंट्स के लिए मुझे तो नहीं लगता कि कोई होगी। तो ये प्राउड और ये खुशी आपने अपने पेरेंट्स को दी, बहुत ही अच्छा लगा ये जान के।

अगला संदेश हमें मिल रहा है तो तुलसी मस्किन जी का, ये कहते हैं मैडम जी आज का टॉपिक सही नहीं है। आई होप आपको सही लग जाएगा, कार्यक्रम सुनेंगे और बाकी श्रोताओं के जो एक्सपीरियंस है वो सुनेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि नहीं वाकई में रेलेवेंट टॉपिक है आज का। ये कहते हैं मतलब हमारे मतलब का नहीं है, हमारा तो बिजनेस है, खूब दिल लगाकर व्यापार करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं। और भाई जाहिर सी बात है आप खूब व्यापार करें और खूब पैसा भी कमाएं, लेकिन आपने पहली बार शुरुआत तो की होगी ना दोस्त, आपको पहली बार पैसा तो मिला होगा ना आपकी मेहनत का, आपके काम का। तो बस हमने तो बस उसी बारे में पूछा है कि आपने अपनी पहली कमाई जो थी, आपकी जो फर्स्ट सैलरी थी, उसका क्या किया, किसी को, अपने पेरेंट्स को दिया, किसी के लिए कुछ खास तोहफा खरीदा या अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ खरीदी जिसे आप बहुत लंबे समय से खरीदना चाहते थे। आप लिख रहे हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, साथ में है वीना मस्किन, चैतन्य मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशव खुराना।

अगला संदेश हमें मिल रहा है गुलाबदास मानिकपुरी जी का, और ये लिखते हैं कहाँ से, लेवाई छत्तीसगढ़ से ये हमें लिख रहे हैं। कहते हैं, हमने अपनी पहली कमाई से बहन की शादी में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लिया। बिल्कुल कहते हैं ना कुछ खास ज़रूर लेता है इंसान अपनी पहली सैलरी मिलने पर। जो पैसा आता है उसे किसी ख़ास चीज़ पर खर्च करता है और जिसकी याद ताउम्र रहे कुछ ऐसा ही खरीदता है। आपने भी ऐसा ही किया, अपनी बहन को शादी में गिफ्ट दिया ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। बहुत खूबसूरत काम किया, बहुत अच्छा काम किया। देखिए, आपकी बहन को भी हमेशा याद रहेगा कि आपकी तरफ से उन्हें ये खूबसूरत सा तोहफा जो है उस वक्त मिला था।

अगला संदेश हम ले रहे हैं राशिद हुसैन अंसारी जी का और ये लिखते हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। ये कहते हैं कि जब हमें पहली सैलरी मिली हमने बच्चों में बांट दी भगवान का प्रसाद समझकर। वाकई में अगर आपने अपनी सैलरी बच्चों को दी, उन्हें उनके लिए चीज़ें खरीदी और

को दी, तो जाहिर सी बात है बहुत ही नेक काम किया आपने, क्योंकि ये भी एक ऐसी खूबसूरत याद होती है जिसे आप कहते हैं ना कि ताउम्र याद रखते हैं, कि हमने कुछ एक नेक काम किया, बच्चों को गिफ्ट किया और उन उस गिफ्ट से जो है ना उनके चेहरे पर वो खुशी आप लाए।

जी आप सुन रहे हैं आपकी पसंद का कार्यक्रम आपकी पसंद, और आपके साथ हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। यहाँ बात चल रही है पहली कमाई की, फर्स्ट सैलरी की। तो इसी के चलते हमें अगला संदेश मिला है मोहम्मद सईद अब्बासी जी का, साथ में इनके निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, परदीन अब्बासी, सुहान, अरजान अबान और अब समस्त अब्बासी परिवार। ये एक तो हमारे रेगुलर लिसनर हैं और वाकई में बहुत अच्छी चीज़ें हमें भेजते हैं, इन्फॉर्मेशन के साथ भेजते हैं। आज इन्होंने हमें संदेश भेजा है, ये कहते हैं कि अर्चना गुप्ता जी, हमने अपनी पहली कमाई अपनी मम्मी के हाथ में दी, ढेर सारा आशीर्वाद मिला जो आज तक हमारे साथ है, पर वो आज हमारे साथ नहीं है, जिसका अफसोस हमें ताउम्र रहेगा। देखा, यही चीज़ मैं आपको सभी से जो है, मेरे श्रोता हैं उन सभी से बोल रही हूँ कि आपने ऐसा क्या किया अपनी फर्स्ट सैलरी के साथ जो आपके साथ ताउम्र याद बन के रहा। आपने जैसे बताया कि आपने अपनी फर्स्ट सैलरी अपनी मम्मी को दी और उनसे बदले में ढेर सारा आशीर्वाद आपने प्राप्त किया, तो वाकई में ये भी कितनी खूबसूरत याद आपकी ज़िंदगी का, एक कहते हैं ना खूबसूरत याद बन के आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहेगी।

ना हो तो भी मुसीबत। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं आज फर्स्ट सैलरी के बारे में। इसी के संदर्भ में एक और संदेश हमें मिल रहा है जयराम सिंघनकर जी का, और ये कहते हैं, मैडम जी मेरी सैलरी से हमने सबसे पहले रेडियो खरीदा था और वो रेडियो आज भी हमारे साथ है। ये लिख रहे हैं संघमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से। साथ में है इनके जयराम सिंघनकर, दिशांत कुमार सिंगनकर और अर्पिता जी। वाकई में वो रेडियो जो है ना आज भी आपके साथ है, ये प्रूफ हो गया क्योंकि आज आप उसी रेडियो पर हमें सुन रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं।

चलिए चलते हैं, और भी इंटरेस्टिंग जो संदेश है ना वह हमें मिल रहे हैं। और अगला संदेश हमें मिला है रोशन देवांगन जी का। ये कहते हैं, अर्चना जी नमस्कार, जब हमें पहली सैलरी मिली ना तब हम एक फिलिप्स का रेडियो खरीदे थे। भिलाई छत्तीसगढ़ से ये हमें लिख रहे हैं। साथ में कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन ने हमें संदेश इनके साथ भेजा है। और वाकई में बहुत अच्छा काम किया दोस्त आपने, रेडियो खरीद के। अगर रेडियो ना होता आपके साथ तो आज हम भी ना होते आपके साथ।

अगला संदेश हमें मिला है संदीप मक्कर जी का। ये कहते हैं, बचपन से ही हम काम कर रहे हैं और परिवार को चलाने के लिए जाहिर है अपनी मन या बाप को अपनी पहली कमाई दी होगी। जी हाँ, इनका कहने का मतलब है कि ये बचपन से ही काम कर रहे हैं और इन्होंने जो अपनी पहली कमाई है ज़रूर अपने मम्मी या पापा को ही दी होगी। और साथ में इनके कौन हैं, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोरैया, जालंधर से ये हमें लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच अपना ये जो कीमती जो याद है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए।

अगला संदेश हमें मिल रहा है बोधराज खोरवाल जी का। ये कहते हैं, हमें तो पहली सैलरी सप्ताह की मिली थी, 65 रुपए पाकर बहुत खुशी हुई थी, पर इतना याद नहीं कि कैसे खर्च किए थे। एनीवेज छोटी सी अमाउंट थी, बट आई एम श्योर आपने जरूर उन पैसों का सदुपयोग ही किया होगा, कुछ अच्छा ही किया होगा। लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात है ना कि आपको वो जो छोटी सी अमाउंट है जिसकी आज वैल्यू उतनी नहीं है जितनी वो तब थी जब आपको मिली होगी, वो आपको आज भी याद है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बात है कि आपको अभी तक वो 65 रुपये जो आपने एज अ अपना

0: Now, I'm going to tell y'all about money.
1: जी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। फिलहाल वक्त हो चुका है यहां पर 10:39, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए हैं कुछ सेकंड से, अब 10:40 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आपकी पसंद।

अगला संदेश हमें मिल रहा है नरेश मल्होत्रा नीटू जी का। ये कहते हैं कि थक गए हैं सर जी, दीदी जी अब हमें शामिल नहीं करना, हमें दीदी जी प्लीज प्लीज प्लीज लगता है आप हमें शामिल नहीं करेंगे, बस अपनों को शामिल करेंगे। भाई आप भी हमारे अपने, देखिए आपके शिकायती वाला जो ईमेल आपने हमें भेजा ना, ये भी हमने शामिल कर दिया है, बशर्ते आपने कोई भी रेलेवेंट मैसेज नहीं भेजा दोस्त। और आप अक्सर हमार को ना, हमें ना यही वाले मैसेजेस भेजते हैं, मैंने जितना नोटिस किया अपने शो में कि अक्सर आपके शिकायती वाले जो है ना संदेश होते हैं। बट एनीवेज आपकी शिकायतें भी हमारे सर आंखों पर है, इसी बहाने से ही शिकायतें ही सही आपकी ईमेल जो है वो शामिल तो होती है। आप लिख रहे हैं खैल बाजार पानीपत से, साथ में लक्ष्य लाड़ो, कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का। बस एक प्यारा सा संदेश और भेज दीजिए कि आपने अगर आप जब आपने अपनी फर्स्ट सैलरी ड्रॉन की होगी तो उसका क्या किया, ये खूबसूरत सी याद हमारे साथ शेयर करेंगे तो और भी मजा आएगा दोस्त।

अगला संदेश हमें मिल रहा है लखपत राज जी का। ये कहते हैं, अर्चना बेटा हमारी तरफ से राम राम स्वीकार करें। ये कहते हैं, हमें जब पहली सैलरी मिली तब हम पूरे परिवार सहित मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने गए थे। आनंद पर्वत दिल्ली से ये लिख रहे हैं, साथ में इनके हैं वेद प्रकाश चौहान, सूबेदार अमर सिंह। वाकई में पता है कई बार क्या होता है ना, चीज़ें हमारे पास जब पैसा आता है, जब हमारी फर्स्ट सैलरी आती है, तो उसको पाने की खुशी जो होती है ना, उसे हम चाहते हैं कि हम सबके साथ शेयर करें। बस एक कुछ वेज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, है ना, जिस तरीकों से हम अपनी इस खुशी को जाहिर कर सकते हैं और उस खुशी को एक याद के तौर पर अपने जहन में हमेशा के लिए संभाल कर रख सकते हैं। कुछ ऐसा ही लखपत राज जी ने किया और अपनी सैलरी आने पर मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में गए, क्योंकि मल्टीप्लेक्स अब बने हैं तो बहुत बड़े होते हैं, उन्हें देखने का जो चाव होता है ना, वो भी एक सपने के तरह ही होता है। तो बहुत खूबसूरत याद आपने सजोई बनाई और थैंक यू सो मच, आपने अपना जो कीमती याद है वो हमारे साथ शेयर किया। मनी, मनी।

बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर और ये हमें भेजा है हीरामन शिंदे जी ने। ये कहते हैं, अर्चना जी नमस्ते, मैंने पहले अपनी पहली कमाई से मेरी छोटी बहन के लिए किताबें खरीदी थी और ये लिख रहे हैं कहाँ से, किशोर नगर अमरावती से। सिद्धार्थ शिंदे जी ने हमें ये संदेश भेजा है, वाकई में बहुत खूबसूरत काम किया। ये तो याद ना कहते हैं कि बहुत ही कहते हैं ना कीमती याद बन गई कि आपने अपनी फर्स्ट सैलरी से अपनी छोटी बहन के लिए बुक्स खरीदे और देखिए उसे शिक्षा की ओर बढ़ाने के लिए एक खूबसूरत सा कदम जो है वो आपने अपनी तरफ से उठाया।

अगले संदेश हमें मिल रहा है रविंद्र सिंह छाबड़ा जी का, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा इनके साथ लिख रहे हैं हमें। ये कहते हैं, पहली सैलरी हमने अपनी माँ को दी। वाकई में बहुत खूबसूरत याद आपने बनाई और अपनी सैलरी, पहली सैलरी जो अपनी माँ को दी और उनसे बदले में ढेर सारा आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त की।

अगला संदेश हम लेते हैं मांगे राम जी का। लिखते हैं गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगे राम सतोर जी। ये कहते हैं अर्चना जी नमस्कार, हम एक किसान हैं, खेत में काम करते हैं, 6 महीने में हमारे सैलरी आती है, वही हम सभी मिलकर अपने काम में लेते हैं, माता पिता हैं नहीं, किसके हाथ में सैलरी दें। दोस्त ये तो बहुत मतलब कहते हैं ना दुखी वाली बात आपने कर दी है। आपके पास आप कुछ काम उससे करें, ऐसा करें जो आपकी याद में नहीं। और सैलरी किसी को देना यानी माता पिता को देना बहुत ज़्यादा नहीं कि अगर नहीं है तो नहीं दे सकते हैं तो दे दे, लेकिन आप उस सैलरी से क्या करते हैं, उसका कैसे यूज़ करते हैं, कुछ अच्छे काम में करते हैं, वो मायने रखता है। माता पिता तो हमेशा नहीं रहते किसी के भी, बट अगर ऐसा कुछ है तो आप अपनी सैलरी के साथ अपने माता पिता की मेमोरीज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके नाम पर कुछ कीजिए ताकि आपकी सैलरी जो है ना एक दुआ के तौर पर आपके साथ में और ज़्यादा बढ़े और आपके माता पिता का आशीर्वाद जो है वो भी आपके साथ बना रहे।

देखिए अपनी सब जो है ना, हमारे जितने भी श्रोता है ना, बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही लॉयल है अपने पेरेंट्स के प्रति। और ज़्यादातर जो संदेश मुझे मिल रहे हैं ना, वो यही मिल रहे हैं कि सभी ने अपनी जो सैलरी है ना, फर्स्ट टाइम वाली सैलरी जो है ना, फर्स्ट सैलरी जो है वो अपने पेरेंट्स को दी, माँ को दी या फिर पापा को दी। तो वाकई में बहुत, मैं सुनकर ये बड़ा खुशी हो रही है मेरे मन को कि आजकल की जनरेशन जो है ना, वो ऐसा काम बहुत कम करती है। वो सोचते हैं कि पहले जो है ना अपने लिए कुछ किया जाए, उसके बाद अपनी ज़रूरतें पूरी करी जाए, उसके बाद कुछ और किया जाए, ताकि पेरेंट्स को बाद में, कहते हैं ना, सेकेंडरी उस पोजीशन पे रखते हैं। ऐसे ही एक संदेश हमें मिल रहा है राजेश सेन जी का। ये कहते हैं, अर्चना दीदी, मैंने अपनी पहली कमाई जो है ना अपनी माँ के हाथों में दी थी। वाकई में बहुत खूबसूरत काम किया। आप लिख रहे हैं कहाँ से? शिवाजी नगर खंडवा से। साथ में इनके हैं राजेश सेन। और ये कहते हैं, दूसरी सैलरी से मैंने अपनी बहन के लिए साड़ी और चूड़ियाँ लाया था। वाकई में बहुत ही खूबसूरत काम किया। ऐसे तो कहते हैं ना कि मेरे को आपका जो संदेश सुन के ना, ऐसा लग रहा है किसी फिल्म के सीन पर चली गई हूँ मैं, कोई फिल्म का सीन जो है, जो पुरानी फिल्में होती थी, पुराने ज़माने की फिल्में होती थी हमारी,

बॉलीवुड की तो उसमें होता था कि भाई है, बेटा है, सैलरी मिल रही है तो अपने माँ के लिए साड़ियाँ ला रहा है, बहन के लिए चूड़ियाँ ला रहा है। बहुत ही खूबसूरत याद जो है वो आपने बनाई, और वाकई में एक बहुत सुंदर बात भी यहाँ पे आपने कहते हैं ना, अपने संदेश के जरिए कही बताई कि सभी कहते हैं ना अपने माँ बहन, अपने पेरेंट्स, अपने घर वालों के लिए करते हैं। आपने भी वही बहुत खूबसूरत सा काम किया और सभी के लिए इंस्पिरेशन भी बने।

अगला संदेश हमें मिल रहा है राधे श्याम देवांगन जी का। ये कहते हैं, हमने अपनी पहली कमाई अपनी बड़ी बहन की शादी में लगाई थी। वाकई में बहुत हेल्प की फाइनेंशली, जो होता है पेरेंट्स की जिम्मेदारियों में जो बच्चे अपने कंट्रीब्यूशन देते हैं वो बहुत ही लायक और बहुत ही कहते हैं ना खूबसूरत मन वाले बच्चे होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। आप लिख रहे हैं हमें इंदिरा नगर भंवरपुर से, साथ में हैं इनके राजू नेहा जगदीश देवांगन।

0: slow it down.
1: जल्दी जल्दी संदेश ले लेते, बहुत सारे संदेश आ रहे हैं, फिर छोड़ जाएंगे, फिर आप शिकायत करेंगे। शिकायत का मौका इस बार नहीं देना चाहती हूँ मैं। अगला संदेश हमें मिला है माहिरा मलिक का। माहिरा मलिक का ये कहते हैं, आदाब कबूल करें, जब हमें पहली सैलरी मिली ना तब हम लोग पूरे परिवार सहित कश्मीर घूमने गए थे। वाह बहुत खूबसूरत काम किया दोस्त आपने। और लिख कहाँ से रही है, कनॉट प्लेस दिल्ली से लिख रही है, साथ में इनके हिबा, आयसा, जोया, जैनब और मरियम। वाकई में घूमना भी ना एक खूबसूरत याद होती है आपकी जिंदगी की, कश्मीर घूमना वो भी कहते ना सपने में सोचता है इंसान कि भाई मेरे पास इतना पैसा आएगा तो मैं वहाँ जाऊँगा, स्विट्जरलैंड जाऊँगा, मैं यहाँ वहाँ जाऊँगा। जब आपको मिला आप कश्मीर गए, मज़ा आ गया सुनकर। इस तड़कती भड़कती गर्मी में ना ठंडी ठंडी बात सुन के बड़ा मजा आया।

10:54 हो चुके हैं और 30 सेकंड्स होने वाले हैं और संदेश जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बलीउल्लाह अंसारी जी का हमें संदेश मिल रहा है, ये कहते हैं आदाब, मुझे पहली सैलरी मिली तब मैंने अपनी साली को नैनीताल घुमाने ले गया था। अकेले चले गए सर? फैमिली को भी लेकर गए होंगे आई एम श्योर, क्योंकि अकेले तो जाने नहीं देता कोई आपको। आप लिख रहे हैं डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, और वाकई में खूब मतलब बहुत खूबसूरत सी और फनी सी थोड़ी सी जो कह सकते हैं ना, वो जो याद है वो आपने हमारे साथ शेयर की।

अगला संदेश लेते हैं उत्तम सिंह जांघेल जी का। ये कहते हैं, अर्चना जी, हम पढ़ाई के समय घंटे के लिए काम में गए थे जिसमें हमें 150 रुपये मिले। उस पैसे से हम एक ऑडियो कैसेट खरीदे थे। ये भी बहुत अच्छा, कहते हैं ना कि एक ख्वाहिश रही होगी कि आप अपने पैसे से अपनी फेवरेट कोई ऑडियो कैसेट, कोई गीतों की कैसेट आपने खरीदी होगी, और वो जो याद है वो आपने हमारे साथ साझा की। बहुत ही अच्छा लगा आपने ये संदेश हमें भेजा। आप लिख रहे हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल साथ में है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल,

चौहान, राजेश सेन, सुनील पाठक जी, रोजी डिकैस्ट्रो और भगवत वर्मा, रामेश्वर जी, बोधराज खोरवाल जी, हीरामंद शिंदे, रियासत हुसैन, संतोष खाडसे, लखपत राज, नीटू मल्होत्रा, अनूप सिंह नथावत, आर कुमार, रमेश चंद्र कांबले, राजेश मेहरा, रुपेश संघाई, इन सभी श्रोताओं ने भी हमें संदेश भेजे हैं, बट वक्त की कमी के चलते मुझे इस बार के लिए माफ़ कीजिए, अगली बार ज़रूर आपके सभी संदेशों को शामिल करूंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है 10:58 और पूरे 5 सेकंड्स, और मेरा यहाँ से जाने का भी वक्त हो चुका है। आप सुनते रहिए हमें इसी तरीके से, और अपना प्यार यूं ही हम पर लुटाते रहिए, और बस इसी खूबसूरत एहसास के साथ आपसे विदा चाहती है। जल्द मिलने का वादा लिए आपकी आज की ये रेडियो होस्ट एंड दोस्त, आई होप आपको ये कार्यक्रम आज का बेहद पसंद आएगा। अगली बार जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर, बाय बाय।

0: OET야. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 11 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। देश भर में आज इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं।

0: कड़ी परीक्षा हुई थी। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 1ली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये 1ली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित 1ली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। आव्रजन संबंधी औपचारिकताएं भी प्रस्थान बिंदु पर ही पूरी कर ली जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य नेटवर्क को भी सक्रिय कर दिया है। इस बीच कई जगहों पर बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति ने कहा कि शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत हो गई है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 400 अंक की उछाल से 77,391 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक से अधिक की वृद्धि के साथ 24,125 के आसपास कारोबार कर रहा था। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल कर 1ली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया। इससे पहले आज मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर अपने ग्रुप के सभी 3 मैच जीत लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on 25th June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah today paid homage to all those who stood firm in defence of democratic values during the emergency. In a social media post, Prime Minister Modi said the emergency was a direct assault on the Constitution. He said it witnessed the suspension of civil liberties, curbs on freedom of expression and the arrest of political leaders, journalists and social workers. The Prime Minister added that institutions which form the bedrock of the country's democracy also came under assault during the period. Venezuelan President Delcy Rodriguez has declared a state of emergency in the country following back-to-back earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 caused multiple buildings collapse in Caracas and surrounding areas this morning. She said that 32 people have died and more than 700 have been injured following a series of powerful earthquakes. The death toll and number of injuries are expected to rise as emergency teams assess the

चीन, लंदन, दुबई और भी कई देशों में आपने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को आनंदित और प्रमुदित किया है। निरंतर संगीत सेवा के लिए केडिया बंधुओं को विभिन्न प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे झारखंड रत्न, संगीत मारतंड, गंधर्व सम्मान, ग्लोबल डिग्निटी अवार्ड और भी कई सम्मान। आप दोनों ही कलाकार आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। आज आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर पंडित मिथिलेश झा, करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे सभी कलाकारों का, और तानपुरे पर हैं आशीष नायक। आज की प्रथम प्रस्तुति है राग नट भैरव में आलाप, विलंबित तीन ताल, एक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना।

आकाशवाणी के भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आज स्वरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें केडिया बंधु अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। पंडित मोर मुकुट केडिया के सितार वादन का आप आनंद ले रहे हैं और साथ ही पंडित मनोज कुमार केडिया के सरोद वादन का भी। अभी आपने राग नट भैरव में प्रस्तुति का आनंद लिया। अगली प्रस्तुति है सिंधी भैरवी, दादरा और तीन ताल में निबद्ध रचना।

आकाशवाणी के भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आज स्वरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रहे थे केडिया बंधु। करतल ध्वनि से सभी कलाकारों के प्रति अभिनंदन प्रकट करें, आभार प्रकट करें। पंडित मोर मुकुट केडिया, आपने सितार वादन किया कार्यक्रम में, और पंडित मनोज कुमार केडिया, आपने सरोद वादन किया। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित मिथिलेश झा, और तानपुरे पर थे आशीष नायक। हम आपको बताना चाहते हैं कि स्वरांजलि कार्यक्रम पूर्णतः संगीत को समर्पित है। हम इस कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत आप सभी के लिए लेकर आते हैं। लोक संगीत की प्रस्तुति होती है जिसमें आनंद लिया जाता है गीत, गजल, कव्वाली, शब्द, भजन, और विशेष अवसरों पर अन्य गीतों का भी। आंचलिकता का पुट लिए हमारा ये कार्यक्रम है, तो साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कलाकार अपनी पहचान बना चुके हैं, लगातार संगीत सेवा में रत हैं, उनकी प्रस्तुतियों से भी हमारा ये कार्यक्रम सजा होता है। और विशेष अवसरों पर रंग भवन सभागार में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज के कार्यक्रम का आनंद YouTube के माध्यम से भी लिया गया, और साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल पर इस कार्यक्रम की सजीव प्रस्तुति चल रही थी। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा प्रकाश थपलियाल, बी जयवंधन, हमारे सभी साथियों के लिए करतल ध्वनि सुशील भटनागर और सुनील कुमार का। प्रस्तुति सहयोग था आकाश गौतम, दिव्या और रेवती राजन का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रदीप अग्रवाल और स्पर्शिता श्रीवास्तव। तो आगामी सभी कार्यक्रमों के लिए आप सभी को पुनः सादर आमंत्रित करते हुए मैं नीलम मलकानिया स्वरांजलि कार्यक्रम से अब आप सभी से अनुमति लेती हूँ। नमस्कार। कुछ ही देर में हम सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों ने बहुत काम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी घटनाओं की जाँच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हर आंगन। आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है घर आंगन। आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर भी और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार।
1: और मैं हूं रश्मि कुकरेती। एफएम गोल के सभी सुनने वालों को और इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार।
0: और रश्मि, आज बहुत ही हमारे लिए गर्व का पल है क्योंकि राष्ट्रपति भवन में जो समारोह हुआ उसमें पार्श्व गायिका अलका याग्निक को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: जी बिल्कुल। और अपनी मधुर आवाज़ जो से सुनने वालों के दिलों पर राज करने वाली अलका याग्निक को जो ये पद्म सम्मान मिला है राधा, ये हिंदी सिनेमा के संगीत जगत के लिए बहुत गर्व का क्षण है। दशकों से जो है उनके गीत हमारी खुशियों में, यादों में और भावनाओं में उन्होंने हिस्सा बटाया है ना, और ये सम्मान उनकी अद्भुत प्रतिभा, समर्पण और संगीत के प्रति उनके अमूल्य योगदान को समर्पित है।
0: अलका याग्निक जी को पद्म भूषण सम्मान मिलने पर बहुत बहुत बधाई। उनकी आवाज़ ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां दी हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया है। और मुझे याद है रश्मि के 90s का वो दौर जब हर गली हर नुक्कड़ पर सिर्फ अलका याग्निक की आवाज़ ही सुनाई देती थी और दिलों को बिल्कुल मदहोश करने वाली आवाज़ थी अलका याग्निक की।

0: ये गीत हमने सुना राजा हिंदुस्तानी फिल्म से अलका याग्निक की आवाज में। आज है निर्जला एकादशी और साल भर की 24 एकादशियों में से सबसे पुण्यदायी और फलदायी एकादशी होती है निर्जला एकादशी। बहुत सारे लोग तो बिना जल ग्रहण के उपवास करते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और इसमें दान पुण्य और इसमें जो दान दिया जाता है ना, ज्यादातर अन्न जल वस्त्र और पंखे का दान जो है वो बहुत शुभ माना जाता है।
1: देखो राधा, जो हमारी सारी ये जो संस्कृति से जुड़ी हुई है ये परंपराएं, जो इस समय इतनी गर्मी होती है तो ये माना जाता है कि आपके आसपास जो लोग हैं आप बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर अपने साथ लेकर चलें। तो साथ लेकर आप तभी चल सकते हैं जब आप कुछ कर रहे होंगे। उन्हीं से ये बात जोड़ रही हूँ भाई, जब आप कुछ काम कर रहे हैं, और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का प्रश्न, यानी कि जब आपको आपकी पहली सैलरी मिली तो वो दिन कैसा था, कैसा लगा, इसी से जुड़ा हुआ है ये प्रश्न। आप हमें बता सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। क्योंकि राधा, पहली सैलरी मिलना ना बहुत भावुक और गर्व से भरा पल होता है, और पैसा ही नहीं मिलता भाई, आपकी जो मेहनत होती है, रातों को जागकर जो आपने पढ़ाई की होती है और आत्मनिर्भर आप बनते हैं, तो ये पहला कदम होता है।
0: जी हाँ, और पहली सैलरी मिलने का जो एहसास है जिंदगी में सबसे खास और यादगार पलों में से एक होता है। ये मेहनत की कमाई आपको आत्मविश्वास तो देती है, एक बहुत सुखद अनुभव भी देती है। तो इस पल को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आप हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी रश्मि ने बता ही दिया, मैं फिर से बता देती हूँ, fmgoldga@gmail.com। आप इस पर ईमेल कीजिए, हम आपका ईमेल शामिल करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। तो अपनी सैलरी को यादगार और उपयोगी बनाने के लिए आपने क्या किया था पहले दिन, तो वो आप हमें जरूर लिखिएगा
1: भाई। कुछ तो अच्छे तरीके आप तुम कहो तो राधा मैं बता दूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखो, अपनी कमाई से भाई माता पिता के लिए कुछ खास खरीद सकते हैं, जैसे भाई माँ के लिए साड़ी या घड़ी, या उनके पसंदीदा रेस्टोरेंट में डिनर करा सकते हैं, लंच करा सकते हैं ना भाई। उनके चेहरे पर जो खुशी देखने को मिलेगी ना राधा, मैं सच कह रही हूं कि वो तो सबसे बड़ी कमाई होगी।
0: बिल्कुल सर, और पहली सैलरी का हमारा फर्ज भी बनता है कि हम अपने माता पिता को दी जाए।
1: हाँ, और भाई माता पिता को तो दें ही, साथ में अपने लिए भी कुछ इनाम छांट लें कि भाई आपने
0: मेहनत है
1: जो मेहनत की थी उसका फल मिला, अपने लिए भी कुछ खरीदें। और

0: पत्थर के सनम, इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। और रश्मि, जो हमने प्रश्न पूछा था, जो आपने प्रश्न पूछा था, उसके हमें संदेश मिलने शुरू हो गए हैं।
1: जी,
0: आपके हाथ में भी मैं देख रही हूँ, ईमेल से निकली हुई है।
1: जी, एक हमारे पास मेल आ गई है नवीन भाटिया जी की। वो कह रहे हैं कि जो पहली सैलरी उन्हें मिली तो उन्होंने अपने मम्मी डैडी के लिए गिफ्ट ले लिया और जो बाकी बचे पैसे से उन्होंने घूमने चले गए। भाई बहुत अच्छे, घूमना फिरना भी बहुत जरूरी है। जब आप घूमते फिरते, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे भारत बहुत खूबसूरत है, जरूर घूमने जाइए, है ना।
0: और घूमने से भी तनाव खत्म होता है, और जब पहली सैलरी मिलती है ना, उससे जब हम घूम के आते हैं उसका तो अनुभव ही दूसरा होता है।
1: उसकी तो यादें बनती
0: हैं, यादें बनती हैं। अब हम एक संदेश और प्राप्त हुआ है, ये वंदना शर्मा का हमें मैसेज मिला है, और ये सेक्टर 6 रोहिणी से लिखती है कि जब पहली सैलरी मिली थी उनके पापा के लिए, वो सबसे गर्व का पल था। उन्हें याद है कि उनकी जो पोस्टिंग हुई थी वो हेल्थ क्लिनिक में हुई थी, मेडिकल लैब

0: टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में,
1: वाह,
0: और कॉलेज की पढ़ाई करते ही उनकी जो उनका जन्मदिन का महीना था उसमें ही उनके जीवन के नए सफर की शुरुआत हो गई थी। उनकी जो पहली सैलरी उन्हें 5,000 रुपये का चेक मिला, उन्होंने सीधे जाकर अपने पापा को दे दिया। वो चेक उनके पापा जी ने बड़े प्यार से देखा और संभाल कर अपने पास रख लिया। उनकी आंखों में जो गर्व और खुशी का संतोष था वो उनके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। उन्हें लगा, वंदना जी को लगा कि उनकी जिंदगी की पूरी मेहनत जो है ना, वो मुस्कान उनके पिता की आंखों में आ गई है। और वो आगे ये भी लिखती हैं कि पापा जी को संगीत सुनने का बहुत शौक था। उन वंदना जी की पहली कमाई की खुशी के लिए उन्होंने एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा, और जब वो घर आया उस पर पहली बार गाने बजे, ऐसा लगा जैसे घर में खुशियां गूंज रही हों। उस म्यूजिक सिस्टम की हर धुन में पापा का प्यार, उनका आशीर्वाद और वंदना जी की मेहनत की मिठास बसी हुई थी।
1: भाई वाह भाई, आप जब आप संगीत सुनते हैं तो वैसे ही तनाव दूर हो जाता है, और अगर FM गोल्ड चैनल चल रहा हो आकाशवाणी दिल्ली का या इंद्रप्रस्थ चैनल चल रहा हो तो बात ही क्या है ना।
0: और खूबसूरत गाने जब सुने जाते हैं और वो नगमे जो होते हैं ना हमारी यादों में बसे होते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: कोई भी नगमा हम सुनते हैं ना तो वो हमेशा हमारे दिल के करीब होता है। हमें लगता है कि अरे ये हमारे दिल की किसी याद से जुड़ा हुआ है।
1: जी वो तो जरूरी है ही, लेकिन एक बात और जरूरी है राधा, मैं चाहती हूँ तुम उसके बारे में जरूर बोलो।
0: हाँ, हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, कि महिलाएं पूरी फैमिली का ध्यान रखते हैं रश्मि जी, लेकिन अपने बारे में सोचना भूल जाती हैं।
1: जी जब और कमाई ऐसा बार, करे बार तो, होता है। हाँ जी बिल्कुल, कमाई तो जरूरी है लेकिन पोषण का ध्यान रखना भी
0: बहुत जरूरी है। और 30 साल के बाद एक उम्र, वैसे तो पोषण का ध्यान हर उम्र में रखना चाहिए, बचपन से ही शुरुआत हो जानी चाहिए, लेकिन एक उम्र होती है कि 30 के बाद आपको न्यूट्रिशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी उम्र में शरीर में हार्मोन्स बदलते हैं, इसका असर जो होता है शरीर में पोषक तत्वों के इस्तेमाल पर पड़ता है, खासकर कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत बढ़ जाती है जो हड्डियों के लिए जरूरी है। तो उसके लिए रश्मि जी क्या करना चाहिए?
1: भाई हम तो ये कहेंगे भाई शरीर में आयरन की अगर कमी हो जाए तो थकान महसूस होती है, कमजोरी आती है, चक्कर आने लग जाते हैं, चेहरा फीका पड़ जाता है, और कई बार तो राधा बाल भी झड़ने लग जाते हैं, तो एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या जरूरी है कि भाई अपने खाने में फल लें, सब्जियां लें, दालें लें, अनाज लें और प्रोटीन जरूर शामिल करें, और ये बहुत महंगे चीजें नहीं है, जो रोजमर्रा के जो आपके खाने हैं वो अपनी थाली में संतुलित रूप से मौजूद होने बहुत जरूरी है।
0: क्योंकि आयरन के लिए पालक ली जा सकती है, दाल है, बीन्स है, कैल्शियम के लिए दूध, दही, हरी सब्जियां हैं, विटामिन डी के लिए भाई आप धूप में बैठिए सबसे बढ़िया, तो सर्दियों में
1: जरूरी है,
0: और आप हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज खा सकते हैं। तो ये लगता है ना कि भाई न्यूट्रिशन के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे या अलग से कुछ करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। आप छाछ पीकर प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करना चाहिए।
1: जी जरूरी है, और एक ऐसी चीज है जो कि बहुत जरूरी है, वो है पानी पीना, है ना, अपने आप को हाइड्रेट रखना, गर्मी के मौसम में पानी और तरल पदार्थों का भी सेवन करते रहें ताकि आप हमेशा तरोताजा रहें, है ना राधा?
0: बिल्कुल।

0: मधुमती फिल्म में ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। और घर आंगन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड से। और अब एक ईमेल हमें और मिल गया है जिसमें डॉक्टर विनोद कुमार हैं जो लिखते हैं रोहिणी से कि मुझे सैलरी मिली थी जब पहली, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और मैंने अपनी पूरी सैलरी अपनी मम्मी के हाथों में दे दी थी। देख क्या बात है रश्मि।
1: देखो ये समय उस समय का है कि जब जो तनख्वाह मिलती थी ना वो कैश के रूप में, नकद रूप में मिलती थी। मुझे याद है मैंने भी अपने जो पहली तनख्वाह थी वो पूरी की पूरी अपने पापा के हाथ में रख दी थी। तो उस समय का वो समय ऐसा ही था कि कैश मिला और
0: कैश में तनख्वाह
1: जी, और हमारे माता पिता को वो सौंप दिया और जो उनकी खुशी चेहरे पे जो झलकती थी ना वो हमारी सबसे बड़ी कमाई होती थी।
0: और उसमें से वो थोड़े से पैसे रख देते थे भगवान के नाम के
1: जी,
0: थोड़ा सा भगवान के नाम का, क्योंकि भगवान के नाम का भी हमारे देश में परंपरा रही है कि थोड़ा सा हिस्सा जो है ईश्वर के नाम पर दान पुण्य के लिए निकाला जाता है।
1: और एक और जवाब हमारे पास आ गया है। आप हैं हमारे साथ सुरभि, ये दिल्ली से हमारे को मैसेज कर रही है। ये कहती है कि जब पहली सैलरी आई तो मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दे दी और एक महीना जब बीता तो समझ में आया कि भाई बजट बनाना बहुत जरूरी होता है। तो
0: ये बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने, क्योंकि अब आजकल की जो जनरेशन मैं देख रही हूँ ना उनको तनख्वाह का के मायने नहीं पता है, तो वो क्या करते हैं तनख्वाह ना खर्च करना शुरू कर देते हैं और जब महीने का अंत आता है तो पता लगता है जी बजट तो बना ही नहीं, आपने क्या किया।
1: तो जो हमारी जनजी है वो जानती है कि बजटिंग कितनी जरूरी है, उसका सही इस्तेमाल, जो आपकी मेहनत से कमाए गए पैसे हैं वो भी बहुत जरूरी है। मौज मस्ती भी कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाइए और अपने भविष्य के लिए भी कुछ निवेश करते हुए जरूर चलिए। और भाई जब आप ऑफिस जाते हैं तो आप मेट्रो में जाते हैं, बसों में जाते हैं, तो बसों में क्या सुविधा दे रही है दिल्ली सरकार और क्या क्या जरूरी है यही बताने जा रही है राधा
0: जी। हाँ, जैसे कि ये तो सबको पता ही है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए एक पिंक सहेली कार्ड सार्वजनिक परिवहनों जैसे बस और मेट्रो के सफर की सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: इसके लिए जगह जगह कैंप भी लग रहे हैं और बस डिपो में भी आप बनवा सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड लेके जाना है और आपका दो मिनट में वो कार्ड बन जाता है जिसमें आप बस और मेट्रो में आसानी से सफर कर सकते हैं।
1: लेकिन,
0: बस में तो फ्री है,
1: जी जी,
0: लेकिन मेट्रो में आपको रिचार्ज करवाना
1: लेकिन
0: पड़ेगा।
1: एक और सुविधा मिली है अब तो भाई, लेडीज स्पेशल जो बसेज हैं उसमें महिला पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे और महिलाओं की सार्वजनिक परिवहन यात्रा को और भी सुरक्षित बनाया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल हुई है।
0: बिल्कुल अच्छी। और इसमें ना सरकार ने कुछ मार्गों को ना टारगेट किया है कि ये जो जहां ज्यादा से ज्यादा महिलाएं सफर करती हैं ऑफिस टाइमिंग में, वहां लेडीज स्पेशल बसें चलाई जाएंगी और सुबह शाम महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी।
1: और सराधा अगर जरूरत पड़ेगी तो ये भी योजना है कि महिला होमगार्ड मार्शलों की भी तैनाती की जा सकती है।
0: और उसमें डीटीसी बस में एक पैनिक बटन भी लगाया जाएगा जो 112 जो इमरजेंसी नंबर है दिल्ली पुलिस का, वहां से एकदम से इमरजेंसी में वो उस बस को जोड़ देगा।
1: भाई वाह क्या बात है, इससे तो और भी सुरक्षा बढ़ जाएगी और किसी भी आपात स्थिति में सहायता पहुंचाने में लगने वाला समय भी कम होगा और जो महिला यात्रियां होंगी उनको त्वरित और प्रभावी मदद मिल पाएगी।

0: ये गीत हमने पारसमणि फिल्म से लिया था, लता मंगेशकर की आवाज़ में। और रश्मि, एक हमें मेल और मिल गई है। ये लिखते हैं पुनीत रावत, ये लिखते हैं शाहदरा की तरफ से लिखते हैं, और ये लिखते हैं कि जो खुद के पैसों से चीज़ें खरीदने पर एक अलग ही आत्मविश्वास आता है
1: जी।
0: और एक जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि पैसों को सही जगह खर्च करने और बचाने की समझ भी बढ़ती है। खुशी से ये लिखते हैं कि पहला जो सैलरी मिलती है ना, जब पहली बार, तो पहला वेतन घर वालों या माता पिता को देने पर जो खुशी मिलती है उसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है
1: जी। और एक और संदेश हमें प्राप्त हुआ है, मयूर विहार से रमा हमारे साथ जुड़ी हैं। उन्होंने बताया कि पहली सैलरी से जो उन्होंने क्या किया कि अपनी दादी के लिए चश्मा बनवाया। भाई वाह, तो उनकी मुस्कान कहते हैं मेरी सबसे बड़ी कमाई थी। और ये भी लगा उन्हें कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, और उन्होंने सबसे पहले बिजली का बिल जमा किया। वाह, और छोटे भाई बहन के लिए गिफ्ट खरीदे और उनकी खुशी देखकर उनका दिन बन गया। भाई वाह, कितनी प्यारी ये बहन है जो अपने भाई बहनों का
0: इतनी जिम्मेदारी के साथ पहली सैलरी को इस्तेमाल किया इन्होंने।
1: जी हाँ, तो जो ऐसी लड़कियां होती हैं ना, वो तो भाई इतनी जिम्मेदार अगर लड़की हो तो वैसे ही घर की शान होती हैं ये लड़कियां, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो समझ में आता है
0: कि लड़कियां अगर पढ़ेंगी, कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो आजकल बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि वो इस काबिल बन पाए, आत्मनिर्भर बन पाए।
1: जी बिल्कुल,
0: जब वो घर की जिम्मेदारियों को अभी से समझ रही हैं तो आगे तो फिर कितना अच्छा रहेगा उनके
1: जी,
0: लिए।
1: बिल्कुल, तभी तो हमारा जो देश है और भी विकास की ओर जाएगा, है ना।
0: हाँ, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: तो घर पर जो है अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें, उसकी कुछ आसान बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं।
1: भाई 21 जून अभी गया है और मुझे लगता है तुम भूल तो नहीं गए 21 जून।
0: नहीं, लेकिन योग दिवस तो इसी जून में था, अभी तो जून चल ही रहा है, लेकिन योग जो है वो हमेशा ही करना चाहिए। उसके लिए एक दिन का महत्व नहीं है योग के लिए। योग और घर पर भी योग किया जा सकता है, क्योंकि मुझे कई महिलाएं मिलती हैं, कहती हमें तो वक्त ही नहीं मिलता, हम कैसे समय निकालें। तो भाई घर पर भी आप जल्दी उठिए, पानी पीजिए, ताजी हवा लीजिए, कुछ देर शांत बैठिए। शांत बैठना ही अपने आप में जो मेडिटेशन होता है ना, कि अपनी सांसों को नियंत्रित कीजिए। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अरे ध्यान कैसे करते हैं, तो आप बैठिए तो सही, दो मिनट ध्यान तो लगाइए।
1: बिल्कुल, और सुबह के समय अभ्यास करना, शरीर को जगाना, मन को सक्रिय करना और शांत ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करने के लिए तो बिल्कुल आदर्श समय है। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि जो अपने शरीर को थोड़ा खिंचाव वाले आसन करें, बहुत आसान आसन होते हैं भाई। आपका जो शरीर होता है वो बिना जल्दबाजी किए हुए भी ऊर्जावान बन जाता है। और जैसे शाम का अगर समय है, जब आप घर वापस

0: लौटते हैं थोड़े समय बाद, तो आप ऐसा करें उस समय भी थोड़े जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है वो कर सकते हैं, अपने मन को तैयार कर सकते हैं। साथ में ऐसा भी कर सकते हैं कि बिल्कुल धीमी गति वाले व्यायाम चुन सकते हैं ताकि आपको आराम भी मिले और दिन भर की थकान भी दूर हो जाए।
1: और ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए तो 20 और 8 का एक रेशो का, अभी मैंने एक योग दिवस की टॉक में सुना था कि 20 मिनट आप बैठकर काम कीजिए और एक बार 8 मिनट के लिए आप थोड़ी सी वॉक करिए आइए।
0: जी बिल्कुल,
1: तो उसके लिए ठीक रहता है कि एक चेयर पर बैठ के लगातार काम करना भी ठीक नहीं है। ये भी योग है कि आप थोड़ा सा टहल लीजिए काम के बीच बीच
0: जी, और अगर आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं तो वहां पर भी आप छोटे छोटे जो व्यायाम है अपने शरीर के अंगों को खींचने वाले वो कर सकते हैं ताकि आपको रीढ़ की हड्डी से संबंधित, गर्दन से संबंधित जो समस्याएं वो ना हो।
1: बिल्कुल।

0: लव इन टोक्यो फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को. और रश्मि, आज हम पूछ रहे हैं, हमने अपनी ईमेल आईडी सबको दी है, किस लिए?
1: भाई सवाल पूछा था कि पहली सैलरी जब मिली तो आपने उसका क्या किया और आपको कैसा लगा.
0: और हमें बहुत सारे संदेश और ईमेल्स मिल रहे हैं. ये ईमेल है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से. लिखते हैं कि पहली सैलरी अपने माता पिता को देना बरकत होती है. इज्जत और पैसा कमाना मुश्किल है, कमा कर उसको संभाल कर रखना और भी मुश्किल है.
1: जी बिल्कुल. और एक और हमारे साथ संदेश हमें प्राप्त हुआ है. आप हैं विनोद गुड़गांव से. आप कह रहे हैं कि पहली सैलरी मिलते ही मैंने एटीएम से पैसे निकाले और कई मिनट तक उन नोटों को देखकर मुस्कुराता रहा. भाई वाह. और ये कहते हैं कि पहली सैलरी से पूरे परिवार के लिए मिठाई लेकर गया, घर का माहौल ही बदल गया. और वो जो स्क्रीन शॉट था ना, वो पहली सैलरी का, मैंने आज भी फ़ोन में संभाल कर रखा है, क्योंकि वो सिर्फ रकम नहीं.

0: थी बल्कि मेहनत की एक पहचान थी। भाई वाह विनोद, ये तो बहुत अच्छा और नया बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: अनुभव
1: अनुभव
0: है
1: हुआ,
0: ना
1: और इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है,
0: जी।
1: क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी सैलरी कहते हैं कि भाई अब पहली सैलरी कई बार सब अपने माता पिता को दे देते हैं, ज्यादातर लोग यही करते हैं कि अपने माता पिता को। लेकिन एक बहन ने अभी पहले लिखा था कि उन्होंने बिजली का बिल भरा, तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस था।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखो सैलरी आप तभी कमाओगे अच्छी जब करियर अच्छा होगा, और करियर के कई
1: हाँ
0: सारे विकल्प हैं।
1: हाँ
0: एक
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: विकल्प मेरे दिमाग में आ रहा है राधा, कि बायोटेक में करियर भी बहुत अच्छा किया जा
1: जी
0: सकता
1: हाँ
0: है
1: बिल्कुल।
0: ना।
1: बायोटेक्नोलॉजी जो होता है उसकी जो डिमांड है बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अब जो ये बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है बहुत सारे ऑप्शन इसमें आ चुके हैं,
0: जी
1: ये सिर्फ रिसर्च तक, क्योंकि पहले लगता था बायोटेक्नोलॉजी में इसने बीएससी करी है या कुछ किया है तो ये तो रिसर्च है, रिसर्च इसके अलावा भी इसका तकनीकी का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
0: भाई, बहुत मांग तेजी से बढ़ रही है, चाहे अच्छी सेहत हो, कारगर दवाइयां हो, बढ़िया फसल तक बायोटेक्नोलॉजी की जो है जरूरत पड़ती है। और हम ये कहेंगे कि इंडस्ट्री में नए विकल्प आ रहे हैं, ये क्षेत्र अब केवल रिसर्च तक सीमित नहीं है जैसा कि तुम बता रही थी, बल्कि इसका दायरा बहुत बढ़ गया, और ये बिल्कुल शानदार अवसर है युवाओं के लिए, और इसमें संभावनाएं अपरिमित संभावनाएं हैं।
1: हाँ अगर आपने हो मतलब बायो ले रखी है 11th 12th में, चाहे होम साइंस के साथ लियो चाहे साइंस के साथ लियो, तो आप इसमें कृषि फूड टेक स्वास्थ्य जैव आधारित तकनीकी में अगर रुचि भी हो तो आपके लिए क्षेत्र बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि इसमें बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक्स बायोकेमिस्ट्री बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोमेडिकल साइंस आदि विषयों में 12वीं के बाद स्नातक स्तर यानी BA की पढ़ाई कर सकते हैं।
0: और इसके अलावा इस क्षेत्र में शोध किया जा सकता है, फार्मास्यूटिकल में काम किया जा सकता है, हेल्थ केयर में जुड़ सकते हैं। भाई कृषि में भी बायोटेक्नोलॉजी का आजकल बहुत प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। फूड प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण में जा सकते हैं, और भाई औद्योगिक उत्पादन की अगर हम बात करें तो यहाँ भी इन क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर है। तो हम तो ये कहेंगे कि चाहे सरकारी हो चाहे निजी क्षेत्र हो, दोनों में जो अगर बायोटेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित हैं तो इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।
1: बायोटेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिटिक्स और जीनोमिक्स के उपयोग से अनुसंधान और उत्पाद विकास की गति में बढ़ रहे हैं, और इससे नए रोजगार और विशेषज्ञता के अवसर भी पैदा हो रहे
0: भाई
1: हैं।
0: आजकल हम आए दिन बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इसमें तो वैसे ही बहुत रोजगार है।
1: हाँ तो बायोटेक्नोलॉजी को ऐसा मत सोचिए, अगर आपका इंटरेस्ट है तो बेझिझक आप इसमें करियर बना सकते हैं।

0: गीत हम सुन रहे थे काला सोना फिल्म से आशा भोसले और डैनी की आवाज। और आपके हाथ में मैं देख रही हूँ मेल है और आपके चेहरे की खुशी बता रही है
1: कि जी बड़ी खूबसूरत सा ये संदेश मेरे पास आया है। ये संदेश हमें भेजा है वैशाली से रश्मि ने। इन्होंने क्या किया, ये कहती है कि मैंने नौकरी शुरू की शादी के बाद, और जब पहली सैलरी मिलने का समय आया तो इन्होंने बैंक में बाकायदा खाता खोला जी, और अपने सपनों का खाता खोल दिया ऐसा लगा उन्हें। और वो कहती हैं कि मैंने, मेरे जो पति हैं वो बिजनेसमैन हैं, तो कभी कभी जो उनमें से पैसे मिलते हैं तो मैं उनकी भी मदद करती हूँ। पहली सैलरी से मैंने एक पौधा खरीदा था, सोचा था जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा वैसे ही मेरी तरक्की भी बढ़ेगी। भाई वाह, कितना सुंदर विचार
0: और
1: है।
0: हाँ, सोच कितनी अच्छी है कि पौधा घर में लगाया कि ये पौधा भी बढ़ता जाएगा और मेरी तनख्वाह बढ़ती जाएगी या तरक्की घर में होती रहेगी। और वैसे भी हरियाली, पौधे जो होते हैं ना वो घर में हमेशा खुशहाली लेकर आते हैं।
1: और एक बहुत अच्छी बात, वो बिल्कुल स्वतंत्र हो गई आर्थिक रूप से, उन्होंने अपना खाता खुलवाया बैंक में और अपने पति की भी मदद की आर्थिक रूप से। भाई बिजनेस में कभी कभी पैसे की जरूरत भी पड़ती है,
0: तो इससे पति पत्नी का जो रिश्ता है ना कितना मजबूत हो गया होगा
1: जी, और भी मधुर हो गया होगा। लेकिन कभी कभी तो बहस भी हो जाती है, कभी कभी ऐसा समय भी आता है पति पत्नी की बनती नहीं है,
0: क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है रश्मि वो बहुत प्यारा होता है। कभी प्यार कभी तकरार, ये चलता ही रहता है। अब चाहे अनचाहे कहा सुनी बहसबाजी कई बार हो ही जाती है
1: जी।
0: और लेकिन कुछ देर बाद ही मामला शांत भी हो जाता है, क्योंकि पति पत्नी कई बार तो कुछ ऐसी बातों पे अपने आपको लड़ता हुआ पाते हैं ना कि वो बिल्कुल बचकाना लगता है कि अरे हम लड़ क्यों रहे थे।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: कई बार सोच का अंतर होता है, कई बार होता है हम बातचीत नहीं कर पाते, समस्या सुलझा नहीं पाते, कोई अपने भावों पर मतलब काबू नहीं रख पाते, एकदम से गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब बात बाद में समझ आती लगता है कि आप छोटी सी बात थी।
1: जी बिल्कुल। तो हम तो यही कहेंगे कि चाहे आपको ये लगे कि आपकी जो बातें हैं वो सहमति ना हो मुद्दों पर, लेकिन हम ये कहेंगे कि एक दूसरे की भावनाओं को नकारे नहीं, और गलती स्वीकार करना कोई इसमें कोई कमी नहीं आ जाती आपकी उसमें। और हम तो ये कहेंगे कि अगर आप शांत रहेंगे तो बहुत अच्छी संभावना है कि रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा।
0: मतलब गलती हो तो सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है।
1: बुराई नहीं है, आप दोनों सही हो सकते हैं, इस बात को समझना चाहिए और बातचीत को सही और गलत इस चीज में उलझने नहीं देना चाहिए,
0: और एक दूसरे की कमियां कभी नहीं गिनानी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कमियां जो होती हैं हर रिश्ते में होती हैं, और भावनाएं जो होती हैं वो कमियों को गिनाने के लिए नहीं होती हैं।
1: जी बिल्कुल। और हम तो ये कहेंगे कि उस समय में थोड़ा सा एक गैप ले लें,

0: है ना, ताकि आपका जो दिमाग है वो ठंडा हो जाए, है ना, आपका जो नर्वस सिस्टम है, बीपी और जो धड़कने हैं वो नियंत्रित हो जाए और आपका तनाव कम हो जाए, और एक अंतराल के बाद मुझे लगता है कि आप बेहतर बात तब कर पाएंगे।
1: और ऐसी भी जरूरत होती है कि जहाँ अगर आपको लगता है सॉरी बोलना है वहाँ सॉरी बोलिए, और अगर आपको लगता है कि सामने वाले की तारीफ की जा सकती है तो एक दूसरे की तारीफ कीजिए,
0: बिल्कुल
1: वो बहुत जरूरी है, ताकि सामने वाले को भी खुशी हो, चाहे पति हो या पत्नी।

0: वो मुफ्त में चली आती है।
1: हाँ, और आदर का भाव भी एक दूसरे के लिए बढ़ जाता है।
0: और ऐसी पत्नी को भी सोचना चाहिए भाई, दिन
1: कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो।
0: और जो मेहनत करके जब व्यक्ति घर पे आए तो थोड़ा सा उसे शांत होकर बैठने दे और फिर अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सके,
1: क्योंकि जो जिंदगी का सफर है उन्हें एक साथ ही तो काटना है।
0: जी बिल्कुल।

0: और एक और मेल प्राप्त हुई है, आप हैं राजू अग्रवाल चौधरी वास हरियाणा से, आप कह रहे हैं कि जब मैं पहली सैलरी लेकर आया तो एक पुस्तक खरीदी थी, घर वाले खुश हुए। अब मेरे दोस्त के लड़के की ड्यूटी जो है वो आकाशवाणी हिसार में चल रही है, तो मेरे दोस्त ने भी खुशी में के मौके पर पार्टी रखी, खुशी मनाई और पंचमुखी मंदिर में दर्शन भी किए। आप हैं मंटू शर्मा और रोहित वशिष्ठ जो हैं वो जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं अमृतसर से मोबाइल ऐप पर ये सुन रहे हैं और कह रहे हैं कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा राधा पंकज बिंदल जो हैं वो कह रहे हैं जब पहली सैलरी मिली तो सत्संग के काम में लगाई। आप हैं काम चौधरी वास हिसार से, पंकज अग्रवाल, राजू अग्रवाल, केशव।
1: और आप सुन रहे हैं ये गीत मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में।
0: हम समेट रहे हैं ये
1: कार्यक्रम को, तो कार्यक्रम घर आंगन से राधा पाठक
0: और रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा। नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे

0: बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on the 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to excesses in the emergency. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah today paid homage to all those who stood firm in defense of democratic values during the emergency. In a social media post, Prime Minister Modi said the emergency was a

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:10 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। इसी के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी होस्ट रिया प्रकाश। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे उस फिल्म का नाम है खिलौना। जी हाँ, खिलौना 1970 में बनी भारतीय हिंदी सिनेमा की एक बेहद लोकप्रिय और सदाबहार ड्रामा फिल्म है। एलवी प्रसाद द्वारा निर्मित और चंदन बोहरा द्वारा निर्देशित ये फिल्म बॉक्स ऑफिस

पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के मुख्य कलाकार संजीव कुमार विजय कमल के किरदार में हैं, मुमताज चांद के किरदार में हैं, शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी के किरदार में हैं और जितेंद्र मोहन की भूमिका में शामिल हैं। आगे इस फिल्म से जुड़ी हम आपको और भी जानकारियां देंगे। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, फिल्म खिलौना बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट तो साबित हुई ही, साथ ही फिल्म का संगीत बेहद सफल रहा। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तैयार किया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के सदाबहार गीत आज भी लोगों के दिल के करीब हैं। और 1971 में 18वें फिल्मफेयर पुरस्कारों को कुछ 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें से इसने फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में मुमताज ने पुरस्कार प्राप्त किया। अन्य नामांकन

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजीव कुमार, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता जगदीप, सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए गुलशन नंदा और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए मोहम्मद रफ़ी भी नॉमिनेटेड रहे।

0: खुश रहे।
1: तो हमारे पास बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं कोरबा छत्तीसगढ़ से। हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता अभिनव कुमार, गौरव कुमार और प्रणव कुमार। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। समडील नवापाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और श्रीमती अंकु राघव गुप्ता। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। गांव नथाना से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। विरम गांव गुजरात से अजीत भावसार और प्रमीला भावसार। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार सचित, कुमार प्रथमेश, कुमारी प्रणाली, कुमार सर्वर्थ, कुमारी सानवी और कुमारी हर्षिता।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और मैं हूं आपके साथ रिया प्रकाश। श्रोताओं, फिल्म खिलौना अपने मानसिक स्वास्थ्य और प्रेम पर आधारित अपने शानदार अभिनय, भावनात्मक कहानी और सदाबहार संगीत के लिए जानी जाती है। श्रोताओं, फिल्म की कहानी विजय कमल यानी संजीव कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी प्रेमिका की मौत के सदमे में मानसिक संतुलन खो बैठता है। उसके परिवार वाले उसे ठीक करने की उम्मीद में एक युवा वेश्या चांद यानी मुमताज को उसकी पत्नी का नाटक करने के लिए घर लाते हैं। विजय धीरे धीरे ठीक होने लगता है और उसे चांद से प्रेम हो जाता है, लेकिन ठीक होते ही विजय कमल चांद को भूल जाता है। इसी बीच ये पता चलता है कि चांद विजय कमल के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर विजय कमल के परिवार वाले चांद को धुतकारते हैं, पर अंत में परिवार वाले उसे अपना लेते हैं।

फूली है सा

0: क्या है चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चोर?
1: यू सिंग लाइक किशोर बट शादी का डे
0: ओ यस सितंबर 8
1: वेरी लेट
0: डार्लिंग वेट

जले छम छम छम छम छ छम छ छम ए गण हम तुम पे दिल निसार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है।

हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये है शांति नगर सोनीपत से। सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव नेहरू चौक पैठन से हमारे साथ जुड़े हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा। SSCL कॉलोनी कोरबा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता सीमा राव और के राव। श्रोताओं, फिल्म खिलौना गुलशन नंदा की उपन्यास पत्थर के होंठ पर आधारित थी। फिल्म की कहानी को सबसे पहले गुरुदत्त को ध्यान में रखकर लिखा गया था, लेकिन वो के आसिफ की फिल्म लव और गॉड में बहुत व्यस्त थे और गुरुदत्त के निधन के बाद इसे रोक दिया गया था। फिर फिल्म चंदन बोहरा ने बनाई। इस फिल्म के लिए संजीव कुमार को मुख्य किरदार के लिए चुना गया। फिल्म में जो किरदार मुमताज ने निभाया है उसे उस किरदार के लिए सबसे पहले शर्मिला टैगोर और वहीदा रहमान को चुना गया था।

मशहूर हो जाए। संदेश आया है फजिल का पंजाब से। भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विष्णु खेड़ा, लाडली खेड़ा, शालिनी टुआंशी खेड़ा और वाणी खेड़ा। मेरठ कैंट से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता दिग्दर्शन और कविता गौड़। छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। छत्तीसगढ़ चूरी लाइन मुंगेली से हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अफसाफ, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और निलोफर फातिमा। धनौरी तिलीवाला उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू। श्रोताओं, खिलौना फिल्म की कुल कमाई बॉक्स ऑफिस पर 3.5 करोड़ की हुई थी, जिससे पता चलता है कि फिल्म कितनी सुपरहिट रही होगी। और इस फिल्म में कलाकारों ने जो अभिनय किया है वो काफ़ी सराहनीय था। श्रोताओं, यह फिल्म खिलौना 1963 में बनी तेलुगु फिल्म पुनर्जन्म का रीमेक था और साथ ही इसे तमिल और मलयालम भाषा में भी बनाया गया है।

प्रेम की। इसके साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से संपन्न होता है। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट रिया प्रकाश को दीजिए अनुमति।

0: जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह भूल जाती है सुबह गई रात को।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। बिजली मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा प्रणालियां ते मजबूत ब्रिक्स सहयोग दा सदा दित्ता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर का कहना है कि कोविड-19 दहशतगर्दी ते अज दियां जलवायु घटनावां दे प्रभाव वर्गियां चुनौतियां दा सामना करन लई अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नूं प्रदान प्राप्त दान विच कथित माली बेनेमिया की अदालत की निगरानी हेठ जांच की मांग करने वाली

जनहित अर्जी की तुरंत सुनवाई करने तो इनकार कर दिता है। वेनेजुएला च जोरदार भूचालां नाल तबाही 32 मौतां ते 700 तो वध लोक जख्मी ते भारत दे दखल तो बाद पैरिस विच चंडीगढ़ दे विरासती फर्नीचर दी नीलामी रोकी गई। हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत ऊर्जा प्रणालियां दे निर्माण लई ब्रिक्स सहयोग नूं मजबूत करना चाहुंदा है। गुरुग्राम विच 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग का उद्घाटन करदिआं उन्होंने कहा कि विकास दीआं इच्छावां ते निरंतर रहणयोग विकास टीचे नूं प्राप्त करने लई किफायती भरोसेमंद ते निरंतर रहणयोग ऊर्जा जरूरी है। समुची ऊर्जा मुल लड़ी विच भारत दे निवेशां नूं उजागर करदे होए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया दीआं सब तों वड्डीआं डिजिटल तौर ते समर्थ बिजली प्रणालियां विचों इक दी नहीं रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ तो वध स्मार्ट मीटर पहला ही लाए जा चुके ने अते तब्दीली आने वाले सालों विच वड्डे पद्धर ते जारी रहेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया हथियारों की वधदी वरतों जोखम लैण की प्रवृत्ति च वाधे ते सोशल मीडिया संचालित राजनीति नूं देख रही है। दक्षिणी कोरिया के जेजू टापू ते शांति ते खुशहाली ते एक कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं डॉ जयशंकर ने कहा कि अपनी विलखणता दा दावा करन दा अते समर्थावां दी वरतों करन विच घट झिझकता रुझान वधे है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 दहशतगर्दी जां अत दीआं जलवायु घटनावां दे प्रभाव वर्गीआं चुनौतियां दा सामना करन लई अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि प्रभावशाली देशों विचकार नवी समझ अते नजदीकी संबंध बनाने नाल विश्व व्यवस्था नूं स्थिर करन अते खास एजेंडिया ते सहयोग राही समस्यावां दा हल करन विच मदद मिलेगी। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत ते दक्षिणी कोरिया जहाज निर्माण डिजिटल सेहत बुनियादी ढांचा जां रक्षा वर्गे खेतरां विच सहयोग कर सकदे ने। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नूं प्राप्त दान विच कथित माली बेनेमिया दी अदालत दी निगरानी हेठ जांच दी मंग करन वाली जनहित अर्जी PIL दी तुरंत सुनवाई तों इनकार कर दित्ता है। हालांकि अदालत ने पटीशनर नूं भरोसा दित्ता है कि मामला ढुकवे समय ते सूचीबद्ध कीता जाएगा। पटीशनर एडवोकेट नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने जस्टिस VV नागरत्ना अते जॉय माल्या बागची दे बेंच नूं दस्या कि उन्हां दी पटीशन अहम सबूतां नूं सुरक्षित करन लई तुरंत सूचीबद्ध करन तक सीमित है। पटीशन विच अयोध्या दे राम मंदिर विच दान अते भेटा नाल संबंधित CCTV फुटेज डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड अते होर सबूतां दी संभाल दी मांग कीती गई है। इह ट्रस्ट वल्लों प्राप्त दान दी पूरी जांच ते मंदिर फंडां दे प्रबंध विच वधेरे पारदर्शिता दी भी मांग करदी है। पटीशन विच कथित माली बेनेमिया दस्से करे अते उत्तर प्रदेश सरकार वल्लों गठित विशेष जांच टीम SIT वल्लों चल रही जांच दा हवाला दित्ता गया है। पटीशनर ने स्पष्ट किया कि यह मामला सिर्फ दान के प्रबंधन नाल संबंधित है अते धार्मिक रवायतों विच दखलअंदाजी की मांग नहीं करता है। इस दौरान लखनऊ डिवीजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अगवाई वाली 3 मैंबरी विशेष जांच टीम ने हाल ही विच राज सरकार नूं अपनी मुढली रिपोर्ट सौंप दी है। मंदिर के फंडा के कथित गबन की वेरवे सहित जांच अजे भी जारी है। अज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह उस दिन की याद दवाउंदा है जदों 25 जून 1975 नूं भारत के संविधान नूं कुचलिया गया सी। यह एमरजेंसी दीआं वधीकियां कारण पीड़ित हरेक व्यक्ति नूं श्रद्धांजलि देण दा भी दिन है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते गृहमंत्री अमित शाह ने अज उन्हां सारिआं नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती है जो एमरजेंसी दौरान लोकतंत्री कदरां कीमतां दी रख्या लई दृढ़ता नाल खड़े सन। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि एमरजेंसी संविधान ते सीधा हमला सी। उन्हां कहा कि इसने नागरिक आजादियां नूं मुअत्तल करन प्रगटावे दी आजादी ते पाबंदियां लाउण अते सियासी नेतावां पत्रकारां अते समाजिक वर्करां दी गिरफ्तारी दा गवाह बनाया। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRNews ਜਲੰਧਰ। दमनकारी मुगल हकूमत खिलाफ जंग की अगवाई करने वाले पहले सिख फौजी कमांडर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं अज उन्हां दी शहीदी दिहाड़े ते देश नमन कर रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं उन्हां दे शहीदी दिवस ते श्रद्धांजलि भेंट करदिआं एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर एक महान योद्धा खालसा फौज दे पहले जरनैल अते बेमिसाल बहादुरी दे प्रतीक सन। उन्हां कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जो मात भूमि धर्म ते स्वैमान दी राखी लई समर्पित सन ने अपनी बेमिसाल हिम्मत ते कुशल अगवाई राही कई मौकियां ते मुगल फौज नूं हराया अते एक विशाल खेतर नूं मुगल जुलम तों मुक्त करवाया। श्री शाह ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने किसानां नूं उन्हां दा सही हक मिलना यकीनी बनाउण लई एक न्यायपूर्ण सिलसिला कायम कीता। उन्हां भी कहा कि असहत असीहे सहण दे बावजूद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने धर्म परिवर्तन नूं स्वीकार नहीं कीता। पंजाब दे मुख्यमंत्री

0: ಸಂಹಿತೆ ಸಿಇಟಿಎ ಆರ್ ಕಂಪೇನಿಯನ್ ಡಬಲ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಡಿಸಿಸಿ ಕೆ ಆಗಾಜ್ ಕೆ ಸಿಲ್ಸಿಲೆ ಮೇ ತಯಾರಿಯೋ ಕಾ ಜಾಯಜಾ ಲೇಂಗೆ ಜಿನ್ಕಾ ಇತ್ಲಾಕ್ ಆಯಿಂದಾ ಮಾಹ ಕಿ 15 ತಾರೀಖ್ ಸೆ ಹೋಗಾ ಇಮ್ಕಾನ್ ಹೈ ಕಿ ಉನ್ಕಾ ಯೇ ದೌರಾ ದೋನೋ ಮುಲ್ಕೋ ಕೆ ದರಮಿಯಾನ್ ಬಾಹಮಿ ತಿಜಾರತಿ ವ ಸರ್ಮಾಯಕಾರಿ ಕೋ ನಯಿ ರಫ್ತಾರ್ ದೇಗಾ सुप्रीम कोर्ट ने मुफादे आमा की उस अर्जी पर फौरी समाअत करने से आज इनकार कर दिया जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जानिब से वसूल किए गए अतियात की अदालत की निगरानी में तहकीकात कराए जाने की दरखास्त की गई है लेकिन अदालत ने अर्जी गुजार को यकीन दिलाया है कि इस मामले को सुनवाई के लिए जल्द ही फेरिस्त में शामिल किया जाएगा। बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने आज कहा कि भारत तवानाई का निज़ाम कायम करने की खातिर ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान इश्तराक को मुस्तहकम करना चाहता है। गुरुग्राम में ब्रिक्स मुल्कों के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग का इफ्तिताह करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि तरक्याती मकासद और पायदार तरक्की के हुसूल के लिए काबिल इस्तेताअत काबिल भरोसा और पायदार तवानाई नागुजीर है। तवानाई के शोबे में भारत की सरमायाकारी को उजागर करते हुए जनाब मनोहर लाल ने कहा कि भारत डिजिटल तरीकेकार से चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े बिजली निज़ाम में से एक के लिए बुनियाद रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से ज़्यादा स्मार्ट मीटर्स पहले ही लगाए जा चुके हैं और यह सिलसिला आने वाले बरसों में तेज़ रफ्तारी से जारी रहेगा। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट परवाज का इफ्तिताह किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से मरबूत करने वाली पहली हब एंड स्पोक परवाज का मकसद दुनिया के साथ बिला रुकावट भारत के तूलो अर्ज को मरबूत करना है। वेंजुएला की सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने मुल्क में एक के बाद एक 7.2 और 7.5 शिद्दत के जलजले आने के पेश नज़र मुल्क में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया है। आज सुबह इन जलजले के सबब क्राकस और मुत्तसिल इलाकों में कई इमारतें ढह गईं। मुल्क से खिताब करते हुए मोहतरमा रोड्रिगेज ने ऐलान किया कि तलबा के लिए क्लासें मुअत्तल की जाती हैं और आइंदा नोटिस तक गैर जरूरी सरगर्मियां भी मुअत्तल रहेंगी। सदर रोड्रिगेज ने कहा कि सिलसिलेवार ताकतवर जलजले के बाद 32 अफराद हलाक हुए हैं और 700 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वेंजुएला में शदीद जलजले के बाद हुए जानी नुकसान पर रंजोगम का इजहार किया है। फीफा आलमी कप में ब्राजील जनूबी अफ्रीका मैक्सिको और मराकश आज अपने अपने मुतालिका मैच जीतकर नॉकआउट मरहले में पहुंच गए हैं। जनूबी अफ्रीका आज सुबह मोंटेरे में जनूबी कोरिया से 1 गोल से जीत हासिल करने के बाद पहली मरतबा नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। नायब सदर वजीर आजम और वजीर दाखिला ने उन सभी को खराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान जमहूरी अकदार का दिफा किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए मजबूत बैन अल-अक़वामी इश्तराक पर जोर दिया है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल जामे इक्तसादी और तजारती माहदे के निफाज से पहले बरतानिया का 3 रोजा दौरा करेंगे। भारत ने तवानाई के शोबे में मजीद ब्रिक्स शराकतदारी पर जोर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Samvidhan Hatya Divas being observed today. Prime Minister Narendra Modi pays homage to those who defended democratic values during the emergency. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls for stronger collaboration amid global challenges, invokes Vasudhaiva Kutumbakam at Jeju Forum in South Korea. BRICS Energy Ministers meeting begins in Gurugram under India's BRICS 2026 chairship. Powerful earthquakes strike Venezuela back-to-back, causing multiple building collapses, state of emergency declared. South Africa advanced to knockout stage of FIFA World Cup for first time, defeating South Korea 1-0 in Monterrey. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening.

0: समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चो में सिमटा जब किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
6: The global south should be enabled.
7: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर

0: नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जैकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जाँच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
2: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन स्पोक मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
1: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में

0: आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दोपहर के 2:30:19 हो रहे हैं। समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार का।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत सभी सुनने वाले श्रोताओं का एक ही कलाकार कार्यक्रम के इस सफर में। आज हैं आप मेरे यानी मनीषा के साथ और आज होगा ये सफर तय मेरे साथ। तो सभी लिसनर्स को मेरा यानी मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, एक ही कलाकार में बात आज हिंदी फिल्म संगीत की उस सुनहरे दौर की होगी जहां संगीत और संगीत की धुन बनती नहीं बल्कि अनुभूतियों में जी जाती थी।

का कार्यक्रम समर्पित है ऐसे ही संगीतकार को, जिनकी धुनों में दर्द था, मोहब्बत थी, शायरी थी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गहराई भी।

जी हाँ, उस भूली दास्तां को आज हम याद कर रहे हैं, क्योंकि आज एक ही कलाकार में हमारे वो कलाकार हैं जिनकी जयंती भी है आज, और भारतीय सिनेमा के इतिहास में वो कलाकार एक महान संगीतकार और गजलों के बेताज बादशाह मदन मोहन के नाम से जाने जाते रहे हैं। उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन तो करते हैं और साथ ही साथ उनके उन गीतों के दौर में फिर से जीते हैं अपने उन लम्हों को, अपने उन एहसासों को। जी हाँ, 1924 में 25 जून को जन्मे मदन मोहन जी 1950 से 1975 के बीच लगभग 100 फिल्मों में मधुर और कालजयी संगीत देते रहे और ऐसी अमर धुन रचते रहे जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है।

दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में हुआ। उनके पिता राय बहादुर चन्नीलाल उस समय मध्य पूर्व में कार्यरत थे। उनकी माँ कवियत्री थीं और उन्हीं से ही मदन मोहन जी को संगीत और साहित्य की गहरी समझ विरासत में मिली। दिलचस्प बात यह है कि उनके जीवन की उन्होंने कुछ समय सेना में भी काम किया। फिर अपने जीवन काल में वे आकाशवाणी लखनऊ से भी जुड़े, जहां उन्हें उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे दिग्गज कलाकारों को करीब से सुनने, समझने और उनसे सीखने का अवसर मिला। इस तरह संगीत से उनका नाता गहराता गया।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे साथ इंद्रप्रस्थ चैनल पर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आज एक ही कलाकार में हम बात कर रहे हैं उस महान संगीतकार की जो गजलों के बेताज बादशाह कहे जाते थे। उनकी जो गजलें हैं उसका जो दौर है वो कभी थमा ही नहीं दोस्तों। आज भी उनके संगीत को चाहने वाले बहुत से दीवाने बैठे हुए हैं। हम उनकी बातें करेंगे और भी, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक संदेश।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक आप सभी का, आप है आपके अपने रेडियो चैनल आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ में। और साथियों, आपके मेल, आपके संदेश, जिनकी प्रतीक्षा हमें होती है, हमें पता है आप अपने कार्यक्रम को बहुत गौर से सुनते हैं और बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जो श्रोता साथी नए हैं, उनके लिए हम बता दें कि आप जुड़े हुए हैं आपके अपने कार्यक्रम एक ही कलाकार में। और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार, जो हिंदी फिल्म जगत के महान संगीतकार कहे गए मदन मोहन मालवीय जी, जिनकी आज जयंती है। तो आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ बने रहें, अपने संदेश और अपनी क्रिया प्रतिक्रिया हमें बताते रहें ipradiodelhi@gmail.com पर। और दोस्तों, आपको मैं बताती हूँ कि 1950 में जब मदन मोहन मालवीय जी ने आँखें फिल्म से स्वतंत्र संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की, तो मदन मोहन जी को सफलता का रास्ता इतनी आसानी से नहीं मिला। जिस दौर में नौशाद, शंकर जयकिशन और सचिन देव बर्मन जैसे दिग्गज और स्थापित कलाकार वहाँ थे, उनके बीच मदन मोहन ने किसी की कॉपी ना करते हुए अपनी मौलिकता को बरकरार रखते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। एक ऐसी पहचान जहाँ दर्द भी था और नज़ाकत भी।

श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ipradiodelhi@gmail.com के संदेशों के लिए, और हमारे पास बहुत सारे संदेश आ चुके हैं हमारे श्रोता साथियों के, जिन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। और इनमें हमारे श्रोता साथी हैं फारूक अली खान गुन्नौर यूपी से, फैजी फराज फरहीन और फारिया और ताहिरा इनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह कार्यक्रम सुन रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, वो हैं हमारे साथ चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर जी। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उसी तरह धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, और उन्होंने कार्यक्रम को बहुत सराहा है। जी बहुत शुक्रिया। उन्हें मदन मोहन जी से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो बहुत अच्छी लग रही है। ये हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा। बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम को इतने गौर से सुनते हैं और हमारे हौसले को आप बढ़ाते हैं। गांव नधाना पंजाब से हैं हरजिंदर छंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। जी बहुत शुक्रिया, हमारे कार्यक्रम के साथ जब आप जुड़ते हैं हमारे हौसले को बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ, हमारे कार्यक्रम को करने का कोई तो मकसद पूरा हुआ है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कबीर रेडियो रेडियो श्रोता संघ से डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देवी देव तामूरिया, डॉली बेबी, पूजा तामूरिया, उनके साथ राधिका प्रभा देवी तामूरिया। और इसी तरह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गाँव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुलसी मस्कीन हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमेशा की तरह, और खूबसूरत गीतों के लिए वो

में धन्यवाद कह रहे हैं जी आपका, धन्यवाद इन गीतों को ध्यान से सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह हमारे साथ हैं अमर रमेश कुमार खत्री और इन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। ये कराची से हैं और आपका शुक्रिया, इतनी दूर से जब हमसे हमारे श्रोता साथी जुड़ते हैं तो सच में हमें लगता है कि हमारे इस कार्यक्रम का मकसद पूरा हुआ। और देखिए हम आपके नाम लेते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज है उनकी जयंती जिन्होंने हमें खूबसूरत संगीत का तोहफा दिया हिंदी फिल्म जगत में। तो आइए सुनते हैं हम उनके एक और खूबसूरत से गीत को।

करें तो उसमें लता मंगेशकर और मदन मोहन जी का जिक्र लाजमी है। लता जी ने स्वयं कई अवसरों पर कहा कि मदन मोहन की धुन पर गाना उनके लिए एक विशेष अनुभव है। दोनों की जोड़ी ने कई कालजयी गीत दिए जिनमें लग जा गले, नैना बरसे, आपकी नजरों ने समझा, बयाना धरो, नैना में बदरा छाए, दिल ढूंढता है और वो भूली दास्तां जैसे बहुत सारे ऐसे गीत आते हैं जो हमारे दिलों में आज भी बसे हुए हैं। मदन मोहन

वहीं मदन मोहन जी ने शब्दों की आत्मा को संगीत में उतारने का प्रयास किया। उनकी धुनों में शास्त्रीय संगीत और मखमली भावनाओं का अनूठा संगम बनाया। आज भी संगीत के विद्यार्थी उनकी कंपोजिशंस का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इतने महान संगीतकार होने के बावजूद मदन मोहन जी अपने जीवन काल में उतने पुरस्कार नहीं पा सके जिनके वो वास्तव में हकदार थे। समय की सीमाओं से परे धुन रचने वाले संगीतकार मदन मोहन जी का संगीत आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना कि पहले था।

दोस्तों, संगीत के उस जादूगर का सफर जिसने दर्द के सुरों में अपने आप को पिरोकर अमर कर दिया। आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार में संगीतकार और गजल सम्राट मदन मोहन जी की जीवन से जुड़ी बातें सुनी आपने। अब आपकी होस्ट और दोस्त मनीषा बोस को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे अगले सफर में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। शब बखैर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 3 बजा हुआ है और अब समय है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज का।

जी हाँ दोस्तों, हम खोल रहे हैं वो पिटारा यादों का अपने कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज में। जी हाँ, बात करेंगे उस समय की जब धुन एक कहानी थी, हर बोल एक एहसास हुआ करता।

जी हाँ, मैटनी मेलोडीज, जिसमें आप सुन रहे हैं गोल्डन एरा के वो सुपर डुपर हिट गीत जिन्हें आज भी हम अपने दिलों में महसूस करते हैं उन एहसासों के साथ। तो दोस्तों, ये वो दौर था जब मदन मोहन साहब जी 1964 में लता जी के साथ उनकी आवाज़ में दर्द को महसूस करते हुए ऐसे पिरोते थे जैसे 60 साल बाद भी वो वैसे ही महसूस हो रहे हैं। आंख बंद करने से ऐसा लगता है जैसे वो दौर, वो एहसास हम आज भी जी रहे हैं। और ऐसे ही दौर को जीते हुए इतनी दूर निकल आए ऐसे मेलोडी क्वीन के साथ मदन मोहन साहब ने एक से बढ़कर एक संगीत दिए। और ऐसा लगता था उस दौर में जैसे ऑर्केस्ट्रा में 100 वादक एक साथ बज रहे हों। तो चलिए सुनते हैं उनके संगीत से सजा हुआ उस दौर के गीत को।

भावनाओं को खूबसूरती से पिरोना उस दौर में बखूबी आता था। वो एहसास जिसे हर कोई अपने दिल के पास महसूस करता था। जब भी गीत सुनते थे, संगीत की धुनों में ऐसा लगता था जैसे हम अपने ही एहसास को महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, हम सुन रहे हैं गोल्डन एरा के वो गीत मैटिनी मेलोडीज में, जो हमारे कार्यक्रम में आपकी पसंद के गीतों को लेकर आए हुए हैं। और हम बात कर रहे हैं उस दौर के गोल्डन एरा के गीतों की दोस्तों, जिसे सुनकर कभी भी हम बोरियत नहीं महसूस करते। जब भी सुनो, हर बार लगता है कि वो गीत हैं और वो गीत नए हैं, अपने एहसासों के साथ हूबहू मेल खाते हुए। तो चलिए, ऐसे ही एक एहसास से सजा हुआ एक और खूबसूरत सा गोल्डन एरा का ये गीत आपके

मैटनी मेलोडीज में गोल्डन एरा के उन गीतों को आप सुन रहे हैं मेरे यानी मनीषा के साथ, और हम याद करते हैं उस दौर को, उस श्वेत और श्याम के दौर को, ब्लैक एंड वाइट के दौर को, जहां आंखों ही आंखों में बातें हो जाया करती थी और दिल धड़कने लगते थे, है ना। सदाबहार गीतों की ऐसी महक उस समय होती थी जिन्हें सुनते ही सभी का दिल ताज़ा हो जाता था, सभी के दिन बन जाते थे। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही एक और खूबसूरत सा गीत, हम, ये है फिल्म 420 से।

दोस्तों, श्री 420 से आप लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में सुन रहे थे इस खूबसूरत से नगमे को। और आपको पता ही होगा कि आप अभी सुन रहे हैं हमारे साथ गोल्डन एरा फिल्मी संगीत मैटनी मेलोडीज़ में आपके अपने रेडियो कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ चैनल पर। आपके संदेश की प्रतीक्षा अभी भी है हमें ipradiodelhi@gmail.com पर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें बताइएगा ज़रूर। और दोस्तों, गोल्डन एरा के जो गीत होते थे वो गीत सिर्फ धुनों से नहीं बनते थे, अल्फाजों की खुशबू से बसे होते थे, है ना। साहिर लुधियानवी और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे शायरों की कलम से उनके गीत निकलते थे जो जिंदगी के हर फलसफे को बयां करते जाते थे। तो चलिए ऐसा ही जिंदगी के फलसफे से सजा हुआ एक और खूबसूरत सा नगमा आपके लिए।

साथियों, आपका अपना कार्यक्रम गोल्डन एरा फिल्म संगीत का मैटनी मेलोडी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ, और हमारे बहुत सारे श्रोता साथी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कार्यक्रम को सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जिसमें हमारे नियमित श्रोता हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन मुखी जी, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, कार्यक्रम को इतने गौर से सुनने के लिए, और संतोष कुमार सुनार, सन्नी मुन्ना, बंडू दादा, रथ चौक, बहादुरपुर, खानदेश, महाराष्ट्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे श्रोता साथी हैं ग्राम रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से उदय भान, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश, दिव्यांश, और पूरा का पूरा उनका बघेल परिवार। और हमारे साथ इसी तरह और भी श्रोता साथी हैं, जिसमें से ये हैं पंकज शर्मा जी, इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और जानकारी बहुत अच्छी लग रही है, गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम को सराहने के लिए। मीरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हैं, उन्हें कार्यक्रम और जानकारी अच्छी लग रही है। और वैसे भी अगर देखा जाए साथियों, तो ये जो पुराने गीत होते हैं, फिल्म संगीत होते हैं, ये जीवन को उस धारा में ले जाते हैं जहां हम जितने भी उदास हों, निराश हों, वो आशाओं की एक लड़ी पिरो देते हैं। क्योंकि पुराना दौर सिर्फ नगमों का नहीं, जिंदगी को मुस्कुराकर जीने का भी नाम बन जाता था, और आज भी है दोस्तों। किशोर कुमार की वो मस्ती भरी पुकार याद है जो हर उदासी को दूर भगा देती थी। जब जिंदगी की राहों में कोई भी गीत गुनगुनाने का मन करे तो ऐसे ही सदाबहार गीत हमें याद आते हैं आज भी, और वो खुशनुमा मौसम हमारे सामने फिर से जिंदा हो जाता है। चलिए वो गीत आपको फिर सुनाती हूँ।

साथियों, गीत और संगीत अमर हो जाते हैं, उनकी यादें हमेशा साथ रहती हैं। पुराने नगमे महज गाने नहीं होते थे, बल्कि वो आईने की तरह हमारे साथ हमारे बीते कल को हमारे सामने रख देते हैं। इन्हीं सुनहरी यादों के साथ आज अपनी दोस्त अपनी होस्ट को मैटनी मेलोडीज से दीजिए अनुमति। सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, फिर मिलेंगे किसी और सफर में। तब तक के लिए नमस्ते।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए पेश है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। प्रधानमंत्री ने कविता साझा करते हुए लोगों से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की संवेदनाओं से जन्मी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया, जो आज भी आपातकाल के उस काले अध्याय को बयां करती हैं।
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
3: सीकचो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स

0: ऊर्जा मंत्रियों की 11वें बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत हो गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस बीच जापान के उत्तर पूर्वी भाग में आज सुबह 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और समर्पण का परिचय दिया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरे में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Vice President and Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan today administered oath to 10 newly elected and re-elected members of Rajya Sabha at the Parliament House. The members include Sana Satish Babu, Vijay Chintakayala and Basyam Ramakrishna of the Telugu Desam Party and Linga Maneni Ramesh of Jana Sena Party, all from Andhra Pradesh. The Rajya Sabha Chairman also administered oath to Tai Tagak of the BJP from Arunachal Pradesh, Debashis Samantere of the BJP and Praveen Chakravarti of the Congress from Tamil Nadu and Rajesh Pramanand Shukla of the BJP from Gujarat. The Prime Minister's Museum and Library today organized an exhibition dedicated to the life and legacy of former Prime Minister Vishwanath Pratap Singh. The exhibition provided visitors with a comprehensive insight into the statesman's political journey, artistic pursuits and lasting contributions to India's democratic history. A major attraction of the exhibition was a display of 19 original paintings created by V.P. Singh, offering visitors a glimpse into his creative and artistic side. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the collapse of a warehouse roof accident in Kolkata yesterday. Prime Minister Narendra Modi announced an ex gratia payment of 2 lakh rupees each for the next of kin of those who lost their lives in the accident and 50,000 rupees each for the injured. He added that the state government is working round the clock to ensure all possible assistance to those affected. Prime Minister Narendra Modi today welcomed Amazon's record investment of $48 billion in India. Mr. Modi met CEO of Amazon, N.D. Jassy, in New Delhi. In a social media post, the Prime Minister said that the investment will create new opportunities for the youth. He added it shows the growing interest across the world to invest in India. Samvidhan Hatya Divas has been observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on the 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah today paid homage to all those who stood

0: firm in defense of democratic values during the emergency. The two-day BRICS Energy Ministers meeting has begun in Gurugram, Haryana, and is BRICS Chairship 2026. Union Power Minister Manohar Lal Khattar has said that energy is crucial for economic growth, social progress and human development. Addressing the meeting, Mr. Khattar said affordable, reliable and sustainable energy is essential for achieving development goals and the sustainable development goals. The BRICS Energy Ministers meeting will continue till tomorrow. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said the world is witnessing greater weaponization, higher risk-taking and politics suited to the social media era. Addressing the Jeju Forum for Peace and Prosperity 2026 in South Korea, Dr. Jaishankar said the inclination to assert differentials is greater and capabilities too are deployed with less hesitation. Dr. S. Jaishankar also underscored the need for greater international cooperation in tackling global challenges, invoking India's age-old philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is a family. Venezuela's acting president, Delcy Rodriguez, today said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes rocked the country. The acting president has said earlier that at least 32 people had died after last night's 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes and that the toll was expected to rise. The quakes were among the strongest to strike Venezuela in more than a century and could be felt throughout the region. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. In football, South Africa advanced to the knockout phase of the FIFA World Cup for the first time with a 1-0 victory over South Korea in Monterrey today. Thapelo Maseko hit the only goal for South Africa in the Group A match. Earlier, Mexico defeated Czech Republic 3-0 to win all three of its World Cup group stage matches. In the ICC Women's T20 World Cup, India will take on Bangladesh in a Group A clash at the Emirates Old Trafford in Manchester today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. 4:10 हुए हैं. आइए आपको जानकारी देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में. खोए हुए पुरुष का पूरा नाम सोनू है. ये स्वर्गीय बाबूलाल के पुत्र हैं. इन्हें अंतिम बार 15 मई 2026 को देखा गया. इनकी आयु 41 वर्ष है. पतला शरीर है एवं कद 5 फीट 2 इंच है. सोनू दिमागी तौर पर कमज़ोर है. ये अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO पुलिस स्टेशन नंद नगरी दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं. गुमशुदा युवती का पूरा नाम करिश्मा है. ये कोहिनूर की पुत्री हैं. इन्हें अंतिम बार 8 जून 2026 को देखा गया. करिश्मा की आयु 13 वर्ष है. पतला शरीर है एवं कद 4 फीट है. ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO पुलिस स्टेशन नंद नगरी दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं. लापता युवक का पूरा नाम जनप्रीत कौर है. ये सुनील के पुत्र हैं. इन्हें अंतिम बार दिनांक 4 अगस्त 2025 को गांव बहुड़वला, जिला गुरुग्राम, हरियाणा में देखा गया. इनकी आयु 20 वर्ष है. कद 5 फीट है. पतला शरीर है एवं रंग सांवला है. जनप्रीत कौर के बारे में अधिक जानकारी देने वाले को 5,000 की शुल्क राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी. इनके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप SHO पुलिस स्टेशन बिलासपुर, गुरुग्राम से संपर्क कर सकते हैं. खोए हुए पुरुष का पूरा नाम हनवंत है. ये महावीर सिंह के पुत्र हैं. इन्हें अंतिम बार 6 अक्टूबर 2022 को डिलीवरी कंपनी बिलासपुर, जिला गुरुग्राम, हरियाणा में देखा गया. हनवंत की आयु 47 वर्ष है. कद 6 फीट है. हष्टपुष्ट शरीर है. रंग सांवला है एवं चेहरा गोल है. हनवंत के बारे में जानकारी देने वाले को 5,000 की शुल्क राशि

का स्वरूप दी जाएगी। इनके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप SHO पुलिस स्टेशन दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा मृतक पुरुष का नाम पता मालूम नहीं। इन्हें अंतिम बार दिलशाद गार्डन दिल्ली के पास देखा गया। बेहोशी की हालत में मिलने के बाद इन्हें GIB हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इनकी आयु लगभग 36 वर्ष है। शरीर की बनावट मध्यम है एवं कद 5 फीट 6 इंच है। इनके दाहिने हाथ पर KAN लिखा है। इनके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप पुलिस स्टेशन सीमापुरी दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्ति का नाम पता मालूम नहीं। इन्हें अंतिम बार 5 जून 2026 को जगतपुर वजीराबाद मेट्रो स्टेशन में देखा गया। इनकी आयु लगभग 40 से 50 वर्ष की होगी। कद 5 फीट 4 इंच है। शरीर की बनावट मध्यम है एवं रंग सांवला है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO पुलिस स्टेशन वजीराबाद दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं। खोई हुई युवती का पूरा नाम मधु है। ये सुनील की पुत्री है। निवासी गांव खेड़की माजरा, पुलिस स्टेशन राजेंद्र पार्क गुरुग्राम। इन्हें अंतिम बार दिनांक 20 मई 2026 को देखा गया। इनकी आयु 21 वर्ष है। कद 5 फीट 2 इंच है। हष्ट पुष्ट शरीर है एवं रंग गोरा है। इनका चेहरा गोल है। मधु बिना किसी को बताए खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप पुलिस स्टेशन राजेंद्र पार्क गुरुग्राम से संपर्क कर सकते हैं। और अंत में, मृतक पुरुष का नाम पता मालूम नहीं। इन्हें अंतिम बार ताज इनक्लेव कट गीता कॉलोनी में देखा गया। इनकी आयु लगभग 50 वर्ष है। शरीर की बनावट कमजोर है एवं कद 5 फीट 6 इंच है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO पुलिस स्टेशन गीता कॉलोनी से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई।

0: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑनलाइन प्यार में पड़े और आपका बैंक बैलेंस खाली हो गया हो, या कभी किसी रैंडम कॉल पर आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हो? आप ऐसी स्थिति में ना फंसे, इसके लिए ही है ये हमारा आज का कार्यक्रम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। मैं हूँ निधि
1: और मैं हूँ विजेंद्र।
0: अगले कुछ पल हम दोनों आपके साथ बिताने वाले हैं और चर्चा करेंगे साइबर सिक्योरिटी और उससे रिलेटेड जरूरी बातों पर। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गाना।

0: ये गाना था खूबसूरत फ्रॉम द मूवी यस बॉस।
1: दोस्तों आपको बता दें कि इस गाने की मशहूर गायिका अलका याग्निक जी को अभी हाल ही में पद्म भूषण से नवाजा गया है।
0: तो चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। आज की बात में हम जानेंगे कि साइबर क्राइम आखिर होता क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है।
1: मन से माइक्रोफोन तक में हमारे साथ जुड़ेंगे साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, इतिहास के पन्नों में भी झांकेंगे और जानेंगे आज के दिन के कुछ खास बातें।
0: जी बिल्कुल निधि, और इसी के साथ क्विक बज में लेकर आएंगे कुछ रोचक अपडेट्स और फैक्ट्स, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक छोटा सा नगमा फ्रॉम द मूवी जोकर। ए भाई जरा देख के चलो।
2: ए भाई दर्द।

और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डर है।

जैसा कि इस गीत ने कहा है, देखना, सुनना और समझना बेहद जरूरी है। पता है निधि, आज के इस 5G वाली दुनिया में हम अक्सर बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं। कभी किसी को OTP बता देते हैं, तो कभी फोन में आए

0: लिंक को ओपन कर देते हैं।
1: बिल्कुल विजेंद्र, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक दोस्त ट्रेडिंग किया करते थे और उनको किसी एक रैंडम इन्वेस्टर ने अप्रोच किया कि वो उनका पैसा डबल कर सकता है। तो इसी लालच में उस बेचारे ने उसके कहने पर अपनी सारी सेविंग्स लगा तो दी, लेकिन पैसे डबल होना तो दूर की बात, उसकी सेविंग्स भी चली गई।
0: अरे अरे, ये तो गलती से मिस्टेक हो गया, और ऐसी मिस्टेक्स हम लगभग हर रोज कर रहे हैं, तो उन्हीं गलतियों से सीखते हैं और सुनते हैं ये गीत फ्रॉम द मूवी जब तक है जान छल्ला।

0: तो दोस्तों, गलती से मिस्टेक कीजिए, लेकिन मेक श्योर यू वोंट रिपीट दैट मिस्टेक इन योर लाइफ। अब करते हैं आज की बात। तो विजेंद्र, आप बताइए, आपके नज़र में साइबर क्राइम क्या होता है?
1: निधि, मुझे लगता है साइबर क्राइम शायद हैकिंग होती है।
0: जी नहीं, देखा, आपको भी लगा ना, लोगों को भी यही लगता है, लेकिन साइबर क्राइम सिर्फ हैकिंग नहीं होता है।
1: तो फिर आप ही बताइए क्या होता है।
0: साइबर क्राइम का मतलब है इंटरनेट, मोबाइल या डिजिटल माध्यम से किसी को धोखा देना, उसकी जानकारी चुराना या आर्थिक नुकसान पहुंचाना। और आजकल तो ठगी करने वालों ने भी खुद को अपडेट कर लिया है। पहले सिर्फ फेक कॉल्स आते थे, अब AI भी उनके साथ काम कर रहा है।
1: अच्छा, AI भी? इस बारे में तो मैंने भी सुना है। पता ही नहीं थी, एक बार मेरे पापा को मेरी ही आवाज में एक कॉल आई जिसमें मेरा एक्सीडेंट हो चुका था और मैंने उनसे 50,000 रुपए की मांग की। बाद में पता चला कि वो कॉल मेरी नहीं थी बल्कि AI वॉइस क्लोनिंग का मामला था। अब AI की मदद से हम किसी की भी वॉइस को कुछ ही सेकंड्स में क्लोन कर सकते हैं। पर सवाल ये है, अगर कॉल सच में मेरी हुई तो सामने वाले को कैसा पता चलेगा?
0: हाँ, तो ये जानने के लिए आपको एक बात पर ध्यान रखना होगा, सिर्फ आवाज सुनकर भरोसा मत कीजिए। वीडियो कॉल या किसी दूसरे नंबर से पुष्टि जरूर कीजिए।
1: अरे वाह निधि, क्या बात कही है। लेकिन अब हम चलते हैं गाने की तरफ। अगले सेगमेंट का इशारा करता है जो। गाना सुनते हुए दोस्तों गेस कीजिएगा, गाने का नाम है बचना ए हसीनो।

0: ओह, ये इशारा तो मैं समझ गई। अब हम अपने लिसनर्स को भी समझाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को तो अपने क्रश की याद आ गई होगी।
1: बिल्कुल निधि, और आजकल तो प्यार भी ऑनलाइन मिलने लगा है। एक फोटो पसंद आई, दो बातें हुई, फिर आई मिस यू से लेकर बाबू प्लीज रिचार्ज कर दो तक की बात पहुंच जाती है। और कई बार तो लोग प्यार में इतना आगे चले जाते हैं कि सामने वाले का चेहरा भले ही ना देखा हो, लेकिन बड़े बड़े वादे करने लगते हैं।
0: पर मजाक अपनी जगह है। यही वो जगह है जहाँ ऑनलाइन डेटिंग स्कैम शुरू होते हैं। फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों का भरोसा जीतते हैं, इमोशंस से खेलते हैं और फिर किसी ना किसी बहाने पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। इसको हम रोमांस स्कैम भी कहते हैं। तो विजेंद्र, क्या आपने कभी किसी बाबू का रिचार्ज किया है?
1: अरे नहीं नहीं, भगवान ही बचाए। चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद हम आएंगे एक दिलचस्प बात के साथ। फिर ले आया दिल, फ्रॉम द मूवी बर्फी।

0: अब बात है, चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे स्कैम की जहां घर बैठे बैठे आपको हथकड़ियां लग सकती हैं। इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम।
1: डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि साइबर ठगों की सोची समझी जाल साजिश होती है। इसमें ठग खुद को पुलिस वाला या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को डराने की कोशिश करता है और फिर उनसे पैसों की मांग करता है। और ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं, तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 हेल्प पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। इस तरह आप खुद को साइबर सिक्योर कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। और अब समय है आज के इतिहास का। आज 25 जून है, जिसे संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाता है। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था। उस समय लोग

लोगों की कई आज़ादियों पर रोक लगाई गई। प्रेस पर भी नियंत्रण लगाया गया और कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। संविधान हत्या दिवस हमें लोकतंत्र और संविधान की अहमियत याद दिलाता है। यह दिन बताता है कि देश के नागरिकों के अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है और इन्हें सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। चलिए, वक्त हो चला है फिर से एक म्यूजिकल ब्रेक का। गाने के बोल हैं खोल दे पर।

0: श्रोताओं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए अब इसी के साथ हम आ चुके हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर, क्विक बस, जिसमें है कुछ जरूरी बातें। पहली, ओटीपी किसी से साझा ना करें,
1: अनजान लिंक पर क्लिक ना करें,
0: मजबूत पासवर्ड और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें,
1: किसी भी फ्रॉड की शिकायत तुरंत 1930 पर करें।
0: अब कुछ फैक्ट्स। भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट बाजारों में से एक है, हर दिन करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शन होती हैं।
1: तो दोस्तों, अब हम लेते हैं आपसे अनुमति, लेकिन जाते जाते हम आपके लिए छोड़ कर जाएंगे एक खूबसूरत गीत।
0: देश दुनिया की रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी इन्हीं मीटरों पर। कल हम इसी वक्त आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा वर्ग को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 5 बजने ही वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं से जन्मी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया, जो आज भी आपातकाल के उस काले अध्याय को बयां करती हैं।
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
3: सीकतों में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा पर्व और आजादी का अमृत महोत्सव जैसी सरकारी पहले संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करती हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक लेख साझा करते हुए ये बात कही। श्री शेखावत ने अपने लेख में आपातकाल के दौर और उनके दौरान लोगों की स्वतंत्रता तथा आकांक्षाओं पर पड़े प्रभाव का उल्लेख किया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तादक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 घायल हो गए हैं। स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। इस बीच जापान के उत्तर पूर्वी भाग में आज सुबह 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, इनमें 4 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Subhadra Ramachandran. Samvidhan

0: लोकरंजनी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं हूं कुसुम और साथ में है
1: अतुल कुमार। तो कुसुम भाई ना माजिर हुए हैं लोकरंजनी कार्यक्रम लेकर के, और देखिए आज हम अपने कार्यक्रम में भाइयों का मनोरंजन करवाएंगे बहुत ही प्यारे प्यारे लोकगीतों से।
0: जी
1: तो सुनवाते हैं भाई और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनवाते हैं सविता शर्मा की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत, हमसे बलम की ऐसी बिगड़ी।

0: हमसे बलम की ऐसी बिगड़ी, ये सुन रहे थे आप। कलाकार थी सविता शर्मा।
1: और कुसुम बहन, अब चलते चलते अपने भाइयों को एक और लोकगीत सुनवाते हैं, पायल रावल की आवाज में, टोकरी पीतल की जयपुर से मंगवाई।

0: कोकणी पीतल की जयपुर से मोल मंगाई। अभी आप सुन रहे थे पायल रावल की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।
1: बिल्कुल अतुल भाई, और अब चलते हैं अगले लोकगीत की तरफ। सुनते हैं सुधा श्रीवास्तव से यशोदा नंद को छलिया रे।

0: तो अभी आप सभी सुन रहे थे सुधा श्रीवास्तव को यशोदा नंद को छलियारी।
1: और अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते और सुनवाते हैं मंजू शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

0: अभी आप मंजू शर्मा को सुन रहे थे और इसी के साथ हमारा आज का लोकरंजनी कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 5:29 हो रहे हैं। लीजिए पेश है दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे फीफा विश्व कप की, जहां रोमांच की दनादन किक लग रही है और पुराने सितारों के साथ युवा खिलाड़ी भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे साथी अभिषेक कपिल।
3: नमस्कार श्रोताओं।
2: और अभिषेक, आज जो फीफा विश्व कप के अलावा बात भुवनेश्वर में चल रही है अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स की भी होगी, जहां एथलीट शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और ना केवल अपना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि एशियाई खेलों का टिकट भी हासिल कर रहे हैं, उसके क्वालिफाइंग मार्क को पार करके अपना एक शानदार तैयारियों का भी संकेत दे रहे हैं। बात इसके अलावा FIH प्रो लीग की भी होगी, बात जूनियर विश्व कप की भी होगी जो कि जर्मनी में चल रहा है। इसके अलावा ABC नेशन कप अहमदाबाद में आज मुकाबला है भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ, जहाँ टीम लगातार 4 जीत हासिल कर चुकी है। तो क्यों ना आज के जो खेल पिटारे की शुरुआत फीफा विश्व कप से करें, जहाँ ABC यानी कि 3 ग्रुप जो हैं उनके ग्रुप दौर समाप्त हो चुका है और राउंड ऑफ 32 में टीमों ने जगह बना ली है। फीफा विश्व कप में नॉकआउट दौर की रेस अब तेज हो चुकी है। 12 टीमें अगले दौर का टिकट कटा चुकी हैं। बाकी दावेदार भी अपनी उम्मीदों को दमदार बनाने में लगे हैं। अभी तक कुल 12 टीमें दूसरे दौर में पहुंच गई हैं, जिनमें सह मेजबान मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा के अलावा पूर्व चैंपियन अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका और कोलंबिया शामिल हैं। विश्व कप में कुल 32 टीमें नॉकआउट में पहुंचेंगी, जिनमें 12 ग्रुपों की शेष 2 टीमों के अलावा तीसरे स्थान पर रहने वाली श्रेष्ठ 8 टीमें शामिल हैं। सबसे पहले बात ग्रुप सी की। 5 बार की चैंपियन ब्राजील के मुरीदों की कमी नहीं है। ग्रुप सी में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया और फिलहाल मुरीदों की मुराद पूरी कर दी। जीत के हीरो विनिसियस जूनियर रहे, जिन्होंने 2 गोल किए। उन्होंने 7वें ही मिनट में गोल कर स्कॉटलैंड को दबाव में ला दिया था। दरअसल इस बार ब्राजील की उम्मीदें विनिसियस जूनियर पर काफी टिकी हैं, जिन्होंने ग्रुप दौर में टीम के 3 मैचों में गोल किया है। अब उनके इस बार 4 गोल हो गए हैं। फ्रांस के मबापे और नॉर्वे के अर्लिंग हॉलैंड के भी 4-4 गोल हैं। मेसी अब तक सर्वाधिक 5 गोल कर चुके हैं। ब्राजील का पहला गोल रक्षक खिलाड़ी की गलती से हुआ। वह गेंद को क्लियर नहीं कर पाए और गेंद चिटक कर रियान के पास पहुंची, जिन्होंने अकेले मौके की ताक में खड़े विनिसियस को गेंद सरका दी, जिन्होंने बिना मौका गंवाए आसानी से गोल कर दिया।
4: They'd be very unlucky not to go through with 4. Oh, and a little bit of an error there. And Vinicius Jr. couldn't miss. Scotland have gifted Brazil the opening goal of the match, and it hasn't.
2: दूसरे गोल के समय मध्यांतर से ठीक पहले विनिसियस का हेडर दमदार था। गेंद गोल पोस्ट के नेट में जाकर टकराई और ब्राजीली समर्थकों का शोर गूंज उठा।
4: Vinicius Jr. back. It's off the line by Patterson. Guimaraes again. It's above. Goal, and Vinicius Jr.'s there to head it home.
2: टीम का तीसरा गोल 60वें मिनट मैथियस कुन्हा ने किया। टीम के स्टार खिलाड़ी नेमार जूनियर टीम के पहले 2 मैचों में नहीं खेले थे, उनकी पिंडली में चोट थी, लेकिन कोच कार्ले एंसेलोटी ने इस मैच में उन्हें 76वें मिनट में स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में उतारा। नेमार ब्राजील की जर्सी में लगभग 3 साल के बाद पहली बार उतरे हैं। इससे पहले उन्होंने ब्राजील के लिए अक्टूबर 2023 में मैच खेला था।
4: Here's a moment many Brazilian fans have been waiting for, but for the first time in a long time, Neymar takes to the field for the Seleção.
2: ब्राजील की टीम ग्रुप सी में 7 अंक लेकर टॉप पर रही। ग्रुप सी के अन्य मुकाबले में

0: मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराया। मध्यांतर के समय दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर थी। इस जीत से मोरक्को ग्रुप में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर रहकर नॉकआउट में पहुंची। मोरक्को के लिए अशरफ हकीमी, इस्माइल सेबेरी ने पहले 2 गोल किए। दूसरे ओवर में सोफीने रहीमी और गैसमी यासिनी के गोल से अफ्रीकी मोरक्को टीम की जीत सुनिश्चित हो गई।
1: Sabari waiting for it. Oh, and he's put it wide. It's the movement again. Oh, flicked on Rahimi with the touch and in. Sofyan Rahimi.
0: हैती का पहला गोल 10वें मिनट में उपहार के रूप में मिला जब बोनोयू से आत्मघाती गोल हो गया। उसके बाद विलियम इसिडोर ने 43वें मिनट में गोल किया जो 52 साल में हैती का विश्व कप में पहला गोल रहा।
1: Oh my goodness! Oh wow! Wilson Isidore!
0: ग्रुप ए के मुकाबलों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण कोरिया को 1-0 गोल से पराजित कर दिया। मैच का एकमात्र गोल 63वें मिनट में थेपेलो मेस्कू ने किया। इस जीत से दक्षिण अफ्रीका पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट दौर में प्रवेश करने में सफल रही। उधर एशियाई टीम दक्षिण कोरिया ग्रुप में 30वें स्थान पर रही। अब उसे राउंड ऑफ 32 में पहुंचने के लिए अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। ग्रुप मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराया। मध्यांतर तक दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ लेकिन कोई टीम गोल करने में सफल नहीं हो सकी थी। दूसरे हाफ में मेक्सिको ने 3 गोल करके चेक गणराज्य को विश्व कप से बाहर कर दिया। मेक्सिको के शावेज ने 55वें मिनट में खाता खोला। 6 मिनट बाद क्विनोनस ने मेक्सिको की बढ़त 2-0 कर दी। जब ऐसा लग रहा था कि 2-0 की स्कोर लाइन पर ही मैच समाप्त हो जाएगा लेकिन स्टॉपेज टाइम के 4th मिनट में फिडाल्गो ने तीसरा गोल भी कर दिया। मेक्सिको की यह ग्रुप में लगातार तीसरी जीत रही। इससे पहले मोरक्को ने दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया को हराया था। इस मैच में मेक्सिको ने युवा फुटबॉलर मोरा को उतारा। महज 17 साल 253 दिन के मोरा फीफा विश्व कप में खेलने वाले मेक्सिको के सबसे युवा और दुनिया के 6th युवा खिलाड़ी बन गए। मिडफील्ड में उनके खेल की झलक ने भविष्य में एक अच्छे फुटबॉलर की उम्मीद जगाई है। इस मैच में मेक्सिको ने अपने 40 साल के गोलकीपर गुलेर्मो ओचावा को भी मैदान में स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में 78वें मिनट में उतारा। गुलेर्मो का ये 6th विश्व कप है और उन्होंने पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनल मेसी की बराबरी कर ली है। दरअसल मेक्सिको के कोच जेवियर एक्वायर ने उन्हें मैच के अंत में उतारकर सम्मान प्रदान किया। प्रशंसकों ने भी उनका खड़े होकर अभिवादन किया। यह खेल और खेल भावना का अभिनंदन था। ग्रुप बी में पिछले 24 घंटे में 2 मुकाबले खेले गए जिसमें बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर के खिलाफ 3-1 की जीत दर्ज करके नॉकआउट में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जीवंत रखी हैं, जबकि स्विट्जरलैंड ने सह मेजबान कनाडा को 2-1 से पराजित कर दिया। बोस्निया हर्जेगोविना की जीत में 18 साल के करीम अलाज बेगोविच और स्थानापन्न खिलाड़ी महमिक ने गोल किए जबकि एक गोल कतर के सुल्तान अलब्रेक का आत्मघाती रहा। कतर का एकमात्र गोल हसन अल हमदोस ने किया। बोस्निया हर्जेगोविना का भविष्य अब ग्रुप चरण के बाकी मैचों के नतीजों पर निर्भर करेगा। बोस्निया इससे पहले 2014 विश्व कप में खेला था लेकिन ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ सका था। बोस्निया हर्जेगोविना के 3 मैचों में 4 अंक हुए और वह ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर है। कतर 3 मैचों में 1 अंक ही ले पाया और रेस से बाहर हो गया। ग्रुप बी के अन्य मुकाबले में कनाडा की टीम स्विट्जरलैंड से 1-2 से हारने के बावजूद नॉकआउट में पहुंच गई। स्विट्जरलैंड के लिए दोनों गोल दूसरे हाफ के 12वें मिनट के अंदर रुबेन बारगेज और जोहान मंजाबी ने किए।
1: It comes all the way through. Vargas with time to take a touch. Switzerland have come to spoil the party. At the other end though, Switzerland with Mbolo. Manzambi to try and finish it off and he does. It creeps under Crepo. This is a blistering start to the second half for Switzerland.
0: कनाडा दूसरे स्थान पर रहते हुए पहली बार नॉकआउट में पहुंचने में सफल रही। कनाडा ने 3 मैचों में 1 जीता, 1 हारा और 1 ड्रॉ खेला। उसके बोस्निया हर्जेगोविना के समान 4 अंक थे लेकिन बेहतर गोल अंतराल कनाडा के लिए फायदेमंद साबित हुआ। हाँ बिल्कुल, रोमांच अपने शिखर पर है और देर रात तक इन फुटबॉल मैचों का लुत्फ लेना अभिषेक दरअसल बहुत ही एक शानदार अनुभव रहता है। और जिस तरह के मैच देख रहे हैं, जिस तरह के सितारे यहाँ पर, बात आप मेसी की करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की करें, बाद मबापे की एम्बापे की करें, या फिर युवा अर्लिंग हॉल

0: इंग्लैंड की करें, सभी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक जिस तरह के गोल हुए हैं, अभी तक 54 मैच हो चुके हैं, 104 मैच होने हैं, 19 जुलाई को फाइनल है, लेकिन अब लग रहा है कि ये जो सर्वाधिक गोलों का रिकॉर्ड जो पिछले में कतर में बना था 172 गोलों का, वो ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि इस बार 54 मैचों में 161 गोल हो चुके हैं। और ये एक शानदार फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक भेंट है, एक शानदार एक अनुभव है। तो बहरहाल आज जो मैच होने हैं अभिषेक, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे?
1: फीफा विश्व कप 2026 में आइए जानते हैं आज के 6 महत्वपूर्ण मुकाबलों का प्रीव्यू। ग्रुप ई में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। कुरासाओ की टीम अपने जुझारू खेल के लिए जानी जाती है, लेकिन अब तक 2 मैचों में उसे सिर्फ 1 अंक मिला है। जर्मनी के खिलाफ उसे 1-7 की हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इक्वाडोर के खिलाफ उसने गोल रहित ड्रॉ खेला। दूसरी ओर आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया और जर्मनी के खिलाफ कड़ी टक्कर दी। कुरासाओ की उम्मीदें जुनिन्हो बाकुना और कुइको मार्टिना पर रहेंगी, जबकि आइवरी कोस्ट के लिए सेबेस्टियन हालेर और सिमोन अंद्रिगा अहम खिलाड़ी होंगे। अनुभव और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए आइवरी कोस्ट का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। आज के सबसे महत्वपूर्ण मुकाबलों में से एक है इक्वाडोर और जर्मनी का मैच। जर्मनी शानदार फॉर्म में है और 2 मैचों में 9 गोल दाग चुका है। उसने कुरासाओ को 7-1 और आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया है। दूसरी ओर इक्वाडोर अब तक गोल करने में सफल नहीं हो पाया है और उसके खाते में सिर्फ 1 अंक है। इक्वाडोर की उम्मीदें एनेर वेलेंसिया और मोइसेस केइसेडो पर टिकी होंगी, जबकि जर्मनी के लिए जमाल मुसियाला, फ्लोरियन विल्ट्स और काई हैवर्ट्स पर नजर रहेंगी। जर्मनी जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन इक्वाडोर काउंटर अटैक करने से खतरा पैदा कर सकता है। ग्रुप एफ में ट्यूनिशिया का सामना नीदरलैंड से होगा। ट्यूनिशिया अपने दोनों मुकाबले हार चुका है और 9 गोल खा चुका है। वहीं नीदरलैंड्स 4 अंकों के साथ मजबूत स्थिति में है और अब तक 7 गोल कर चुका है। कोडी गाक्पो, मेफिस डिपॉय और फ्रेंकी डी योंग डच टीम की ताकत हैं। दूसरी तरफ यूसेफ मसवानी और एलियास आचोरी ट्यूनिशिया के प्रमुख खिलाड़ी होंगे। ट्यूनिशिया रक्षात्मक रणनीति अपनाएगा, जबकि नीदरलैंड शुरुआत से ही आक्रामक फुटबॉल खेल सकता है। जापान और स्वीडन के बीच मुकाबला आज के सबसे दिलचस्प मैचों में से एक माना जा रहा है। जापान ने पिछले मैच में ट्यूनिशिया को 4-0 से हराकर शानदार फॉर्म दिखाई थी। जापान के पास 4 अंक हैं, जबकि स्वीडन के 3 अंक हैं। जापान के लिए ताके फूसा कुबो, काउरो मितोमा और दाइची कामादा अहम खिलाड़ी होंगे। वहीं स्वीडन की उम्मीदें अलेक्जेंडर इसाक और डिजान पर रहेंगी। दोनों टीमों ने अब तक 6-6 गोल किए हैं, इसलिए दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। ग्रुप डी में तुर्की और अमेरिका आमने सामने होंगे। अमेरिका ने अपने दोनों मुकाबले जीतकर 6 अंक हासिल किए हैं और अब तक 6 गोल किए हैं। उसने पैराग्वे को 4-1 और ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया है। क्रिश्चियन पुलिसिक, वेस्टन मैकेकिनी और टिमोथी वेया अमेरिकी टीम के प्रमुख खिलाड़ी हैं। दूसरी ओर तुर्की अभी तक गोल का खाता नहीं खोल पाया है। हाकान चालहनोग्लू और युवा स्टार आर्दा गुलर से तुर्की को बड़ी उम्मीदें होंगी। अमेरिका का आत्मविश्वास इस समय काफी ऊंचा है। दिन के अंतिम मुकाबले में पैराग्वे का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमों के 3-3 अंक हैं और ये मुकाबला नॉकआउट में काफी अहम माना जा रहा है। पैराग्वे ने तुर्कियों को हराया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने भी तुर्की के खिलाफ जीत दर्ज की थी। पैराग्वे के खिलाफ मिगुएल अल्मिरोन और जूलिया एनसिसो महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें कप्तान मैथ्यू रयान और जैक्सन इरविन पर टिकी होंगी। दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो श्रोताओं, आज के मुकाबले में जर्मनी और अमेरिका शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जबकि जापान और स्वीडन के बीच मुकाबला सबसे रोमांचक रहने की उम्मीद है। विश्व कप में हर मैच नई कहानी लिखता है और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है।

दोस्तों आप बात चलते हैं ट्रैक एंड फील्ड की ओर और भुवनेश्वर में चल रही राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कीर्तिमानों की तो मानो झड़ी लगी है। महिलाओं की हैमर थ्रो में 18 साल की अनुष्का यादव ने कल अपने प्रदर्शन से 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर सभी को चौंका दिया। इसके अलावा पोल वॉल्ट में देवमीना ने नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया। अनुष्का ने हैमर थ्रो में 67.0

0: 2 मीटर का थ्रो कर 2017 में सरिता सिंह द्वारा बनाए गए 65.25 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में देव मीना ने 5.46 मीटर की ऊंचाई पार करके 5.45 के अपने पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। देव मीना ने इस अपने प्रदर्शन के बाद कहा,
1: हाल ही में मैंने एशियन गेम्स क्वालिफाई किया है, मैंने कॉमनवेल्थ भी क्वालिफाई किया और प्रीवियस मेरा रिकॉर्ड था 545 और अभी हमने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया 546। पिछले बार मेरे साथ कुलदीप भी था, उसका भी नेशनल रिकॉर्ड था, लेकिन इस बार उसने अच्छा थोड़ा सा उसकी बॉडी टाइट थी, इस वजह से वो अच्छा नहीं कर पाया। बाकी फीलिंग इज गुड, मेहनत मेरे से ज्यादा मेरे कोच की थी, मतलब मैं यहाँ पे करता हूँ, मेरे से ज्यादा मेरे कोच को टेंशन रहता है और हर चीज का वो रहता है, तो सबसे ज्यादा तो कोच को थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि हर एक कदम हर एक जगह पे उन्होंने मेरे को साथ दिया है। स्टेडियम मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत ज्यादा साथ दिया है, तो फीलिंग इज गुड और मैं कॉन्फिडेंस था मेरे को कि मैं इस बार क्वालिफाई कर दूंगा। प्रैक्टिस में मैंने ठीक किया था और लेट्स सी एशियन गेम्स में क्या होता है। एशियन गेम्स में मेरा टारगेट रहेगा फर्स्ट प्लेस, कोशिश करूंगा मैं अच्छा करूँ इंडिया के लिए, इंडिया का फ्लैग वहाँ पे लेके जाऊँ उठाऊँ। मेरे को लगता है अगर मेडल लाऊंगा तो मैं इंडिया से पहला लड़का हूँ जो एशियन गेम्स से पोल वोल्ट से मेडल लेके आएगा, तो मैं अपने इंडिया का नाम ऊंचा बिल्कुल करूंगा। इसके लिए सर इतना मेहनत लगता है कि सुबह 7 बजे से 12 बजे तक मेहनत लगता है, बस अब समझ लो इतना मेहनत लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, मैं इतनी बार गिरा हूँ, इतनी बार इंजर्ड हुआ हूँ, तो बहुत ज्यादा मेहनत है सर और इतना आसान नहीं है, तो हमने उसको कर दिखाया है। इंडिया से चलो कोई जा रहा है अभी बहुत दिनों बाद, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है अभी मेरे पे, मेरे कोच पे कि हाँ मेरे को उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, जमीन से उठा के यहाँ तक लेके आया मेरे को, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच डिपार्टमेंट एंड माई कोच।
0: जी हाँ बिल्कुल, देव मीना का शानदार प्रदर्शन रहा और महिलाओं की हैमर थ्रो में जो शानदार प्रदर्शन अनुष्का का रहा, और इसके अलावा ज्योति यारा जी की अगर अभिषेक बात करें तो उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया है। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ने उन्हें सम्मानित किया था, तब हमारे सहयोगी शायद आदमी ने बात की थी, वो बातचीत भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं अनुष्का यादव को जिन्होंने हैमर थ्रो में 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है और शानदार प्रदर्शन किया है।
2: पहले सरिता सिंह हमारी सीनियर थी, उनका रिकॉर्ड था 65.23 और अब न्यू रिकॉर्ड हुआ है 67.02 मीटर। सर सपोर्ट तो फुल है, घर से भी ग्राउंड से भी फुल सपोर्ट है मुझे, अभी तैयारी नहीं हो पा रही है, अभी इंजरी थी तो अभी रिकवर हो रही हूँ, तो थोड़ा अभी शाम के प्रैक्टिस चल रही है, बस सुबह की बंद है थोड़ा, मुझे कम मेरे फादर को ज्यादा करना पड़ा मेरे लिए, मैं सबसे ज्यादा अपने फादर को ही बताना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। सर वहाँ का टारगेट अभी तो अपना पर्सनल बेस्ट, और पर्सनल बेस्ट भी वहाँ पे अपना पर्सनल बेस्ट देना, एशियन में भी यही टारगेट, अभी तो पर्सनल बेस्ट करना है अपना आगे भी। मेरे फादर ने मुझे सिखाया है, वो ही मुझे ट्रेन करते हैं, और चिराग यादव हैं वो मुझे ट्रेन करते हैं, गगन यादव हैं वो मुझे ट्रेन करते हैं, ये तीन तो जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मुझे तो सपोर्ट अब थोड़ा ज्यादा सपोर्ट होने लगा, पहले तो इतना कोई नहीं करता था नेशनल में भी ना, फिर थोड़ा ठीक है, अब हैमर को अगर थोड़ा और सर में थोड़ा और अच्छा कर पाई तो हैमर को भी थोड़ा सभी लोग जानने लगेंगे कि हैमर थ्रो भी कुछ होता है, अभी कोई इतना नहीं जानता, किसी से बोलते हैं कि हम हैमर करते हैं, बोलते हैं हैमर क्या होता है, वही कि ये थोड़ा अब बेटर करेंगे हैमर को भी थोड़ा सभी जाने, यही मेरा सपना है।
0: जी हाँ बिल्कुल, सपने पूरे कर रही हैं और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर उन्होंने एक सपना तो पूरा कर लिया है, और आगे उनके जो लक्ष्य हैं जो सपने हैं अगर वो इसी तरह शानदार प्रदर्शन करती रही तो निश्चित रूप से उनकी लगन और मेहनत का उन्हें पुरस्कार ऐसे ही मिलता रहेगा। बात पुरस्कार की हो रही है और बात करते हैं 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति यारा जी की, जिन्हें हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ने सम्मानित किया, उन्होंने हीट रेस में 13.14 सेकंड का समय निकालकर एशियाई खेलों का क्वालिफिकेशन मार्क पार कर लिया है जो 13.34 का था। ज्योति चोट के कारण 1 साल से मैदान से दूर रही थी, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की और ज्योति ने 2022 में एशियाई खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीता था। ज्योति के नाम 100 मीटर बाधा दौड़ का 12.78 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है जो उन्होंने 2023 में स्थापित किया था, और निश्चित रूप से उनकी निगाहें अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर करने पर होंगी, और हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ने उन्हें पुरस्कार से नवाजा है, सम्मानित किया है, तो ये बताता है कि वो एक शानदार खिलाड़ी हैं, और तब हमारे सहयोगी शाहिद आजमी ने उनसे खा

0: पास बातचीत की थी और उन्होंने क्या कहा ज्योति जयराजे ने, आइए कुछ जानते हैं।
1: काफ़ी अच्छा लगा सर, ये फॉर द फर्स्ट टाइम हैपनिंग, और काफ़ी लेजेंडरीज को देखा कि जो ओलंपियन से, जो अर्जुन अवार्डी से, एंड ऑल्सो काफ़ी लेजेंडरी पर्सनालिटीज को देखा, क्योंकि मैं छोटे से जब जिसको देख के इंस्पायर होके आया, उसके सामने बैठ के उसके साथ बात करना, इट्स लाइक काफ़ी लाइक अच्छा है सर, इससे अच्छा है क्या ही चाहिएगा एक एथलीट को। तो आई जस्ट वांट टू थैंक्स टू AFI की इतना अच्छा इवेंट कंडक्ट किया। इट्स कम लाइक फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू ओलंपिक लेवल पहुंच पाया, इट्स काफ़ी अप एंड डाउन स्ट्रगल्स है, बट आई वॉज एबल टू मैनेज, क्योंकि ऑलवेज आगे जाने के लिए मोटिवेशन लिया और ऑलवेज चिन अप करके शो अप किया, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स आई थिंक सो सर। काफ़ी अच्छा लगा सर नेशनल रिकॉर्ड बनाने में, क्योंकि मेरा सेल्फ चैलेंज है कि मैं कितना तक जा सकती हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें जितना रिकॉर्ड्स तोड़ सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि आई डोंट वांट टू पुट प्रेशर ऑन माई सेल्फ कि कितना करूँगी, कितना कर सकते, आई विल पुश माई लिमिट्स अंटिल द एंड।
0: हाँ बिल्कुल अभिषेक, और बात यहाँ जो भारत के जाने माने एथलीट हैं वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कल कार्यक्रम में हमने बताया कि यूपी के गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर रेस में 13.552 और 9.92 का सेकंड का समय निकाला। यूपी के अभिषेक पाल दूसरे स्थान पर रहे और पंजाब के हरमनजोत ने तीसरा स्थान हासिल किया था। पोल वॉल्ट की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश के देव मीना ने शानदार प्रदर्शन किया, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, पहला स्थान हासिल किया। उसके अलावा जो इसी स्पर्धा का दूसरा स्थान मिला वो तमिलनाडु के रीगन को मिला, जिन्होंने 5.30 मीटर की ऊंचाई नापी, जबकि मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार 5.20 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रही। महिलाओं की तीसरी तिहरी कूद की अगर बात करें तो तमिलनाडु की आशा इलोंगा 13.89 मीटर के साथ अव्वल रही। उन्होंने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाइंग मार्क पार कर लिया, जबकि 13.22 मीटर के साथ पंजाब की निहारिका वशिष्ठ ने दूसरे स्थान पर फिनिश किया। आंध्र की मलिशा अनुषा 13.13 मीटर के साथ तीसरा स्थान हासिल करने में सफल रही। महिलाओं के हेमथ्रो में रिकॉर्ड प्रदर्शन करने वाली अनुष्का के बाद दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश की तानिया चौधरी को मिला, जिन्होंने 61.70 का प्रदर्शन किया, और दिल्ली की हर्षिता सहरावत ने 60.92 मीटर के साथ तारगुला फेंक कर तीसरा स्थान हासिल किया। पुरुषों की 800 मीटर की दौड़ में धावकों ने एशियाई खेलों का टिकट हासिल करने में मानो एक होड़ लगी थी, क्वालिफाइंग मार्ग उन्होंने पार किया वो जो था 1:47.80 और ये 15 एथलीट ऐसा करने में सफल रहे। इन पे एथलीट इनमें कृष्ण कुमार सबसे आगे रहे, जिन्होंने 1:47.80 का समय लिया, और अन्य एथलीटों की बात करें तो मोगली वेंकटराम, प्रथमेश दियोरे, शकील, कमला कानन, सलमान फारूक, सत्यजीत पुजारी, अमन कुमार, जगदीश मोहम्मद, प्रकाश मोहम्मद पी, प्रकाश गाड़े, विनोद कुमार, मयंक यादव, प्रदीप सेंथिल कुमार और सोमनाथ चौहान भी शामिल हैं। आज के ताज़ा नतीजों की अगर बात करें तो महिलाओं की 200 मीटर रेस में महाराष्ट्र की हरिता भद्रा ने बीट में 23.55 के साथ इस साल जापान में होने वाले एशियाई खेलों का टिकट हासिल कर लिया है, जबकि बात अनिमेश कुजूर की करें तो उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया और 20.87 का समय निकालकर क्वालिफाइंग मार्क कर लिया, जो कि 20.88 रहा है। तो ये शानदार प्रदर्शन चल रहा है। बात अब क्रिकेट की करते हैं, अभिषेक क्या कहना चाहेंगे?
2: ICC महिला T20 विश्व कप में टूर्नामेंट में आज दो महत्वपूर्ण मुकाबले खेले जाएंगे, आइए जानते हैं क्या कहते हैं आंकड़े। पहले मुकाबले का रुख करते हैं भारत बनाम बांग्लादेश। आज की सबसे बड़ी भिड़ंत भारत और बांग्लादेश के बीच होगी। भारतीय टीम हाल के वर्षों में महिला क्रिकेट में सबसे मजबूत टीमों में से एक रही है और इस मुकाबले में भी उसकी नजर जीत के साथ अभियान की शानदार शुरुआत पर होगी। भारत की बल्लेबाजी काफी मजबूत नजर आती है। कप्तान हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृति मंधाना और युवा स्टार फाली वर्मा टीम की बड़ी ताकत हैं। वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह अहम भूमिका निभा सकती हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश की टीम अपने अटैक के लिए जानी जाती है। कप्तान निगर सुल्ताना और अनुभवी ऑलराउंडर नहीदा अख्तर पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। बांग्लादेश को भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए हर विभाग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। अगर हम बात करें दोनों टीमों की तो T20 क्रिकेट में भारत का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी रहा है। भारतीय टीम अनुभवी है, बल्लेबाजी की गहराई को समझती है और बड़े मैचों में के अनुभव के कारण मजबूत दावेदार मानी जा रही है। वहीं दूसरे मुकाबले की तरफ रुख करें तो वो मुकाबला होगा दक्षिण अफ्रीका बनाम नीदरलैंड्स। दिन के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का

नीदरलैंड से होगा। हाल के वर्षों में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट में लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही है और विश्व कप की प्रमुख दावेदारों में गिनी जाती है। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लोरा वर्ल्डवॉर्ट शानदार फॉर्म में रही हैं। इसके अलावा मेरिजे ने कैप और आयोबांगा खाका टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वहीं नीदरलैंड्स की टीम को उलटफेर करने वाली टीम माना जाता है। कप्तान हीदर सीगर्स और ऑलराउंडर आयरिश ज्विलिंग पर टीम की जिम्मेदारी होगी। हालांकि अनुभव और गुणवत्ता के मामले में दक्षिण अफ्रीका को बढ़त हासिल है। दक्षिण अफ्रीका चाहेगा कि वे शुरुआत से ही मैच पर नियंत्रण बनाए रखें, जबकि नीदरलैंड्स दबाव बनाकर चौंकाने की कोशिश करेगा। तो श्रोताओं, आज की नजरें भारत और बांग्लादेश के मुकाबले पर रहेंगी, जहां भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। वहीं दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच भी दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी नजर आता है। वहीं अभी हुए मुकाबले का अगर रुख करें इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज, तो उसके अंक क्या कहते हैं आइए वो जानते हैं। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में मेजबान इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को 38 रन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए, जो एक काफी बड़ा टारगेट था। टीम की ओर से डैनी वॉल्टहोज ने 42 गेंदों पर 65 रन की शानदार पारी खेली, जबकि हीदर नाइट ने 43 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। 187 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान हेली मैथ्यूज का विकेट टीम के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और कैरिबियाई टीम कभी भी लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच सकी। वेस्टइंडीज की ओर से चिनेल हेनरी ने संघर्षपूर्ण नाबाद 51 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। निर्धारित 20 ओवर में टीम 5 विकेट पर 148 रन ही बना सकी। गेंदबाजी में इंग्लैंड की कप्तान चार्ली डीन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट हासिल किए, जबकि पूरी गेंदबाजी इकाई ने दबाव बनाए रखा। डैनी वॉल्टहोज को उनकी मैच जिताओ 65 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ इंग्लैंड लगातार चौथी जीत दर्ज करने होते हुए सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। वहीं वेस्टइंडीज को अब अगले मुकाबले में जीत दर्ज कर नॉकआउट की उम्मीदें बनाए रखनी होंगी।

0: बिल्कुल, बात अब हॉकी की करते हैं तो नीदरलैंड की महिला टीम ने FIH प्रो लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है और लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। पुरुषों में बेल्जियम की टीम खिताब के बेहद नजदीक है और भारतीय टीम का कैसा प्रदर्शन, अब किसके साथ मैच होना है, वो इंग्लैंड के साथ मैच है 12 बजे और कल 10:30 बजे पाकिस्तान के साथ मैच है और अभी एक मैच 16 मैच खेलने हैं, इंग्लैंड के साथ भी मैच होना है। बहरहाल अभी जो इंग्लैंड के साथ मैच है उसके बारे में अभिषेक क्या बताना चाहेंगे?
1: लंदन में ये मुकाबला खेला जाएगा जिसमें इस मुकाबले को दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय टीम हाल ही में पाकिस्तान पर 4-3 की रोमांचक जीत दर्ज करके इस मुकाबले में उतर रही है जिससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी बड़ा हो गया। भारत की नजरें कप्तान हरमनप्रीत सिंह, मिड स्टार हार्दिक सिंह और अनुभवी मनप्रीत सिंह पर रहेंगी। पेनल्टी कॉर्नर पर हरमनप्रीत सिंह की डायरेक्ट फ्लिक और मिडफील्ड में हार्दिक रचनात्मक भारत की बड़ी ताकत होगी।
0: बिल्कुल, बात निशानेबाजी की करते हैं तो जर्मनी के सोहेल में चल रहे ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में भारतीय शूटर लगातार पदकों पर निशाना साध रहे हैं। अभिनव शाह और शाम्बी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि 505.8

0: रिया दुग्गल ने कांस्य पदक जीता। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत पुरुष एकल के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं प्री क्वार्टर में। उनका मुकाबला मलेशिया के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता ली जिया से होगा। महिला एकल में तन्वी शर्मा, देविका सिवाग और रशिता श्री अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में पहुंच गई हैं। किदांबी श्रीकांत ने सनी दयानंद को 21-14, 21-12 से हराया, जबकि भारत के रौनक चौहान ने हमवतन शंकर मुत्तुस्वामी सुब्रमण्यम को पराजित किया। महिला एकल में आकर्षि कश्यप को ताइपे की टंग ने पराजित कर दिया। दोस्तों, घड़ी की सुइयां हमें ज़्यादा अनुमति प्रदान नहीं कर रही हैं, तो मुझे या नवीन कुमार शर्मा और साथी अभिषेक के साथ अनुमति दीजिए। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान हैं।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीकचों में सिमटा जग किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है, 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है।

0: चषकस्य निर्णायकचरणं प्रति प्रविष्टः। समूह अ क्रीडायां दक्षिणाफ्रिकायाः कृते एकमात्र गोल इत्युक्ते लक्ष्यभेदनं थापेलो मासेको इत्यनेन कृतम्। भारतदेशं विरुध्य बांग्लादेशः आईसीसी महिला टी ट्वेंटी विश्वचषके अद्य मैंचेस्टर नगरस्थे एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रीडांगणे समूह अ क्रीडायां स्पर्धिष्यते। क्रीडा भारतीय समयानुसारं सायं सार्धसप्तवादने आरप्स्यते। प्रियः श्रोतारः, मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। अद्य संविधानहत्यादिवसः आचर्यते। आपत्कालकाले लोकतान्त्रिकमूल्यानां रक्षयन्तृभ्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना श्रद्धाञ्जलिः समर्पिता। विदेशकार्यमन्त्री डॉ एस जयशंकरः वैश्विकसमस्यानां मध्ये दृढतरसहयोगस्य आवाहनं कृतवान्। भारतस्य ब्रिक्स 2026 इत्यस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं गुरुग्रामनगरे ब्रिक्स ऊर्जामन्त्रिणां सम्मेलनम् आरभत। वेनेजुएलादेशे एकस्यानन्तरम् अपरत्वेन प्रबलः भूकम्पः आगतः। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम, राम।
0: तो कुसुम बहन हम हाजिर हो गए हैं ग्राम संसार कार्यक्रम
1: बिल्कुल अतुल भाई, और हम बहुत सही चीजें आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और हमारा ये जो कार्यक्रम है SMS पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम
0: है। जी बिल्कुल, और इस कार्यक्रम में हम अपने भाइयों की फरमाइश को पूरा करते हैं उनकी पसंद के कलाकार के द्वारा।
1: बिल्कुल,
0: समय समय पर चर्चा भी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से करते रहते हैं।
1: और अतुल भाई देखिए ना, आज का जो आधुनिक युग है उसमें इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं केवल सुविधाएं नहीं है, हमें तो बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं, लेकिन ये केवल सुविधाएं नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है हमारी। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की पहुंच बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का लाभ लोगों तक तेजी से पहुंच रहा है।
0: बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने इंटरनेट की बात की और फिर भी ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो जब हमारा जो किसान भाई है, जब मौसम की जानकारी, फसल संबंधी सलाह और बाजार भाव अपने मोबाइल पर प्राप्त करता है तो बड़ी खुशी होती है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है इंटरनेट की सुविधा पहुंच रही है।
1: बिल्कुल,
0: और देखिए अब तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप जो है हमारे किसान भाई भी आपस में लेन देन भी करते हैं, चाहे वो अपना खाद खरीदते हैं या बीज खरीदते हैं, तो सीधा ऑनलाइन जो है
1: बहुत सारी डिजिटल तो बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे आपने बताया है कि किसान भाई बहनों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। उसके अलावा जो हमारे विद्यार्थीगण हैं जो गांव और देहातों में रहते हैं, उनको अब ऑनलाइन शिक्षा डिजिटल पुस्तकालयों का लाभ भी ले रहे हैं, अब वो घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग से आर्थिक लेन देन को सरल और सुरक्षित बनाया गया है।
0: बिल्कुल, देखिए सरकार की जो विभिन्न डिजिटल पहले हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी आप ले सकते हैं, जनसेवा केंद्र और डिजिटल भुगतान प्रणाली ग्रामीण नागरिकों को समय और धन दोनों की बचत करने में भी सहायता प्रदान कर रही है।
1: बिल्कुल,
0: हालांकि अभी कई क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी देखिए अभी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन देखिए सरकार का भरसक प्रयास है कि हर क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाई।
1: बिल्कुल, और यदि हम कहेंगे कि डिजिटल गांव, सशक्त किसान, इंटरनेट से बनेगा भारत महान।
0: बिल्कुल, तो ये तो रही जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के बारे में। और देखिए आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है SMS पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम, और हमारे एक पहले कलाकार हैं जयवीर भाटी, इनके लिए हमारे पास में SMS आया है गांव चोहलदा बागपत उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं संजय ढींगिया और इनका पूरा परिवार। पलारी छत्तीसगढ़ से हमें फरमाइश भेज रहे हैं नितेश कुमार देवांगन और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है चंडीगढ़ से भेजने वाले हैं सतीश अनेजा और इनका पूरा परिवार। ये SMS मिला है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से भेजने वाले हैं मुर्शद जहां नाज और इनका पूरा परिवार।
1: जी हाँ, जसवीर भाटी को ही सुनना चाहते हैं गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतोड़ उनका पूरी परिवार। और इसके अलावा मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का भी हमें SMS आया है, उन्होंने भी फरमाइश की है जयवीर भाटिया को सुनना चाहते हैं। और इसके साथ ही हमें मैसेज आया है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन और

0: स्वस्थ परिवार का। और इसके अलावा हमें मैसेज आया है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा और उनके समस्त परिवार का, जो सुनना चाहते हैं जयवीर भाटी को।
1: छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से फरमाई भेज रहे हैं राष्ट्रपाल गजबिये और उनका पूरा परिवार। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से फरमाई भेज रहे हैं सैयद मशरूर और इनका पूरा परिवार। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाई भेज रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी और इनका पूरा परिवार। गांधीनगर गुजरात से हमारे पास में SMS आया है, भेजने वाले हैं सुरेश राठौड़ और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमें मिला है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं देवशंकर तामूरिया और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से, भेजने वाले हैं मुकेश बत्ता और इनका पूरा परिवार। गाँव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं विक्रम कडवासरा और इनका पूरा परिवार।
0: जी हाँ, और गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज और उनका समस्त परिवार सुनना चाहते हैं जयवीर भाटी को। इसके अलावा ये मैसेज आया है असम से मानस दास और समस्त परिवार का। साथ ही गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल और समस्त गिल परिवार का हमें SMS आया है। और सूरजमल राजस्थान से भूपेंद्र मिशन और समस्त परिवार का मैसेज आया है, जो सुनना चाहते हैं जयवीर भाटी को। साथ ही बिहार स्टेट डुमराव से राजवली अंसारी और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है। और गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवाज शहर पंजाब से भी सुरिंदर संधू अनीता संधू और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है, जो सुनना चाहते हैं जयवीर भाटी को।
1: जयवीर भाटी को ही सुनना चाहे बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, भेजने वाले हैं सुरेश ग्रोवर और उनका पूरा परिवार। ये SMS हमारे पास में आया है मेहर नगर उमरखेड़ से, भेजने वाले हैं अभिजीत गवहनकर राही और उनका पूरा परिवार। ये SMS हमें मिला है जटवाड़ा गाजीबाद से, भेजने वाले हैं शीशपाल अकेला और उनका पूरा परिवार। वडिंगखेड़ा पंजाब से हमें फरमाई भेज रहे हैं मिंटो टॉम्स और इनका पूरा परिवार। संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ हमें फरमाई भेज रही हैं पिंगावाला चौक गोराया जलंधर से। और ये SMS हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौक खुंटी बुलंदशहर से, भेजने वाले हैं मोहम्मद सईद अब्बासी और इनका पूरा परिवार। शादुल शहर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं रामकुमार रेवाड़ और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर जयवीर भाटी की आवाज़ में ये रागनी।

0: तो कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे जयवीर भाटी की आवाज में, ये रागनी और किस्सा था महाभारत का।
1: बिल्कुल अतुल भाई। और हमारे अगले कलाकार हैं राकेश त्यागी, और इसकी फरमाइश की है भोला कॉलोनी घरोना जिला करनाल हरियाणा से बिजेंद्र कुमार जयजान और समस्त परिवार ने। साथ ही हमें मैसेज करा है ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप और समस्त परिवार का। और ये मैसेज आया है हमें हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह और समस्त परिवार का, ये भी सुनना चाहते हैं राकेश त्यागी को। गांव लोहडडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत और समस्त प्रजापत परिवार का हमें एसएमएस आया है। साथ ही अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक और समस्त पाठक परिवार का हमें मैसेज आया है।
0: ये एसएमएस हमें मिला है कलानौर से, भेजने वाले हैं नरेंद्र शर्मा और इनका पूरा परिवार। धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से फरमाइश भेज रहे हैं निशार सलमानी और इनका पूरा परिवार। ये एसएमएस हमें मिला है करावल नगर दिल्ली से, भेजने वाले हैं रामनाथ प्रजापति और इनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं रजाक मोहम्मद और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है भटिंडा रोड मंडी डबवाली से, भेजने वाले हैं राजेंद्र नारंग और इनका पूरा परिवार। फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से फरमाइश भेज रहे हैं नासिर शेख और इनका पूरा परिवार।
1: और गाँव श्री गंगानगर से विनोद बारासा और समस्त परिवार का मैसेज आया हमें। दतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा और समस्त वर्मा परिवार का हमें मैसेज आया है। साथ ही एसएमएस आया है दादा

0: ब्रिगेड भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा और समस्त परिवार का। और इसके अलावा हमें मैसेज आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और समस्त परिवार का, जो सुनना चाहते हैं राकेश त्यागी को। और गांव रावतखेड़ा जिला हिसार हरियाणा से सियाराम भादो और समस्त परिवार का हमें SMS आया है।
1: यह SMS हमारे पास में आया है संदीप गुगलानी का और जगमोहन प्रजापति जी का, जो सुनना चाहते हैं राकेश त्यागी को ही। गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेजने वेद मिड्डा और इनका पूरा परिवार। जमानिया गाजीपुर से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश जायसवाल और इनका पूरा परिवार। गांव फरासी जिला हिसार से फरमाइश भेज रहे हैं राजकुमार डुड्डी और इनका पूरा परिवार। जिला नादेड़ येताला महाराष्ट्र से फरमाइश भेज रहे हैं शंकर लाल जायसवाल और इनका पूरा परिवार। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से फरमाइश भेज रहे हैं कमलेश साहू और इनका पूरा परिवार। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से फरमाइश भेज रहे हैं सिद्धार्थ गोंडाने और इनका पूरा परिवार।
0: बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और समस्त परिवार का हमें SMS आया है। डुमराव बिहार से डॉक्टर W अंसारी और समस्त परिवार का हमें SMS आया है। सारिमपुर बक्सर से भी आर राज SD अंसारी और समस्त परिवार का हमें SMS मिला है। इसके अलावा नलेश्वर नगर नरवेर महाराष्ट्र से PS नलवालकर और समस्त परिवार का हमें SMS मिला है। और एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बबीता बोट और समस्त परिवार का मैसेज आया, जो सुनना चाहते हैं राकेश त्यागी को। महिपाल श्योरण नीरू उत्कर्ष और दिव्यांश गांव बडदू चैना जिला भिवानी से भी हमें SMS आया है।
1: रिंगनी छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं दिनेश वर्मा और इनका पूरा परिवार। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं मेहर अरोड़ा और इनका पूरा परिवार। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से फरमाइश भेज रहे हैं अनिल मोहन और इनका पूरा परिवार। मूंगी पैठन महाराष्ट्र से फरमाइश भेज रहे हैं बाबा साहेब कंगणकर और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर राकेश त्यागी की आवाज़ में ये रागनी।

0: जी के सब दुख ने बाटे।
1: तो कुसुम बहन अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे राकेश त्यागी की आवाज़ में ये रागनी और किस्सा था सत्यवान सावित्री का।
2: बिल्कुल अतुल भाई, और हमारे अगले कलाकार हैं हरेंद्र नागर और इसकी फरमाइश की है हमें दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान और समस्त परिवार का। इसके अलावा रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और समस्त परिवार का हमें SMS आया है। GTB मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी और समस्त परिवार का हमें SMS आया है। गांव उगला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार मलकीत कौर और समस्त परिवार का हमें SMS आया है। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है। दुबिया नवेदा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का हमें SMS आया है।
1: चक 5 MD पतरोड़ा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाइश भी रहे मंगल जनागल और इनका पूरा परिवार गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं राजेश कुमार वर्मा और इनका पूरा परिवार। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से फरमाइश भेज रहे मुन्ना भाई स्वर्णकार और इनका पूरा परिवार। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं लालगिरी गोस्वामी और इनका पूरा परिवार। जनकपुरी सारापुर से फरमाइश भेज रहे जॉन डिकेस्टो और इनका पूरा परिवार। चौधरीवास से फरमाइश भेज रहे हैं राजू अग्रवाल और इनका पूरा परिवार। पटेल नगर मेलौट से फरमाइश भेज रहे हैं रामेश कुमार जाजौरिया और इनका पूरा परिवार। बराड़ा जिला अम्बाला से फरमाइश भेज रहे रवि कुमार राहुल और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है कुसुम बहन चौधरीवास से भेजने वाले हैं संजय बिश्नोई और इनका पूरा परिवार। गांव हांडी खेड़ा से फरमाइश भेज रहे हैं राधेश्याम शर्मा और इनका पूरा परिवार। आदर्श नगर मेलौट पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं राज शर्मा और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर हरिंदर नगर की आवाज़ में ये रागनी और किस्सा होगा नल दमयंती।

0: तो कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे हरेंद्र नागर की आवाज में ये रागनी, और किस्सा था नल दमयंती का। और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को हैं। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर एक सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदना भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
2: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
3: सीकचों में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंता कयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ला ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमरीका के फुलटर्न में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य

0: भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम, राम राम।
1: तो कुसुम बहन, हम फिर से हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के। और भाई, अपने इस कार्यक्रम में हम अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी लेकर के आते हैं, उनकी फसलों से संबंधित, पशुओं से संबंधित और उनके स्वास्थ्य से संबंधित।
0: बिल्कुल, और मनोरंजन भी कराते हैं अतुल भाई। और देखिए ना, जो मसाले हैं हमारे लिए और किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और मौसम के हिसाब से यदि हम बात करें तो अजवाइन और सौंफ जो मसाले फसलें होती हैं, खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी रहती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इन फसलों की बाजार में वर्ष भर मांग बनी रहती है, जिससे उचित मूल्य मिलने की संभावना रहती है। इसके फायदे भी बहुत सारे हैं अतुल भाई। मसाला फसलों की बाजार में अच्छी मांग रहती है, इसलिए यदि हमारे किसान भाई बहन इस मसालों पर इसकी खेती करेंगे तो उसको ज्यादा उनको मुनाफा होगा।
1: बिल्कुल, देखिए यानी कि कम क्षेत्र में भी आप अच्छा आर्थिक लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं, और फसल विविधीकरण से खेती का जोखिम जो होता है वो भी कम होता है। और कुछ मसाले फसलें ऐसी भी हैं कुसुम बहन जो औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं, इनका व्यवहारिक महत्व अधिक होता है और अच्छी देखभाल से उच्च गुणवत्ता का उत्पादन प्राप्त जो है हमारे किसान भाई जो है कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और सावधानियां भाई यही हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं भाई, खरीफ मौसम में अधिक वर्षा के कारण जल भराव जो है अपने खेत के अंदर थोड़ा सा ना होने दें, क्योंकि ये जो मसाले वाली जो फसलें होती हैं ये थोड़ा सा जो है नाजुक होती है।
0: बिल्कुल अतुल भाई, मसाला फसलें जो होती हैं वह सफल खेती का आधार है। उचित समय पर बुआई, बेहतर जल निकासी और नियमित निगरानी या सावधानी के साथ की गई खेती किसानों को बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ दिला सकती है।
1: बिल्कुल, और देखिए और अधिक जानकारी हम अपने सभी किसान बहन भाइयों को दिलवाते हैं डॉक्टर बल्ला से कि अजवाइन और सौंफ जैसी मसाला फसलों की खरीफ में किस प्रकार से बुआई कर सकते हैं, और ये इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बलराज सिंह, परियोजना निदेशक मशाला अनुसंधान संस्थान अजमेर, और इनसे बातचीत कर रहे हैं तुषार पारा सर। तो कुसुम बहन लेते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों राम राम। भारतीय रसोई की कल्पना मसालों के बिना अधूरी है, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनके साथ हम मसालों की खुशबू पर नहीं बल्कि उसकी आर्थिक ताकत पर बात करेंगे। भारत आज दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं धान से अलग हटकर मसाला फसलें हमारे किसानों की आय को दोगुना करने और देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक गेम चेंजर साबित हो रही है। इसीलिए हमारी इस बातचीत का विषय भी है मसाला फसलों की खेती से अधिक लाभ और कृषि अर्थव्यवस्था में इसका योगदान, और इस विषय के हर छोटे बड़े तकनीकी और आर्थिक पहलू पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलराज सिंह, जो कुलपति हैं गुरु काशी यूनिवर्सिटी भटिंडा से। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: जब भी हम मसाला फसलों की बात करते हैं तो अक्सर लोगों का ध्यान केवल केरला या दक्षिण भारत की तरफ जाता है, लेकिन आज उत्तर और मध्य भारत के जो किसान हैं वो भी मिर्च, धनिया, जीरा और सौंफ की खेती से बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। बदलते समय में भारत के इस एग्री मैप पर जो कृषि मानचित्र है उस पर मसालों की इस नई स्थिति को आप कैसे देखते हैं?
3: पहले तो मैं बताना चाहूंगा, भारत का बहुत ही प्राचीनतम इतिहास रहा है मसालों को लेकर के, और आपको पता होगा वास्को डी गामा आया तो वो मसालों की खोज में ही, काली मिर्च, इलायची, इनकी खोज में ही आया था
2: कालीकट के तट।
3: लेकिन आज जैसा आपने कहा, जो काली मिर्च है, इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, वही मसाला फसलें हैं, वो दक्षिण में होती हैं, लेकिन आज उत्तर भारत में और मध्य भारत में भी बहुत सारी दूसरी मसाला फसलें जिनकी खेती की जाती हैं। तो मैं

0: बताना चाहूंगा कि मुख्य रूप से दो किस्म के मसाला फसलें होती हैं। एक तो होती है बहुवर्षीय
1: जी,
0: जो एक बार लग गई तो कई साल तक चलेंगी। जैसे काली मिर्च है, काली मिर्च का पौधा एक बार लग गया उसको सहारे की जरूरत है, तो वो फिर आपका 30, 40, 50 साल तक चल सकता है। उसको सहारा चाहिए, चाहे एरिका नट पे लगाएं, चाहे कोकोनट के सहारे चढ़ाएं, चाहे दूसरी किसी प्लांटेशन क्रॉप उसके सहारे आप चढ़ाते हैं उसको। फिर इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, ये सब बहुवर्षीय फसलें हैं। हल्दी अदरक भी उसी में आती है बहुवर्षीय में। लेकिन दूसरी तरफ प्राचीन काल से स्थिति बदली है आज, और जो हमारे बीजीय मसाला फसलें हैं जो एक वर्षीय हैं, और एक वर्षीय के अंदर भी मौसमी है, सीजनल है। अब ज्यादातर सर्दी फसलें हैं जिसमें जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, कलौंजी, विलायती सौंफ और आपका सोवा, ये प्रमुख फसलें हैं जो कि उत्तर भारत में और मध्य भारत में होती हैं। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं काफी सालों के बाद, क्योंकि आज इन फसलों को लेके, काली मिर्च, इलायची, इनको लेके दूसरे देश जैसे कि वियतनाम, कंबोडिया, ये हमारी प्रतिस्पर्धा में आए हैं विश्व व्यापार में। वो हमारे को टफ कंपटीशन देते हैं अलग अलग लेवल पर, अलग अलग डेस्टिनेशंस पे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी दूसरी फसलें हैं जिनको हम कम आंकते थे, जैसे जीरा है
1: जी।
0: जीरा हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बीजीय मसाला फसल है, एक वर्षीय है और एक वर्षीय के अंदर सीजनल है, और सीजनल में भी मात्र ये 120 से 130 दिन की फसल है जीरा कुल। और इसका पहले खेती व्यापक रूप से होती थी हरियाणा में भी, राजस्थान में, गुजरात में, लेकिन आजकल सीमित इलाके खेती के रह गए हैं। क्योंकि क्या है कि जो जीरे को जो जलवायु चाहिए वो माइल्ड विंटर और ड्राई वेदर दो चाहिए, ठंड हो लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर ठंड ना हो, और ड्राई वेदर, नमी की मात्रा कम हो। वरना जीरा जो है एक बीमारी, जो सबसे बड़ा कारण है ना उगाए जाने का, वो है अल्टरनेरिया ब्लाइट झुलसा चरमा, या दूसरा जो लोकल भाषा में नाम लेते हैं किसान, वो अल्टरनेरिया ब्लाइट जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे ये बीमारी की बात करी कि जब भी हम मसाला फसलों की बात करते हैं तो उसमें एक आम किसान के लिए रिस्क प्रॉफिट रेशियो कैसे रहता है, मुनाफे का क्या अनुपात रहता है?
0: देखिए, बिल्कुल, जो दूसरी फसलें जैसे आपने बात की उसके मुकाबले बीजीय मसाला फसलों में आमदनी ज्यादा होगी, डेढ़ गुणा से दुगुणा तक ज्यादा होगी। लेकिन उसको करने का तरीका सही, और उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई दूसरी दिक्कत है, उसका सामयिक रोकथाम वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैं बता रहा था, जीरा सिर्फ 120 दिन की फसल है, और आज पश्चिमी राजस्थान का इलाका जो है नागौर से शुरू होकर जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, ये इलाके राजस्थान के हैं जो प्रचुर मात्रा में जीरे की खेती करते हैं बड़े पैमाने पे, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कुल मिलाकर मैं मोटी मोटी बात ये करूं, जहां धुंध गिरेगी वहां जीरा नहीं हो सकता। तो उन इलाकों में जहां धुंध नहीं गिरती और नमी की मात्रा कम है, ठंड भी है, माइल्ड विंटर है, वहां पे जीरा होता है। इसके अलावा फिर आप चले जाइए गुजरात में, मेहसाणा से होते हुए, सुरेंद्रनगर से होते हुए आप कच्छ तक चले जाइए, जिसके अंदर जूनागढ़, राजकोट, ये पूरे इलाके जीरे के हैं। तो जीरे का एक सीमित क्षेत्रफल होगा। लेकिन धनिया दूसरी हमारी इंपोर्टेंट फसल है। इसका जो कटोरा है, जैसे कि जीरे का उत्पादन का कटोरा मैंने बताया पश्चिमी राजस्थान और गुजरात दो ही है, और धनिया का जो कटोरा है वो है मध्य प्रदेश के इलाके और राजस्थान के इलाके। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट? आपका दक्षिणी राजस्थान, जिसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, मंदसौर, नीमच, गुना, ये डिस्ट्रिक्ट्स कुछ एमपी के और कुछ राजस्थान के मिलकर कटोरा बनाते हैं, जहां बड़े पैमाने पर धनिया तो होने को आंध्र प्रदेश में भी होता है, तेलंगाना में भी होता है, नॉर्थ ईस्ट में भी होता है।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने इन क्षेत्रों की बात की, तो मसालों की खेती के लिए जो मिट्टी की तैयारी और पोषक तत्व होते हैं उनका प्रबंधन आम फसलों से कितना अलग है, और इसके लिए क्या कोई विशेष सॉइल टेस्टिंग की जरूरत होती है?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन इन इलाकों में जहां खेती की जाती है, इसका मतलब वहां की जमीन, वहां की आबोहवा, वहां का वातावरण इन फसलों के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। जीरे का जैसे मैंने बात की, जीरे को बहुत ज्यादा खाद पानी नहीं चाहिए, जीरे को मैक्सिमम, वैसे हम शुरुआत में कहते हैं भाई आप स्प्रिंकलर का यूज करें, लेकिन जनवरी के 15 के बाद हम कहते हैं अब स्प्रिंकलर मत चलाना, कहीं धुंध ना गिर जाए। तो फिर कम सिंचाई, अगर कम पोषक तत्वों की आवश्यकता जीरे को है, बहुत ज्यादा नहीं है अगर दूसरी फसलों के मुकाबले करें। लेकिन बात यही है कि समय पर बुआई, वैरायटीज का सिलेक्शन। अब जैसे एक बीमारी आती थी जीरे के अंदर, अल्टरनेरिया ब्लाइट, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, वो आती है एंड में जाके 15 जनवरी, 20 जनवरी के बाद या फरवरी के महीने में। अब वैरायटी आ गई 130 दिन से, वैरायटी 100 दिन की वैरायटी भी डेवलप हो गई, तो वो वैरायटी कहीं ना कहीं एस्केप कर सकती है, उससे बच कर निकल सकती हैं, तो वो बात है। धनिया में भी जैसे ये नहीं कि आप सिर्फ धनिया दाने के लिए करेंगे जो मसाले में पिसा जाएगा, वो नहीं। आजकल

0: ड्यूअल पर्पज, आप हरा धनिया भी तो खाते हैं ना, आप गार्निशिंग करते हैं, सब्जियों में डालते हैं, तो वैरायटी सिंगल पर्पज भी है, दाने की वाली भी है, हरी भी है, ड्यूअल पर्पज वैरायटीज भी है, तो दोनों तरीके की खेती होती है। अब आजकल गर्मी में आप देखेंगे हरा धनिया बहुत महंगा है, तो इसका मतलब उसकी खेती। फिर आपका सौंफ है, सौंफ का इलाका भी राजस्थान में बेलाड़ा से होता हुआ, आबू रोड से होता हुआ गुजरात में चला जाता है पूरा का पूरा, और सौंफ में भी वही है, हालांकि थोड़ी लंबी अवधि की फसल है, करीब करीब 150 दिन से लेकर 180 190 200 दिन तक की फसल है, लेकिन आजकल ड्वार्फ वैरायटीज अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज अवेलेबल है। और सौंफ में भी किसान करते हैं, जब देखिए दो फायदे हैं, एक तो आप पका के काटोगे तो भाव कम होगा, उपज ज्यादा होगी, एक आप उसको जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे है
1: जी,
0: और उसकी शेड ड्राइंग करते हैं, छप्पर वगैरह में आपके वो तोड़ लिया आपने अम्बल्स और उनको सुखाया, जिसको पिचक जाती है, हरी होती है और मीठी होती है, जिसको लखनवी सौंफ गलती से कहते हैं हम लोग
1: जी जी,
0: तो वो लखनऊ में नहीं होती कोई सौंफ, उसका तरीका है कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर हार्वेस्ट करके सेड ड्राइंग करना, उससे भाव उसका दुगुने से ज्यादा होगा, मीठी होगी, लोग उसी को खाने के बाद खाते हैं ज्यादातर मिश्री के साथ या चीनी के साथ सौंफ को। इसके अलावा मेथी, मेथी में भी यही है, खुशबू वाली मेथी भी है, जो छोटे दाने वाली मेथी जिसको हम गलती से कसूरी मेथी कहते हैं, यह है नागौरी मेथी, पान मेथी, ठीक है, ये नाम है इसका। फिर दूसरी बड़े दाने वाली मेथी, जिसको हम दाने के रूप में भी, क्योंकि उसके औषधीय गुण है मेथी के, औषधीय गुण क्या है, जोड़ों का दर्द, आपको गठिया जोड़, दूसरा डायबिटीज में, तो दो इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, एक तो 4-HIL और दूसरा डाइजिनिन, दो कंटेंट है, लेकिन एक कड़वा तत्व भी इसके अंदर है, सेपोनिन कंटेंट है, जिसकी वजह से कड़वी है, इसलिए हम लोग खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। और उसको हरी पत्ती के रूप में भी खाते हैं, आप सब्जी बनाते हो, परांठे वगैरह में डालते हो, तो ड्यूअल पर्पज वैरायटीज भी हैं और सिंगल पर्पज वैरायटीज भी हैं, दाने वाली भी, तो दोनों तरीके से। तो मेथी का खेती भी ज्यादातर राजस्थान में झुंझुनू से लेकर सीकर से लेकर और पूरे कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेथी की खेती भी होती है।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर हम इसके आर्थिक पक्ष की एक बात करें, तो इन फसलों के लिए कोई किसानों को वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस प्रकार से करना होता है और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होता है?
0: देखिए, एक तो आधुनिक तकनीकें उगाने की किसानों को इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे जीरा महंगी फसल है, ठीक है, बीज कितने का आएगा, बहुत महंगा आएगा, अब आप बाजरे का बीज लोगे तो सस्ता आएगा, लेकिन इसका बीज महंगा आएगा आपका। तो जीरे में क्या है, अगर आप छिटकवा विधि से बुआई करते हैं, लेकिन अगर आप उसी को आजकल गाजर मशीन बोती है, न्यूमेटिक सीडर्स, अगर आप न्यूमेटिक सीडिंग करते हैं, लाइनों में बुआई करते हैं मशीनों से, तो 12-14 किलो बीज लगता है प्रति हेक्टेयर जीरे की बुआई में, वो घट के 7-8 किलो रह जाएगा, कितना जीरा बच गया, दसियों लाख हेक्टेयर हमारा एरिया है। तो किसानों को एक तो बुआई का तरीका, फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है, सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बीमारी आती है जड़ से आती है, जमीन से लगती है, विल्ट, उकठा रोग बोलते हैं हम इसको, उसकी रोकथाम के लिए एक तो वैरायटी काम कर सकती है, दूसरा सीड ट्रीटमेंट, बीज का उपचार अच्छी फंजीसाइड से बहुत जरूरी है। धनिया में ऐसी वैरायटी है आजकल हमारी जिनमें रोग आते ही नहीं, कई ACR1 अजमेर की हमारी वैरायटी, अजमेर कोरिएंडर 1 ड्यूअल पर्पज है, हरी पत्ती में भी चलेगी और दाने में भी चलेगी। और जहां तक आर्थिक उसकी बात है, निश्चित तौर पे किसान आज जैसलमेर में, बाड़मेर में, जालौर में जीरे की खेती करके, इसबगोल की खेती करके बहुत अच्छे पैसा कमा रहे हैं। और देश आज, मैं जब निदेशक था राष्ट्रीय बीजिया मसाला अनुसंधान जो केंद्र है अजमेर में, जो बीजिया मसाला फसलों पे काम करता है, जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन पे, 2012 में, तो उस टाइम पे 2012 में जीरे का निर्यात देश से 280 करोड़ के लगभग था। आज जीरे का निर्यात 145 करोड़ को खिलाने के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा हम खाने वाले, 5.5 हजार करोड़ से ज्यादा का जीरे का निर्यात है देश से।
1: तो डॉक्टर साहब, हमारे भारत सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं हमारे किसान भाइयों के लिए चलाई है, और अगर हम बात करें विशेष रूप से मसालों की, तो स्पाइस बोर्ड्स और इसके अलावा MIDH भी एक स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की थी, इन स्कीम्स से किसानों को कितना फायदा पहुंचा, इन योजनाओं का कितना लाभ हमारे किसान भाई उठा पा रहे हैं?
0: देखिए, किसानों के लिए इन योजनाओं का किसान लाभ ले सकते हैं, उसमें अनुदान है, उसमें आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं आप साबुत धनिया ही बेचें, आप धनिया की ग्राइंडिंग करके भी बेच सकते हैं, आप जरूरी नहीं जीरा साबुत बेचे, आप जीरे को प्रोसेस करके, ग्रेड करके, जीरे का पाउडर बना के भी आप बेच सकते हैं, एसेंशियल ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो जितना भी अनुदान है, MIDH की आपने बात की, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, या स्पाइसेस बोर्ड है, या कालीकट में एक इंस्टीट्यूट और है भारत सरकार का, सुपारी मसाला इंस्टीट्यूट, वो भी मदद करता है किसानों की। बीज को देने की बात करते हैं और किसानों से बीज उत्पादन की बात भी करते हैं, वही पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम में किसान आए भागीदारी में और बीज पैदा करें, उसको वापस प्रोक्योरमेंट की बात है, वो भी है। तो हर लिहाज से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मसाला फसलों की अगर आप खेती करते हैं, तो आज दक्षिण भारत

0: भी जितने मसाला फसलें हैं, आपका काली मिर्च है, इलायची है, उनमें भी अच्छी वैरायटीज। सबसे बड़ी बात है बीज एक तो, और एक प्लांटिंग मटेरियल, दोनों का रोग रहित और स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और आपने एक और बात की थी आज लाल मिर्च, कभी हमने सोचा था अगर हमारा लाल मिर्च का इतना बड़ा निर्यात होगा, सबसे बड़े तो उपभोक्ता है, उसके बाद भी हमारा लाल मिर्च का निर्यात भी 8,000 करोड़ को पार कर गया था अभी। लेकिन दिक्कतें आती हैं, किसानों को भी ध्यान देना पड़ेगा, इनके निर्यात में दिक्कत आती है कई। एक तो आती है पेस्टिसाइड रेजिड्यू, एक दिक्कत आती है एफ्लाटॉक्सिन वगैरह की।
1: जैसे डॉक्टर साहब बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के जो मानक हैं वो काफी कड़े हैं, हमारे किसान अपनी फसलों को वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से बनाएं?
0: वो भी इसलिए कि आजकल जो आपने MIDH की या मसाला बोर्ड की बात की, आजकल गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ग्लोबल गैप, उनके मापदंडों को अपनाते हुए हम किसानों को भी प्रशिक्षण देते हैं। और उनको जब किसानों को उनके बारे में बताएंगे, भाई देखिए हम निर्यात में है और आपके जीरे में कोई एडल्ट्रेशन होगी, जैसे एलर्जी, अब मान लिया पहली फसल मूंगफली है और आपने बारदाना, बोरी, कट्टे और थ्रेसिंग फ्लोर्स और मशीन आपने मूंगफली की यूज कर ली, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आई है, हमारी पूरी कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुई है। उसका कारण रहा अब पहली फसल, क्योंकि राजकोट जूनागढ़ इन इलाकों में मूंगफली है बड़े पैमाने पर, फिर बाद में जीरा होता है। तो किसानों को हम लगातार बताते हैं अगर भाई कतई नहीं, आप अगर वो भी बारदाना यूज करते हो, आप बोरी कट्टे यूज करते हो, तो उनको उल्टा कर दे, झाड़ दे, धूप में सुखा दे,
1: उसके रेजिड्यूज से हो सकता है
0: नहीं आएंगे, उसके जो पार्टिकल हैं वो नहीं जा पाएंगे। तो इन चीजों का नई हम नहीं करें, भाई नई तो खरीदनी चाहिए वैसे, लेकिन सारी सावधानी बरत के गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपना के हम किसानों को लगातार ट्रेनिंग भी देते हैं, बताते भी हैं अब भाई क्या है अच्छी कृषि क्रियाएं, बेहतर कृषि क्रियाएं क्या है, कौन कौन सी बाधाएं, क्या पेस्टिसाइड रेजिड्यू हमारे जो मेजर बाधक हैं निर्यात के अंदर, या एलर्जेंट्स हैं, या आप अडल्ट्रेशन करते हो, या एफ्लाटॉक्सिन, जैसे लाल मिर्च के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एफ्लाटॉक्सिन की, और वो कहां से आता है, सुखाने के दौरान, उसको सुखाते हैं जब तोड़ के, या तो लगातार बारिश होती रही और पौधे पर मिर्ची लगी है, वहीं पर फंगस डेवलप हो जाएगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, या फिर सुखाने के दौरान ज्यादातर। तो इसका मतलब हमारे थ्रेसिंग फ्लोर या तो पक्के हों या कम से कम हम नीचे पॉलीथीन का यूज करें, हम गीले ग्राउंड पर डालकर अगर उसको सुखाएंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को फेस करनी पड़ेगी। तीन चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से उनसे निजात पाई जा सकती है और निर्यात में जो बाधक है उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं और किसान भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब चलते चलते आप हमारे उन तमाम किसान भाइयों को क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे जो इस साल मसालों की खेती शुरू करने की सोच रहे हैं?
0: देखिए मैं एक ही मूल मंत्र दूंगा कि आप करिए, कम लागत है, कम आपका पानी लगेगा, ज्यादा आमदनी आपको होगी और ये निर्यात योग्य फसलें हैं। और वैसे भी देश घरेलू खपत भी बहुत ज्यादा है, और मैं ये नहीं कहूंगा अगर आप सिर्फ पैदा करें, आप उसमें वैल्यू ऐड करें, चाहे मिनिमम वैल्यू ऐड करें, अपना खुद का ब्रांड बनाएं, अपने गांव के स्तर पर, आपके खेत के स्तर पर, वहां आजकल छोटी मशीनरी अवेलेबल है, उनका इस्तेमाल करके आप मसालों की पिसाई या दूसरे प्रोडक्ट्स वहां पर बना सकते हैं, जिससे और ज्यादा लाभ आपको मिलेगा।
1: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, अगर सही तकनीक, बाजार की समझ और वैल्यू एडिशन को जोड़ दें तो मसाला फसलें वाकई हमारे किसान भाइयों के लिए सोना साबित हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब आज हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे अजवाइन और सौंफ जैसी मसाला फसलों की खरीफ में बुआई, डॉक्टर बलराज सिंह परियोजना निदेशक मसाला अनुसंधान संस्थान अजमेर से तुषार पराशर की बातचीत।
3: और अब अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं लोकेंद्र से ये उपदेश।
4: धरती की

0: धरती की शोभा सृष्टि रवि तारे चांद गगन की, और दान करे से धन की शोभा, भजन करे से मन की। बहुत ही सुंदर उपदेश अभी हमारे सभी किसान बहन भाइयों ने सुना लोकेंद्र सिंह की आवाज़ में, और इसी उपदेश के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार।

0: सभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 और 14 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गजल कव्वाली। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में हम आपको सुनवा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत किशोर कुमार साहब की आवाज़ में, फिल्म अनोखी अदा से।
1: क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

0: పర్దె కే
1: AIR Live News 24/7 पर आप बने हुए हैं हमारे साथ और सुन रहे हैं गजल कबाली का कार्यक्रम, और अंतिम प्रस्तुति के रूप में ये सुनते हैं फिल्म उमराव जान को, मैं आशा भोसले को।

0: और इसी के साथ ये गज़ल कव्वाली का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का या लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। शाम के 7:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने सीएम श्री स्कूल के आधुनिकीकरण के लिए 265 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने गोल्फ लिंक कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित किया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में आयोजित। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 30 जून से शुरू और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में राजधानी दिल्ली और कई राज्यों में अभियान चलाया, 2 गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी के 75 सीएम श्री स्कूलों को आधुनिक और छात्र केंद्रित सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए व्यय वित्त समिति ईएफसी ने लगभग 265 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
2: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस पहल के अंतर्गत स्कूलों में आधुनिक प्रवेश द्वार, स्मार्ट आधारभूत ढांचा, पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं और खेल मैदानों का विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और कंप्यूटर लैब तथा मल्टीपर्पज हॉल का उन्नयन भी किया जाएगा। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप, टेक्सटाइल पाथ और अन्य दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, ताकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल विद्यालयों भवनों की मरम्मत कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ, समावेशी और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। परियोजना के सभी कार्य अगले वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
1: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने राष्ट्रीय राजधानी में गोल्फ लिंक कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित कर दिया है। मीडिया से बातचीत में आज एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्र ने कहा कि एनडीएमसी की नवी अनुपम कॉलोनी है।
3: ये नवी कॉलोनी है जो हमें अनुपम कॉलोनी में की उपाधि देने में हमें अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। नवी कॉलोनी में पहली कॉलोनी जिसने अपना काम सामने रख दिया है कि और किसी को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। जो कंपोस्ट है वहाँ पे ऑलरेडी बन रहा है और यहाँ का एक तिनका भी बाहर नहीं जाता है। यहाँ पे इतना भी कूड़ा निकलता है वो या तो कंपोस्ट होता है या फिर उसको सेग्रीगेट करके ये जो सामने वाले बिन देख रहे हैं इन सबों में जाता है, जिसको फिर से रिसाइकिल किया जाता है।
1: गोल्फ लिंक कॉलोनी में कचरे का निपटान स्थानीय स्तर पर ही किया जाता है और ये उपलब्धि परिषद और स्थानीय निवासियों के सहयोग से हासिल की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज पूर्वी दिल्ली स्थित संजय झील का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि इस दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने उन्हें 52 एकड़ में फैले जलाशय और इसके आसपास के 165 एकड़ संरक्षित वन क्षेत्र के पुनर्जीवन के लिए तैयार कार्य योजनाओं की जानकारी दी। दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के लिए नियामक ढांचा तैयार करने और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। मीडिया से बातचीत में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि न्यायमूर्ति गाबा समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार ने तकनीकी शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो कोचिंग संस्थानों के लिए नियम और कानूनी ढांचा तैयार कर रही है। दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने के विषय पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला में शामिल हुए। ये कार्यक्रम दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय

0: ई गवर्नेंस प्रभाग के सहयोग से आयोजित किया था। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने तेजी से बदलते साइबर खतरे के परिदृश्य के बीच सरकारी डेटा, डिजिटल अवसंरचना और नागरिक सेवाओं की सुरक्षा में साइबर सुरक्षा की बढ़ती जरूरत पर विशेष जोर दिया।
1: साइबर सिक्योरिटी को लेकर सरकार पूरा काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सक्सेस के पर और दिल्ली सरकार भी इस पर काफी एक्टिव रोल से काम कर रही है। हमारी आईटी डिपार्टमेंट भी जो इंटैक्ट होकर साइबर के जो हैकर्स होते हैं, देखिए साइबर का कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं से भी हैक कर सकते हैं, उससे कैसे अपनी डाटा को सिक्योरिटी में रखा जा सके उसमें सारे कंसर्न टीम आ रखे हैं।
0: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सभी जिलाधिकारियों के साथ प्रदूषण नियंत्रण को लेकर आज एक समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदूषण हॉटस्पॉट्स की पहचान, धूल प्रदूषण नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, अतिक्रमण हटाने, सार्वजनिक पार्कों के रखरखाव तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारत हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बैठक में विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऊर्जा आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए मूलभूत है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बनकर उभरा है।
2: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
3: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
2: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कल तक जारी रहेगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र व्यक्तियों को बाहर रखना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र 6 के तहत पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में 80 से ज्यादा जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देशभर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जांच के तहत की गई। गिरफ्तार आरोपी फर्जी कंपनियां बनाने और बैंक खाते संचालित करने में शामिल थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शराब तस्करी मामले में दुर्गापुरी एक्सटेंशन से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 600 क्वार्टर शराब की बोतलें और अपराध में इस्तेमाल वाहन को बरामद किया। एक अन्य मामले में पुलिस ने नजफगढ़ क्षेत्र से एक आरोपी को 500 क्वार्टर शराब के साथ गिरफ्तार किया। आगे की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद हमें दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक

0: मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां भी उन्होंने पढ़ी।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर गट रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया।
0: संविधान हत्या दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 25 जून 1975 की वो रात भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र और संविधान पर सबसे बड़ा आघात था। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया और मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि ये भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर साल उन शिक्षकों को दिए जाते हैं जिन्होंने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया। इसका उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को सम्मानित और प्रोत्साहित करना है। निर्जला एकादशी के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्रियों ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि निर्जला एकादशी आस्था, संयम और सेवा का एक पावन पर्व है। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना की है। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई दिवस के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली के कर्नेल सिंह स्टेडियम में एमएसएमई प्राइड वॉकथन 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आईआईए दिल्ली ने भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के सहयोग से किया। कार्यक्रम का विषय गुणवत्ता, नवाचार, उद्यमिता और रोजगार के लिए साथ साथ चलें था। इस अवसर पर आईआईए दिल्ली की अध्यक्ष डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शिनी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र राष्ट्र निर्माण का मजबूत स्तंभ है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 39-41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने सीएम श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 265 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने गोल्फ लिंक कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित किया है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक

गुरुग्राम में आयोजित दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 30 जून से शुरू और सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में राजधानी दिल्ली और कई राज्यों में अभियान चलाया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

यार लाइव न्यू 24x7 चैनल है। समय हुआ है रात्रि के 8:15। आइए सुनते हैं गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू। गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत से संवारा है जतिन ललित ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

0: कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं कुमार सानू को। फिल्म का नाम है दिलवाले और इस गीत रचना है समीर की और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का।
1: कम ऑन अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे।
2: कम ऑन अरुण, कम ऑन यार।
3: क्या करूँ यार, आज को शेर ही नहीं।

0: करना।
1: अरे ये क्या हुआ?
0: ये तो शम्माई बुझ गई।
1: अरे अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है भाई।
0: अरे चेक करो यार, फिर तो नहीं गया।
2: क्या मालूम।
1: अरे भाई किसी के पास माचिस वाचिस है कि नहीं?
3: हाँ हाँ मेरे पास है। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

तौबा, ये मतवाली चाल फिल्म पत्थर के सनम में अभी आप सुन रहे थे मुकेश को। संगीतकार थे मजरूर सुल्तानपुरी। और कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं कुमार सानू कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म हम दिल दे चुके सनम में। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में बहुत ही खूबसूरत लाजवाब गीत।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कुदरत में। गीत रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत निर्देशन था आरडी वर्मन का। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और साथी। गीत रचना है हसरत जयपुरी की और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: फिल्म राम तेरी गंगा मैली में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को। इसी के साथ ये आज का गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम।

0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
2: Partnership with UK is taking many more dimensions.
1: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचाव कर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
5: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को

0: निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9।

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत एक वैश्विक टेक पावर बनकर उभरा है। पहले जहां भारत को केवल इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सेवाओं के एक विशाल उपभोक्ता के रूप में देखा जाता था, वहीं आज हमारा देश अपने डिजिटल पब्लिक

0: इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वदेशी नवाचारों और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के दम पर पूरी दुनिया में तकनीक की दिशा तय करने में सक्रिय भागीदार है। इस अहम विषय पर और प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ आईटी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। डॉक्टर राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: डॉक्टर राय, हम आपसे जानना चाहेंगे, भारत ने जिस तरह का एक इंटरनेट बूम आया जो डिजिटल इंडिया 2015 से शुरू हुआ, अगर हम कुछ जो बेसिक आंकड़े हैं उनको देखें, ऑप्टिकल फाइबर एक्सपेंशन 2019 में 19.35 लाख रूट किलोमीटर था, जो बढ़कर 42 लाख रूट किलोमीटर से ऊपर है। और अगर हम इंटरनेट कनेक्शंस की बात करें तो 25 करोड़ से थोड़े ज्यादा थे 2014 में, और अब वो 102 करोड़ को पार कर गए हैं। और अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की बात करें तो इस दौरान वो 6 करोड़ से 99.5 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस डिजिटल एक्सपेंशन को, और जो भारत की टेक्नोलॉजिकल मजबूती है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उसके क्या बेनिफिट्स हैं?
1: भारत ने पिछले 15 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, साइबर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस की है। आज भारत में 100 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हैं। मैं आपको बताऊं कि आज से 10 साल पहले जो मोबाइल फोन में स्मार्टफोन की जो संख्या होती थी वो करीब करीब 32-33% होती थी, आज वो 57% मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स है। हर हाथ में देखेंगे स्मार्टफोन है, और हर बच्चा, हर इंसान एक स्मार्टफोन लेना चाहता है। ये नहीं कहता मैं कि वो फीचर्स फोन नहीं लिए जाते, वो भी लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर क्लास में, या गवर्नमेंट में भी लिए जाते हैं जो कि एक किस्म का क्लासिफाइड काम करते हैं, पर ज्यादातर लोग स्मार्टफोन लेते हैं। अब उस स्मार्टफोन लेने की वजह से देखिए पिछले 15 साल में इंटरनेट की स्पीड कितनी बढ़ गई है। आज करीब करीब 25 GB पर मंथ की दाब से डेटा एक यूजर लेता है। 25% कॉस्ट गिर गई है, 8 से 10 रुपए की कॉस्ट है पर जीबी। मैं अगर ये कहूं कि भारत जो है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसका नतीजा एडवांटेज काफी है भारत को कि भारत के पास कंजम्पशन हर प्रोडक्ट की है, और हर प्रोडक्ट हर सोसाइटी के लिए चाहिए। तो पिछले 15 साल में काफी प्रोग्रेस हुई है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। मैंने कंज्यूमर की बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कहेंगे तो कहां हम 200 मेगावाट की वो डेटा सेंटर थे, क्लाउड थे, आज 1500 गीगावाट का क्लाउड हमारे पास इंस्टॉल्ड है भारत के अंदर, और वो 3000 गीगावाट टारगेट है अगले 5 साल में उसको करने का। आज विश्व का कोई भी क्लाउड मैन्युफैक्चरर नहीं है जो भारत में नहीं, हर सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी का डिजाइन सेंटर भारत में है। एक TSMC जो वर्ल्ड की एक प्रोडक्शन कंपनी है, सबसे बड़ी फैब कंपनी है, उसका भी डिजाइन सेंटर भारत में है। तो हर चीज में, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो कंजम्पशन है, ये जो एक्सपेंशन है, ये हमको प्रोडक्ट्स की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बहुत तेजी से ले जा रहा है। एक टाइम में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट काफी थी, बीच में फिर एक थोड़ा सा स्लंप आ गया। आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है, हम सोचते भी नहीं थे, हम सोचते थे कीबोर्ड आपको भेजेंगे या हम छोटे मॉनिटर भेजेंगे, आज हम बहुत सी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं।
0: सो जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत ही अपनी कहें कि फोकस्ड जो नीतियां हैं और जो रणनीतिक निवेश है उसके साथ देश की तकनीकी क्षमता को डेवलप किया है, जिसके साथ साथ विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है भारत में। अगर हम जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है जिसे इंडिया स्टैक कहा जाता है उसकी बात करें तो उसके बारे में आप बताएं कि उसमें जो एग्रीमेंट हुई है 23 देशों के साथ, हमारी तरफ से जो तकनीक वहां तक पहुंचाई जा रही है, ये कितना इम्पोर्टेंट एक उपलब्धि है हमारे देश के लिए।
1: देखिए एक जमाने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ी और भारत ने उसको निकाला, और इसका बैकग्राउंड देखिए कि हमने एक UPI सिस्टम निकाला। भारत जो हो उस

0: अग्रणी देश है जिसमें यूपीआई सिस्टम चालू हुआ। आज दिन भर में बिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं और जितने भी बड़ी कार्ड कंपनीज हैं ये सब यूपीआई को मानने को रिकॉग्निशन करने को तैयार नहीं थे। आज जितनी भी संसार की विश्व की जब कार्ड कंपनीज हैं वो सब यूपीआई इंटरफेस पे आती है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कॉमन इंटरफेस हमने बनाया है और हर विश्व की कंपनी उस इंटरफेस से लेके हमारे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जुड़ जाती। इसको एग्जांपल जब हमारा सक्सेसफुल हो गया फिर हमने इस भारत ने कहा कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो पूरे देश में या विश्व में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज सब कनेक्टेड रहते हैं। आप उस पे ई कॉमर्स की एप्लीकेशन लगा लीजिए, कोई और किसी किस्म की एप्लीकेशन लगा लीजिए। तो पर्पस ये था कि सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक कॉमन इंटरफेस पे रहना चाहिए ताकि किसी को कनेक्टिविटी की जरूरत ना पड़े और कहीं मोनोपोली की जरूरत ना पड़े और हर देश हर ऑर्गेनाइजेशन हर कंपनी उस कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे रह के उसका इस्तेमाल वैसा ही हो एक्सपेंशन हो जैसे यूपीआई के एक्सपेंशन।
1: और बिल्कुल इसमें डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज भी एफिशिएंट हुई हैं और सिक्योर हुई हैं और लार्ज स्केल पर संभव हो पाई हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है
0: क्योंकि हम डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, हम एक दूसरे को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब यूपीआई देखिए ना, मैं स्टेट बैंक में हूँ, दूसरा आंध्रा बैंक में है, तीसरा किसी और बैंक में है, पांचवा यूनियन बैंक में है, छठा सेंट्रल बैंक में है, किसी में भी है, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। कहा हमने 2000 में से चालू किया था, आप 1,00,000 रुपए तक यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया। तो ऐसा ही इम्पैक्ट इंडिया स्टेक जो बना रहा है वो ही इम्पैक्ट है उसका। एक कॉमन लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा जिससे एप्लीकेशन का एक्सेस एप्लीकेशन का रिट्रीवल एक बहुत ही आसान हो जाता है और मोनोपोली टूट जाती है। आज की डेट में अगर प्रोप्राइटरी लेंगे तो एक बारी प्रोप्राइटरी आप टेंडर करके ले लेंगे, दूसरी बारी आपके दाम ज्यादा लेगा, कॉस्ट आपकी ज्यादा लेगा, प्रोप्राइटरी हो जाता है। एक कॉमन इंटरफेस पे आ जाते हैं तो उसमें प्रोप्राइटरीनेस की बात खत्म हो जाती है। एक तो यूसेज में आसान मिलती है, एप्लीकेशन में आसान हो जाता है, उसके अलावा आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है।
1: आपने शुरुआत में ही बात करी थी जो एडवांस टेक क्षमताएं हैं उनके विकास की, जो फ्यूचर रेडीनेस के लिए इम्पोर्टेंट सरकार ने आइडेंटिफाई की है, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी जो उभरती हुई तकनीकें हैं उनके लिए जो जो ये फोकस्ड स्कीम्स लाई गई हैं उनको मिशन मोड में जिस तरह से अप्लाई किया गया है और फ्यूचर रेडी स्किलिंग के लिए भी जो बहुत कंसर्टेड बहुत ही मजबूत एफर्ट्स किए गए हैं कि पूरे देश में AI स्किलिंग हो या जो और टेक्नोलॉजीज हैं उनमें स्किलिंग हो, ये आपको कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है ये फ्यूचर रेडीनेस के लिए प्रिपेयर्डनेस पर कार्य हो रहा है?
0: आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम का कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी टेक्नोलॉजी आइटम हो, नॉन टेक्नोलॉजी आइटम हो, इंडस्ट्रियल आइटम हो, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन, ये इनबिल्ट इंग्रेडिएंट्स है। आप बैंक में जाइए, बैंक में आज कुछ जाता नहीं है और टेक्नोलॉजी है बैंक में, सिर्फ फर्क दूर की बात है। सिर्फ आज बैंक एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चलता है। पावर सेक्टर में टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम है पर टेक्नोलॉजी जो ड्राइव करती है पूरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस को, पावर सेक्टर को, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी क्वालिटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रोल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको देखते हुए ही भारत ने पिछले 5 साल से इस पे प्लानिंग चालू कर दी थी। सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में बनाया भारत ने, उसका आउटले 76,000 करोड़ रखा, उसके बाद 1,000 करोड़ 2025 में और ऐड कर दिया उसमें। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमने एक सेमीकंडक्टर मिशन में हमारा गुजरात में धुलेरा जो है उसको फोकस किया ताकि हम उसको सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से उसको बनाएंगे। और भी एरिया है जैसे असम में सेमीकंडक्टर को आगे करने के लिए उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई किया। उन्होंने आज भारत में कोई भी सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी है उसका R&D सेंटर यहाँ, R&D डिजाइन यहीं होते हैं। आप इंटेल ले लीजिए, आप ARM ARM ले लीजिए, आप TSMC ले लीजिएगा, जो भी कंपनी आप देंगी वर्ल्ड की फेमस कंपनी सबका यहाँ डिजाइन सेंटर। तो उसी हिसाब से सेमीकंडक्टर मिशन लगाया गया। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में

0: एआई मिशन भारत ने बनाया, जिसमें हमने आउटले 10,000 करोड़ रखा। उसके अंदर हमने एक 6 को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईसी बैंगलोर, और उनको 1400 करोड़ रुपया आवंटन भी किया कि आप इसको आगे काम करिए, उनका डिफाइन करिए। ये जितने भी 6 सेंटर्स हैं, इन 6 सेंटर्स का अपना अलग रोल है। हमारा एआई की स्पेशलाइजेशन आज के भारत में एक हम एप्लीकेशन की तरह हमारा बहुत स्पेशलाइजेशन है, और उसमें हमारे पास 4.5 लाख ट्रेन मैन पावर है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमें एक सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए हमें और एआई के दूसरे सेक्टर भी चाहिए, तो हमें एआई टूल्स भी बनाने हैं और हमें ऐसी दूसरे और एप्लीकेशन करनी है। देखिए, संसार में 3 देश ऐसे हैं जिनके पास एआई की कुछ कंपोनेंट्स हैं, और एआई कंपोनेंट्स में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। भारत, चीन और अमेरिका, इन तीनों देशों के पास बहुत डेटा है, सारा डेटा इन्हीं कंट्रीज के पास है। पॉपुलेशन अमेरिका के पास, सारी आईटी कंपनीज वहां पे बैठी हुई हैं, चाइना की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत है। तो इंडिया एआई के क्षेत्र में एक यूनिक पोजीशन रखता है कि हमारे पास बहुत डेटा है। एआई क्वांटम मिशन पे आई है, क्वांटम इतना जरूरी हो गया है, इंटरनेट पे जो ट्रैफिक चलता है वो 99% इंक्रिप्टेड होता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी से, ताकि कोई इंफॉर्मेशन बीच में टैप ना कर पाए, उस पर अटैक ना कर पाए, तो इंक्रिप्ट करके चलते हैं। आपको वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ HTTPS, इसका मतलब है सिक्योर, सिक्योर का मतलब है इंक्रिप्टेड डेटा है। अब इसके साथ एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी भारत सरकार ने बनाया, जिसका आउटले भी करीब करीब 250 करोड़ पर रखा। उनका काम था एक अग्रणी के तौर पे एक R&D प्रोडक्ट डेवलप करें। अब इन सबको सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन किया। आप देखिए कि जो ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट है, हम इस वक्त 38वें पायदान पे हैं, और 2015 में 81वें थे। अब उस पे हम इम्प्रूव करके 38वें हो गया। अब अगले आप 5 साल में आप देखेंगे कि ये 38 जो है हम फर्स्ट 10 में आ जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी के इंडेक्स में जो यूएन यूनाइटेड नेशन इंडेक्स देता है, हम पहले 10 में आते हैं इम्प्रूवमेंट। पिछले 5-6 साल में हम 17वें नंबर से इम्प्रूव करके 10 के अंदर आ गए, जो सेफ कंट्री मानी जाती है हम उसके अंदर आ गए। अगले 5 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि भारत एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के एक मैच्योर नेशन निकल के निकलेगा।
1: डॉक्टर राय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस समग्र चर्चा के लिए, जिसमें आपने हमें बताया कि भारत कैसे एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर के रूप में उभर रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह से हमारी फ्यूचर रेडी स्किलिंग हुई है, फ्यूचर रेडी हमारी टेक्नोलॉजीज है, उनकी डेवलपमेंट हुई है सरकार के एफर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर के एफर्ट्स, स्टार्टअप्स के एफर्ट्स के द्वारा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। कंट्री वाइड

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
0: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखला

0: श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: एंड टुगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और

0: आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए। रिएक्टर स्कोल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम रामकृष्ण तथा जन सेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मैक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the United Kingdom on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral

श्रोताओं, इसी के साथ आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अब संपन्न होता है। कार्यक्रम में अभी आपने सुने दिनकर शर्मा की गाई गजल। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सुनिए अरुण देवनाथ का गाया राग जोग कौंस।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना अरुण देवनाथ का गायन राग था जोग कौंस। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन के ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक

0: प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
1: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes hit the country. Last night, 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप ही की फरमाइश पर लिए गए इस गीत के साथ।

श्रोता किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपको हमने आपको सुनवाया कुदरत फिल्म से लिया गीत। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश जो मिली है वो मेरठ से अनिल जैन, संयम, मुस्कान, मास्टर जिवयम, आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन। आप सभी की फरमाइश से हमने आपको ये गीत सुनवाया है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हम ही राही प्यार के इस फिल्म से लिया गीत अभी आपने सुना। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें भी थी। और इस गीत को सुनने के लिए जो हमें फरमाइश मिली है वो पंडरपुर से जाकिर मलाणी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर और परिवार के समस्त सदस्यों ने इस गीत को सुनना चाहा था। साथ ही हमें फरमाइश मिली थी हरियाणा के जिंद से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर की। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपकी फरमाइश पर सुनवाते हैं एक और गीत।

श्रोता, लता मंगेशकर की सुमधुर आवाज में अभी आपने सुना गाइड फिल्म से लिया हुआ ये गीत। और इस गीत को सुनने के लिए जो फरमाइश हमें मिली है वो झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद और बेबी चाहत सादिया की। साथ ही साथ एटा से इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें मिली नबी हसन, अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशव अब्बासी की। सिकंदरा राव से इसी गीत को सुनना चाहा था मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत का जो ये कार्यक्रम है वो हम आपकी फरमाइश पर आपको गीत सुनवा रहे हैं और लगातार हमें ईमेल के माध्यम से आपकी फरमाइश भी मिल रही है। आपको बता दें कि सुनील कुमार गुंद ने बड़ा ही सुंदर सा संदेश भेजा है और लिख रहे हैं कि प्यार भरी जिंदगी की राह पर यदि हम सफर पूर्ण रूप से साथ हो तो हर सफर आसान, हर रास्ता सुलभ और हर मंजिल करीब हो जाती है। ऑल इंडिया रेडियो भी एक अच्छा और सच्चा हम सफर ही है। बहुत बहुत

शुक्रिया आपको इस प्यारे से ईमेल के लिए। और सुनील कुमार गुंद, सुचिता नैनिश गुंद और संगरूर पंजाब से इनका ये संदेश मिला है। तो श्रोताओं, आइए अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवा देते हैं एक और सुंदर सा गीत।

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा

श्रोताओं, बैराग फिल्म से लिया गीत अभी आपको सुनवाया। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की ये सुमधुर आवाज थी। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। साथ ही इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश जो हमें मिली है वो नाम हम आपको बता देते हैं। इस गीत को मेरठ से जो हमारे श्रोता हैं उन्होंने सुनना चाहा था, दिग्दर्शन और कविता। साथ ही साथ जिला मऊ से फरमाइश हमें मिली मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम और मोहम्मद सादिक अंसारी। गाजीपुर से फरमाइश हमें मिली है आज़ाद अली अनवर और रिजवाना परवीन की। आप सभी की फरमाइश पर हमने आपको ये गीत सुनवाया। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम जो कि आप ही की फरमाइश पर आधारित है। आपकी फरमाइश पर हम कई सारे गीत अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम भी निश्चित तौर पर पसंद आ रहा होगा। तो आप अपने संदेश लगातार भेजते रहिए क्योंकि हमारी भी यही कोशिश है कि अपने इस कार्यक्रम में हम आप सभी के ईमेल शामिल करें और आपकी पसंद के गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएं। तो आइए श्रोताओं, अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और राजा हिंदुस्तानी फिल्म से लिया गीत आपको सुनाते हैं।

0: जोकर।
1: श्रोताओ, हमारा भी यही जी करता है कि आप लगातार हमारे गीत भी सुनते रहिए, हमारे कार्यक्रम को भी सुनते रहिए और मेल भी भेजते रहिए, ताकि आपके फरमाइश पर हम आपको ये प्यारे प्यारे नगमे सुनाते रहें। और ये राजा हिंदुस्तानी फिल्म से लिया गीत अभी आपको सुनवाया अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वरों में। इस गीत को सुनना चाहा था किशन सपकाल, आशा, सोनिया, विशाल सपकाल, मुकेश भट्ट नागपुर से। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश मिली देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अनिकेत और अंकिता की।

थोड़ी सी बेवफाई श्रोताओं, इस गीत से लिया, इस फिल्म से लिया हुआ गीत अभी आपको हमने सुनवाया। आवाज़ थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। और श्रोता, इस गीत को सुनने के लिए जो फरमाइश हमें मिली है वो उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, ताहिरा और साथ ही साथ बुलंदशहर से MS अब्बासी, आप सभी की फरमाइश हमें मिली इस कार्यक्रम में जिसे हमने शामिल किया और आपकी पसंद का हमने ये गीत सुनवाया। और श्रोताओं, आइए अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमें कई सारे आपके ईमेल भी प्राप्त हो रहे हैं और उसी में से हम आपके नाम शामिल कर रहे हैं, आपकी पसंद के गीत भी शामिल कर रहे हैं। तो आइए अपने कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाते हैं, आपको सुनवाते हैं आप आए बहार आई, इस फिल्म से लिया हुआ गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ है। इस गीत को सुनने के लिए हमें जो फरमाइश मिली है, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु। तो आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं और हमारे बाकी श्रोताओं को भी सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

और श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण के युगल स्वरों में दिल तो पागल है फिल्म से लिया हुआ गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें जो फरमाइश भेजी है वो नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु और परिवार के समस्त सदस्यों ने इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है। श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

0: श्रोता लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में अभी आपने सुना दिल तो पागल है फिल्म से लिया गीत। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा था उत्तम सिंह ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। रात के 12 बजने को है। अब समाचार होंगे और समाचारों के बाद
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने को प्रतिबद्ध।

है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है।

0: के रक्षा ढांचे की रीढ़ हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत कार्यों में भारत की सहायता करने की तत्परता जताई है। सुश्री रोड्रिगेज ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की सराहना की और वेनेजुएला के प्रति एकजुटता के लिए आभार व्यक्त किया। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि रास लाफान घटना में मारे गए 12 भारतीय नागरिकों में से 4 के पार्थिव शरीर भारत वापस लाए जा रहे हैं। दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अन्य पार्थिव शरीरों के भी जल्द भारत भेजने की आशा व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कल से उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as a force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London yesterday, Mr. Goyal said, Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals. Our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
1: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes of magnitude 7.2 and 7.5 hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the president of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath of the earthquakes, saying it is in keeping with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed the remarks by Prime Minister Modi, who expressed his condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the severe consequences of the earthquake. Uttar Pradesh government has taken action in the alleged Ram Temple donation anomaly case in Ayodhya and arrested 3 persons. ADG Lucknow Zone Praveen Kumar told Akashvani News that 3 persons have been arrested. He said an FIR has been registered at Ayodhya Police Station on the complaint of Krishna

जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल और कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफरनामा। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजय सावंत और आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस गीत के बाद हम आपको बताएंगे कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो इस गीत को सुनने के बाद आप सभी ने जरूर ये गेस कर लिया होगा कि ये कौन है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग गेस नहीं कर पाए हों तो उनको बता देंगे, जी हाँ, कि आज हम जिस कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं वो हैं हेमंत कुमार। हेमंत कुमार भारतीय संगीत निर्देशक और पार्श्व गायक थे जिन्होंने मुख्य रूप से बंगाली और हिंदी में गाया। इसके अलावा मराठी, गुजराती, ओडिया, असमिया, तमिल, पंजाबी, भोजपुरी, कोंकणी, संस्कृत और उर्दू सहित कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी गीत गाया। कमाल के कलाकार थे वो, कमाल के। इतनी सारी भाषाओं में गीत गाना ये कैसे मुमकिन हो पाया ये सोचने वाली बात है। बहरहाल, हेमंत कुमार साहब बंगाली और हिंदी फिल्म संगीत, रविंद्र संगीत और विभिन्न अन्य विधाओं के कलाकार भी थे। उनका असली नाम हेमंत कुमार नहीं बल्कि हेमंत मुखोपाध्याय था और उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया।

श्रोताओं, हेमंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उनके नाना के घर हुआ था, जो पेशे से डॉक्टर थे। बाद में उनका पैतृक परिवार मूल रूप से जयनगर मजलपुर का था और 1900 के दशक के आरंभ में उनका परिवार कोलकाता आ गया। इसके बाद हेमंत कुमार की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी वहीं पे शुरू हुई और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो नासिरुद्दीन स्कूल से हुई, जिसके बाद वे भवानीपुर के मित्रा इंस्टीट्यूशनल स्कूल में चले गए। स्कूल के दिनों में ही उनकी जो एक तरह से कह सकते हैं कि दोस्ती थी वो सुभाष मुखोपाध्याय और लेखक संतोष कुमार घोष के साथ हुई और इनकी दोस्ती ताउम्र बनी रही।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफरनामा और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजय सावण। आज हम बातें कर रहे हैं जिस कलाकार के बारे में, वो हैं हेमंत कुमार। हम हेमंत कुमार की बातें कर रहे थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, किस तरह से उनके जीवन की शुरुआत हुई और अब हम आपको बताते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा लेने के बाद आखिरकार उन्होंने आगे क्या किया। जी हाँ, हेमंत कुमार ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल करने के लिए जादवपुर स्थित बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जी हाँ, वो अपनी पढ़ाई यानी इंजीनियरिंग में जो वो डिप्लोमा लेना चाहते थे वो उसे पूरा नहीं कर पाए, चूंकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां थी। लेकिन अपने पिता की असहमति के बावजूद उन्होंने संगीत में अपना करियर बनाने का फैसला किया। यानी उनके पिताजी चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हासिल करें और फिर उस दिशा में कुछ करें, लेकिन हेमंत कुमार के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। और जब उन्होंने देखा कि वो अपने ख़राब स्वास्थ्य की वजह से अपनी स्टडी को आगे जारी नहीं रख पाने में समर्थ हो पा रहे हैं, तो फिर उन्होंने, चूंकि उन्हें संगीत में रुचि तो थी ही, अपना करियर बनाने का इसमें फैसला किया। उन्होंने कुछ समय के लिए साहित्य में भी अपना हाथ आजमाया और बंगाली पत्रिका देश में एक लघु कहानी भी प्रकाशित की। लेकिन 1930 के दशक के अंत में उन्होंने खुद को पूरी तरह से संगीत के लिए समर्पित करने का फैसला कर लिया। यानी कि यहां भी उनकी दाल नहीं गल पाई और उन्हें लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ संगीत के लिए बने हुए हैं और वो इस क्षेत्र में ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। और फिर उन्होंने ठान लिया कि वो इस क्षेत्र में ही कुछ अच्छा करेंगे और इसका उन्हें फल भी प्राप्त हुआ। और आज हम उनके गीत सुनते हैं जो हर किसी की जुबा पर हैं।

हेमंत कुमार ने पार्श्व गायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत 1940 में बंगाली फिल्म राजकुमार निर्वासन से की, जिसमें उन्होंने एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत गाए। इसके बाद उन्होंने हरि प्रसन्ना दास द्वारा संगीतबद्ध फिल्म निमाई संन्यास में काम किया, जो कि 1941 में आई थी। 1943 में उन्होंने अपने पहले मौलिक गीत कथा कायोना को शुद्ध शोनो और अमर बिराहा आकाशे प्रिय की रचना की, जिनके बोल अमिया बागची ने लिखे थे। हिंदी सिनेमा में उनका प्रवेश 1942 में फिल्म मीनाक्षी के जरिए हुआ, जिसके बाद उन्होंने संगीतकार अमरनाथ के निर्देशन में बनी फिल्म इरादा में काम किया।

जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। बातें हो रही है हेमंत डा की। जी हाँ, हेमंत कुमार को हम हेमंत डा के नाम से भी जानते थे। हेमंत डा ने रविंद्र संगीत के क्षेत्र में अपनी एक प्रमुख प्रतिपादक के रूप में पहचान बनाई। जब इस शैली में उनका पहला रिकॉर्ड किया गया गीत बंगाली फिल्म प्रिया बंधवी में दिखाया गया। गीत पाथेर शेष कोटाए ने टैगोर की रचनाओं के साथ उनके सफर की शुरुआत हुई और उसी वर्ष उन्होंने कोलंबिया लेवल के तहत अपना पहला गैर फिल्म रविंद्र संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया, जिसमें आमार आर हबेन डेली और केनो पंताय चंचलता शामिल थे। हालांकि इनकी ये पुरानी रिकॉर्डिंग अब कहीं भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये सभी अपने आप में एक कालजयी रचनाएं रही और उस वक्त काफी सराही भी गई।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल और कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफरनामा। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजय सावन। और जो श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि आज हम बातें कर रहे हैं जिस कलाकार के बारे में, वो है हेमंत कुमार। जी हाँ, हेमंता ने संगीत निर्देशन के रूप में जो शुरुआत की थी वो थी 1947 में, एक बंगाली फिल्म थी। और इस दौरान उन्होंने जगन्मय मित्रा, रॉबिन मजूमदार, सत्य चौधरी, धनंजय भट्टाचार्य, सुधीर लाल चक्रवर्ती, बेचू दत्ता और तलत महमूद सहित कई समकालीन पुरुष कलाकारों के साथ भी काम किया। हालांकि उनकी शुरुआती रिकॉर्डिंग को आलोचकों से सराहना नहीं मिली, लेकिन 1947 तक उन्हें बड़ी व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। यानी उनके काम को सराहा तो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आपको व्यावसायिक सफलता नहीं मिलती तब तक आप शायद उतने नोटिस नहीं किए जाते। और ये बात सिर्फ आज ही लागू नहीं होती, बल्कि ये बात उस वक्त यानी 1947 के वक्त भी लागू थी कि आपको अपने फिल्म के जरिए, संगीत के जरिए एक पहचान तो बनानी ही है, साथ ही साथ आपको कमाई भी करनी है।

1950 के दशक के मध्य तक हेमंत कुमार ने एक प्रमुख गायक और संगीतकार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। बंगाल में वो रविंद्र संगीत के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक थे और शायद सबसे अधिक मांग वाले कलाकार भी थे। मार्च 1980 में कलकत्ता में हेमंत मुखर्जी द्वारा आयोजित एक समारोह में रविंद्र संगीत के दिग्गज प्रतिपादक देवव्रता विश्वास को सम्मानित किया गया। इस समारोह में देवव्रता विश्वास ने निडरता से हेमंत को रविंद्र संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले दूसरे नायक के रूप में प्रस्तुत किया। पहले नायक दिग्गज पंकज कुमार मुल्लिक थे।

जी हाँ दोस्तों, मुंबई में पार्श्व गायन के साथ साथ हेमंत कुमार ने एक संगीतकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई, और यूं कहा जाए उनके करियर की जो सबसे सफल फिल्म एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर रही वो थी नागिन, जो कि 1954 में आई थी। और ये गीत अपने संगीत की वजह से काफ़ी सफल भी रही, और आज भी इस फिल्म के गीत सुने और गुनगुनाए जाते हैं। नागिन के गाने उस वक्त लगातार 2 साल तक चार्ट टॉप में बनी रही, और 1955 में हेमंत को प्रतिष्ठित फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी हासिल हुआ।

जी हाँ दोस्तों, 1980 में हेमंत को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी गायन क्षमता विशेषकर सांस पर नियंत्रण बुरी तरह से प्रभावित हुई। उन्होंने 80 के दशक के शुरुआती वर्षों में गाने रिकॉर्ड करना जारी रखा, लेकिन उनकी आवाज अब पहले जैसी दमदार नहीं रही थी। 1984 में हेमंत को संगीत में 50 वर्ष पूरे करने पर विभिन्न संगठनों, विशेष रूप से ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा सम्मानित किया गया। सितंबर 1989 को वे माइकल मधुसूदन पुरस्कार प्राप्त करने और एक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए ढाका, बांग्लादेश गए थे। इस यात्रा से लौटने के तुरंत बाद यानी 26 दिसंबर 1989 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और दक्षिण कोलकाता के एक नर्सिंग होम में उनका निधन हो गया। हेमंदा बेशक अब हम सबके बीच नहीं रहे हैं, लेकिन वो अपने गानों के जरिए, अपनी आवाज के जरिए, अपने संगीत निर्देशन के जरिए आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं, राज कर रहे हैं। तो श्रोताओं, सुरों का सफरनामा कार्यक्रम अब आज यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त संजय सावंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोताओं, रात्रि के एक बजने को है, आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरी सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरी सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल SIT की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्री राम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली SIT ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बरसों बाद यूं खेलने निकली हूं, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे, कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस।

0: श्रोताओं, अब रात्रि के 2 बजने को हैं, ये सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के इन 2 शक्तिशाली भूकंप में करीब 2,927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआयारा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि ला गुआयारा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। सुश्री रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित रखने की घोषणा की। उन्होंने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दिया।

राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत द्वारा एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप उठाया गया कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने भूकंप से जानमाल की क्षति पर गंभीर संवेदना व्यक्त करते हुए भारत द्वारा राहत कार्यों में सहायता की तत्परता

0: सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है।
1: सपना? सपना कौन थी?
2: मेरी अपनी, मेरी।
3: अरे हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था।

0: श्रोताओं, गीत बहार कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के इन 2 शक्तिशाली भूकंप में करीब 2,927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआइरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि ला गुआइरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। सुश्री रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित रखने की घोषणा की। उन्होंने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल SIT की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ

अनुमान व्यक्त किया है। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने 137 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। उसने 16 ओवर और 5 गेंदों में 5 विकेट पर 139 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये जो गजलें अभी आपने सुनी, ये सब थी गुलाम अली साहब की आवाज में। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गजल। कलाकार हैं चंदन दास। इसकी जो गुलुकार यानी कि जो गजल रचना की है वो है नुसरत वद्र साहब ने, और जिसकी जो कंपोजर हैं वो हैं चंदन दास जावेद कुमार। और इसके जो गीत रचना, जो गीत आवाज़ है, जो गजल की जो गायक हैं वो हैं चंदन दास। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

ये जो गज़ल अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे चंदन दास। EIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गज़ल गीत, और मैं हूँ आपके साथ चेतन कुमार शर्मा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं कुछ और गज़लें। कलाकार हैं जगजीत सिंह।

0: जगजीत सिंह की इन्हीं गज़लों के साथ में आज का ये गज़ल गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं जी दुर्गादास और पार्टी से नादास्वरम वादन।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जी दुर्गादास और पार्टी से नादास्वरम वादन। इसी के साथ ये कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म अब यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा योग, पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन। प्रस्तुतकर्ता होंगी योग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमानी शोखन। देशभक्ति गीत का समय रहेगा 5:20 और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे दीनानंद मिश्र का गायन, राग होगा भटियार।

सुबह 7:10 पर संगीत का कार्यक्रम में आप सुनेंगे हरि तीर्थ सिंह से शबद। गीतों भरी गुड मॉर्निंग का समय रहेगा, जो कि फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होता है, सुबह 7:30 और 8:45 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे कृष्ण शर्मा का गिटार पर बजाया गया राग चारुकेशी। गांधी चर्चा कार्यक्रम सुबह 9:15 पर होगा, जिसमें आज वार्ता का विषय रहेगा खादी और उसके प्रयोग पर महात्मा गांधी के विचार। वार्ताकार होंगी रेणु श्रीवास्तव।

सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक, और 10:10 पर फिल्म संगीत होगा आपकी पसंद। 11:10 पर सबरस कार्यक्रम के का प्रसारण होगा। 11:30 पर सुर मंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुनेंगे राजीव वर्मा का सितार पर बजाया गया राग जौनपुरी।

12:10 पर महिला कार्यक्रम होगा, एक आंगन एक कदम बुजुर्गों की ओर। ये आकाशवाणी, अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सेशल्स जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले वो वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की 10वीं बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा और उन्हें मजबूत करने के उपायों पर चर्चा होगी। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज मादक पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और पुनर्वास पर केंद्रित समन्वित उपायों से मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की भविष्य की योजना प्रदान करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच में ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिग्स ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रॉड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकस से लगभग 160 किलोमीटर दूर 7.5 की तीव्रता के इन दो शक्तिशाली भूकंप में करीब 2,927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआयरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रॉड्रिगेज ने बताया कि ला गुआयरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं या नष्ट हो गई हैं। इस बीच वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति रॉड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत द्वारा एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप उठाया गया कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि मध्य पूर्व में युद्ध विराम और हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोलने में हुई प्रगति से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट में कमी आई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान और स्वीडन तथा ट्यूनिशिया और नीदरलैंड का मैच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शव आसन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं, घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्तासन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखन, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति बिल्कुल सेतु की अवस्था का रूप ले लेती है, इसीलिए इस आसन को सेतुबंध आसन के नाम से जाना जाता है। सेतुबंध आसन के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं, जितना पॉसिबल हो सके अपने हिप जॉइंट्स के पास लेकर आए, यानी नितंब के पास लेकर आए। अब हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटनों और पैरों को एक सीध में रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए

धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और एक पुल नुमा आकृति बनाएं, यानी एक ब्रिज बनाने का प्रयास करें। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड कम से कम रुकने का प्रयास करें। ध्यान रहे, इस अवस्था में आपका श्वास पर श्वास की क्रिया सामान्य बनी रहे, यानी आपको ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, सामान्य श्वास लेते रहना है। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आ जाए और शव आसन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दे। दोस्तों, 10 से 30 सेकंड तक रुकना, इस आसन को करने के बाद जब आप शव आसन में लेटे तो आंखें बंद करके अपने शरीर पर ध्यान दें और उसमें होने वाले बदलाव को भी महसूस करें। धीरे धीरे जब आप यह निरंतर यह अभ्यास करते हैं तो आप रुकने की जो टाइम पीरियड होता है, यानी 10 से 30 सेकंड का जो समय है, उस समय को भी आप बढ़ा सकते हैं, यानी एक मिनट तक भी आप उस स्थिति में रुक सकते हैं। इस आसन को आप कम से कम 3 से 4 बार अवश्य करें। सेतुबंध आसन की स्थिति में कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकने का भी प्रयास जरूर करें। अगर आप 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में आराम से बने रह सकते हैं तो आप अपने समय को बढ़ाकर 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, यानी इस आसन को आप 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह आसन करते समय अंतिम अवस्था यानी फाइनल पोज में आपके कंधे, गर्दन और सिर जमीन से लगे होने चाहिए, और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में आप अपने कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में भी, कई बार ऐसा होता है कि हम कमर ऊपर नहीं उठा पाते, तो आप अपने हाथों का भी सहारा ले सकते हैं, अपने कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। यह आसन न केवल कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि चिंता को भी कम से कम करने में सहायक है। उदर यानी पेट के अंगों में भी कसावट लाता है और जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उससे भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताती हूँ। यदि किसी व्यक्ति को हर्निया या कोई रिसेंटली पेट की सर्जरी हुई है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। तो आज आपने सीखा कि किस प्रकार आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं और किस प्रकार आप इस आसन का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कमर की मांसपेशियों में मजबूती, कब्ज को कम करना, पेट के अंगों में भी मजबूती लाना, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना और तनाव को भी ये काफी हद तक कम करता है। आखिर में आपसे मैं फिर कहूंगी, प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय था पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर हिमानी शोखन, योग विशेषज्ञ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है 5:20 और 20 सेकंड। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। समय हुआ है 5:30:20। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आइए आप सुनते हैं पंडित दीनानंद मिश्रा का गायन, राग है भटियार।